एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण शुरू होता है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुटीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही मनुष्य का परम कर्तव्य भी है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो स्वयं से ही नहीं अपितु प्रकृति के हर जीव जंतु से प्रेम करता हो। ऐसा माना जाता है कि धातुओं में सबसे मूल्यवान धातु हीरा है। हरि की भक्ति यदि हीरे के समान है तो अन्य सांसारिक वस्तुएं उसके सामने तुच्छ सी लगती हैं। इसके अलावा ईश्वर भक्ति में वह शक्ति है जिसके द्वारा भक्त को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जबकि अन्य सांसारिक वस्तुओं के मोह माया के जाल में बंधने पर मानव की शक्ति क्षीण हो जाती है। ईश्वर की भक्ति से मानव को शक्ति मिलती है, मनुष्य का अध्यात्म की ओर झुकाव होता है और अध्यात्म की ओर झुकाव होने से जीवन में एक अद्भुत शांति मनुष्य को मिलती है।

हम मनुष्य केवल भक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा में मिला देना ही सच्ची भक्ति कहलाता है। जैसे एक छोटी सी बूंद जब तक अलग है तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं है, पर जैसे ही वह सागर में मिल जाती है वह खुद सागर बन जाती है। भक्ति भी इसी मिलन का नाम है।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। निस्वार्थ प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब हृदय में निस्वार्थ प्रेम होता है तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और शुद्ध हृदय में ही प्रभु का वास होता है।

तो श्रोतो, ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद सुबह ठीक 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात। 7:40 पर समय रहता है लोकगीतों के कार्यक्रम शुभ प्याग का। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम मदर्स डे पर आधारित रहेगा, माँ मेरे दिल की आवाज। इस खास दिन पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी माँ के लिए एक खास संदेश भेज सकते हैं। संदेश भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9914172223। इस नंबर पर आप हमें सुबह 8:30 से लेकर 9:00 तक एक अपनी माँ के लिए खास संदेश भेज सकते हैं। सुबह 9:00 समय रहता है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम का। आज के इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा दांतों की देखभाल, स्वस्थ मुस्कान का राज। ये कार्यक्रम आप सुबह 9:00 से लेकर 10:00 तक सुन सकते हैं और कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर मीनाक्षी। 10:00 सुनिएगा फिल्म संगीत और 10:30 पर हिमाचली लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। 11:05 पर आज सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और दोपहर 12:00 सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:30 पर आज बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल सभा। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे फिल्मों से भजन। 5:30 पर कार्यक्रम युवा मंच में आज आप सुन सकते हैं मेरी पसंद। गजलों का आनंद आप ले सकते हैं शाम 6:05 पर। शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मौजा गराई दिया। 7:10 पर किसान व बागवान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8:00 आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिम बीट्स रिले किया जाएगा। देशगान आप सुन सकते हैं रात 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9:00 अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। और रात 9:15 पर एक ही निर्माता निर्देशक के अंतर्गत श्रोताओं आज आपको सुनवाएंगे राजकुमार संतोषी के कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। रात 9:30 पर सुनेगा फिल्म संगीत। रात 10:00 रवि बास्त्री संगीत सभा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे सुबह 9:20 पर, दिन में 11:00, दोपहर 3:00, शाम 6:00 व शाम 7:45 पर। कार्यक्रमों की रूपरेखा में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरु नगरी आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमीं वर्षपूर्तिम् एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य सप्ततितमं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां संबोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमंत्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रीय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरं एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरं अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमंत्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, भाजपादलाध्यक्षः, अनेके मुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकाररचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुंदा स्थले अद्य रजत जयंती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचंड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 1:30 वादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। VCK और IUML पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्स्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1,200 सेकेंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकेंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रैप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today at around 11.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सचिता। श्रोतो, अक्सर हम अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बदलावों का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब कुछ बहुत बड़ा होगा तभी हमारी कहानी बदलेगी, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही कहती है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है श्रोताओ, कि सफलता की शुरुआत किसी बड़े काम से नहीं बल्कि छोटे छोटे कामों को बड़े जोश के साथ करने से होती है। जी हाँ, जिस तरह एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमारी रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें अपनी मंजिल तक ले जाती हैं। अगर आज हम अपने काम में सिर्फ छोटा सा सुधार कर लेंगे तो साल के अंत तक हम अपने आप को एक अलग ही मुकाम पर पाएंगे। तो श्रोताओ, इंतजार मत कीजिए किसी बड़े चमत्कार का। आज उठिए, मुस्कुराइए और अपने हिस्से की छोटी सी कोशिश शुरू कर दीजिए।

श्रोता गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर आज के इस

तो चलिए श्रोताओ, हम यानी आकाशवाणी धर्मशाला तो आपके साथ है ही आपके पंखों को उड़ान देने के लिए, और इसी प्यारे से सुविचार के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके मनोरंजन के लिए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

जो तो आज हवाओं में एक अजीब सी ममता भरी हुई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज है मदर्स डे। वैसे तो माँ के लिए कोई एक दिन काफी नहीं है, क्योंकि हमारा हर दिन उन्हीं की बदौलत है। लेकिन आज का ये दिन एक बहाना है अपनी माँ के लिए अपना प्यार जताने के लिए। सोचिए ना दोस्तों कि जब हम छोटे थे तो हमें चोट लगती थी तो मुंह से सबसे पहले माँ ही निकलता था। आज हम बड़े हो गए हैं, दुनिया घूम ली है, लेकिन जब थक कर घर लौटते हैं तो आज भी दिल उसी पुराने सुकून को ढूंढता है जो सिर्फ माँ की गोद में ही मिलता है।

और आप सभी जानते ही हैं कि मदर्स डे के इस स्पेशल दिन को और भी खास बनाने के लिए हमने एक खास कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं के लिए रखा है, जो कि प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। इस कार्यक्रम में आप अपनी माँ के लिए एक खास संदेश हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारा नंबर रहेगा 9914172223। इस खास मौके को और भी खास बनाते हैं, आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम में श्रोताओं, अब हम बात करेंगे आज विशेष की। और आप सभी जानते हैं कि आज विशेष में हम आपके साथ जानकारी साझा करते हैं आज के दिन घटी उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्होंने आज के इस दिन को खास बना दिया। आज 10 मई है। और श्रोताओं, इतिहास की बात करें तो आज ही के दिन 1857 में मेरठ से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। मंगल पांडे के बलिदान के बाद भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का आज ही के दिन आरंभ किया था। 1994 की बात अब हम करें श्रोताओं, तो आज ही के दिन यानी 10 मई को दक्षिण अफ्रीका में सदियों पुराने रंग भेद के बाद नेल्सन मंडेला ने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आज का दिन लोकतंत्र की एक बड़ी जीत के रूप में याद किया जाता है।

श्रोतो, सन 1901 में आज ही के दिन यानी 10 मई को ही रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति थी जहां प्रकृति की गोद में सीखना ही सबसे बड़ा उद्देश्य था। शुद्धो, कार्यक्रमों में जानकारियों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं एक और प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम सुप्रभात में श्रोताओं, हम बात कर रहे थे आज विशेष की। आपको बता दें श्रोताओं कि 1978 में आज ही के दिन तेलुगु सिनेमा की एक बेहद सुरीली आवाज और कलाकारा सुनीता उपद्रष्टा का जन्म हुआ। उनकी आवाज ने हजारों गानों को यादगार बना दिया। और आज ही के दिन सन 1905 में जन्म हुआ पंकज मलिक का। भारतीय संगीत के वे जादूगर थे। वे एक महान गायक और संगीतकार थे जिन्होंने रविंद्र संगीत को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया। सहगल जैसे गायकों के गुरु माने जाने वाले मलिक साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। और साथ ही आज ही के दिन एक और मशहूर फिल्मी सितारे का भी जन्म हुआ जिनका नाम है तारा चंद बड़जात्या। 1914 में 10 मई को इनका जन्म हुआ। वे मशहूर फिल्म निर्माता और राजश्री प्रोडक्शन के संस्थापक थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा को दोस्ती, उपहार, मैंने प्यार किया और नदिया के पार जैसी सादगी भरी फिल्में दी जो आज भी पारिवारिक मूल्यों के लिए जानी जाती हैं। उन्हीं की फिल्म में से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है नदिया के पार।

कार्यक्रम सुप्रभात आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोतो, हमारे धर्मशाला के खूबसूरत धौलाधार की पहाड़ियों के बीच बने स्टेडियम में कल एक महाकुंभ यानी आईपीएल मैच शुरू होने जा रहा है। स्टेडियम सज चुका है, खिलाड़ी भी तैयार हैं और हम जानते हैं कि आप भी अपनी पसंदीदा टीम को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हैं, लेकिन मैच का पूरा आनंद तभी ले पाएंगे जब हम सभी मिलकर स्टेडियम की सुरक्षा और ट्रैफिक

नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने तो अपनी ओर से सभी व्यवस्थाएं की ही हैं, लेकिन एक आम जनता होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इन नियमों का पालन करें, ताकि बाहर से आ रहे दर्शकों के लिए कोई असुविधा ना हो। और बाहर से आने वाले दर्शकों से भी अनुरोध रहेगा कि वे भी जो भी सुविधा प्रशासन ने बनाई है उनके लिए पालन करें और नियमों का भी पालन करें। आपको बता दें कि मैच शुरू होने से कम 2 घंटा पहले स्टेडियम में पहुंचे, ताकि भीड़ से आप बच सकें। और पार्किंग के लिए जो भी सुविधाएं बनाई होंगी उनका भी आपको ध्यान रखना है। स्टेडियम के हर कोने पर सुरक्षा कर्मी आपकी मदद के लिए तैनात रहेंगे, लेकिन आपको भी उनका साथ देना है। और सबसे बड़ी बात श्रोताओं की, हमारा स्टेडियम दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियमों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर धूलाधार की पहाड़ियाँ इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। और मैच के दौरान कचरा इधर उधर ना फेंके, डस्टबिन का इस्तेमाल करें। तो बस अपनी टिकटें संभाल कर रखें और जोश ऊंचा रखिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी धर्मशाला।

सुबह के 7:40 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला 103.4 MHz पर और अब समय है कार्यक्रम शुभ प्याग का।

कार्यक्रम शुभ प्रयाग में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं नरोत्तम और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ।

कार्यक्रम शुभ प्रयाग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। नरोत्तम और साथियों की आवाजों में अभी आप ये लोकगीत सुन रहे थे। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आकाशवाणी धर्मशाला इस मदर्स डे के अवसर पर लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम माँ मेरे दिल की आवाज। आप सभी अपनी माँ के लिए कोई विशेष संदेश या शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं या फिर अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप एक विशेष संदेश उनके लिए भेज सकते हैं। समय रहेगा सुबह 8:30 से लेकर 9 बजे तक। और व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए हमारा नंबर है 9914172223। इस नंबर पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। आपका ये संदेश हमारे इस विशेष कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा ताकि आपकी आवाज़ आपकी माँ तक पहुँचे प्यार सम्मान और कृतज्ञता के साथ। और श्रोताओं, हम चाहते हैं कि आप अपना नाम लिखें और साथ ही साथ अपनी माँ का नाम भी लिखें ताकि उसे सुनकर आपकी माँ बहुत ही खुश हो जाए। तो देर किस बात की, इस मदर डे को और भी खास बनाइए हमारे साथ। तो शो तो समय रहेगा 8:30 से लेकर 9 बजे तक और नंबर रहेगा 9914172223।

इसी लोकगीत के साथ आज का शुभ प्याग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए ये देशभक्ति गीत।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वारंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
5: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
6: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और

0: सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
4: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
5: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा

श्रोताओ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह के 8:30 हो चुके हैं, आपका, हमारा और हम सभी का इंतजार हुआ खत्म। मैं आपकी रेडी दोस्त सचिता लेकर हाजिर हूँ मदर्स डे पर आधारित विशेष कार्यक्रम माँ मेरे दिल की आवाज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि आज है मदर्स डे। दोस्तों हम सबने बचपन में सुपर हीरो की कहानियां सुनी है ना। किसी के पास उड़ने की शक्ति थी तो किसी के पास गायब होने की। पर क्या आपने कभी अपनी माँ को गौर से देखा है? उनके पास वो जादुई शक्ति है जो हमारी खामोशी में छिपे हमारे हर दर्द को पढ़ लेती है। उनके पास वो महरम है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी चोट को एक फूंक मारकर ठीक कर देता है। और सबसे बड़ी सुपर पावर, हम हमारी चीजें रखकर भले ही भूल जाएं, कुछ भी कहकर माँ को भले ही भूल जाएं, लेकिन माँ हमारा ध्यान रखना कभी नहीं भूलती। हम चाहे बड़े हो जाएं, लेकिन माँ के लिए अपने बच्चे बच्चे ही रहते हैं। उनका प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता, माँ चाहे जितनी भी बूढ़ी हो जाए। तो श्रोताओ, आज मदर्स डे पर अपनी घर की सुपर वूमन को हम सैल्यूट करते हैं, सुपर मॉम को सैल्यूट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे हमारे लिए कितनी कीमती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, जी हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप पर आप अपनी माँ के नाम कोई भी संदेश या अपने दिल की बात जो आप सामने से नया कह सकते हो, वो व्हाट्सएप पर लिख कर अपनी माँ के लिए हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9914172223। इस नंबर पर आप कोई भी संदेश अपनी माँ के लिए हमें भेज सकते हैं। बहुत सारे संदेश हमें आए भी हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं और कार्ड्स भी आज के दिन अपनी माँ के लिए भेजे हैं। तो इंतज़ार किस बात का है श्रोताओ, आप भी अपना फ़ोन उठाइए, व्हाट्सएप खोलिए, मैसेज टाइप कीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी माँ का नाम लिखिए और प्यारा सा संदेश अपनी माँ के लिए भेजिए। कार्यक्रम की शुरुआत में सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत, इस कार्यक्रम को और भी खास बनाते हैं।

दोस्तों, इस गाने को सुनकर अगर आपकी भी आंखें नम हुई हैं, दिल में माँ के लिए प्यार उमड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? अरे भी सबसे पहले जाइए, अगर आपकी माँ आपके आसपास है तो उन्हें प्यार से गले लगाइए और कहिए आई लव यू माँ। और दूसरा काम आपको क्या करना है, हमें मैसेज करना है व्हाट्सएप पर और माँ के नाम एक संदेश भेजना है, जैसे कि इन्होंने भेजा है। इनका नाम है मन्नत और मटोर से इन्होंने एक गाना अपनी माँ के लिए डेडिकेट किया है। आइए सुनते हैं।

0: आशीष दे दारा, खोले सुख मेरे हो जे माँ हुंदी अजे कोलते सुन दी दुख मेरे।
1: जी हाँ, मन्नत ने हमें ये वॉइस नोट भेजा है। दोस्तों, आप भी इस तरह से हमें वॉइस नोट या कोई मैसेज अपनी माँ के नाम भेज सकते हैं। अगला मैसेज है तान्या का, कांगड़ा मटोर से इन्होंने भेजा है और इन्होंने अपनी माँ का नाम भी लिखा है। ममता राजपूत इनकी मम्मा का नाम है और इन्होंने भी एक गाना अपनी माँ के लिए गाया है। आइए सुनते हैं।

0: था था खुद जा नहीं सकती, शायद माता बना के रब भी माँ जेलस कर दे, माए तेनु माँ बना के रब भी माँ जेलस कर दे, माए तेनु माँ बना के।
1: जी हाँ, तान्या ने ये वॉइस नोट भेजा है और साथ में ये लिखा है कि ये गाना मेरी माँ के नाम, आपने हमेशा हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, आपकी वजह से मैं आज जो भी हूँ वो आपकी वजह से ही हूँ, आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, हैप्पी मदर्स डे माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और अब अगला मैसेज पढ़ते हैं श्रोताओ, पालमपुर से अर्शिया और गुन्नू ने भेजा है। आई रिमेम्बर माई मदर सुमन, मोस्ट ब्यूटीफुल, स्ट्रोंग, शार्प, इंटेलिजेंट, इंग्लिश ऑनर्स विद साइकोलॉजी डिप्लोम, माई टेस्ट इन फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, रीडिंग, राइटिंग, गेम्स एंड कुकिंग। जी हाँ, कुकिंग हमें माँ ही सिखाती है, बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा है। और इनका ये मैसेज पढ़कर ऐसा लगता है कि हर फील्ड में माँ ने इनका साथ दिया है, जो कि हर माँ देती है। बहुत अच्छा लगा अर्शी और गुन्नू। और ज्योत्सना पठानिया पठानकोट से इन्होंने भी एक मैसेज हमें लिखा है, हैप्पी मदर्स डे माँ, आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, मेरी खुशी और मेरी सुकून की जगह हो, हर मुश्किल में मेरा साथ देने के लिए, मुझे समझने और बिना किसी शर्त के प्यार करने के लिए धन्यवाद। मैं शायद हर बार कह नहीं पाती हूँ आपसे, लेकिन मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी माँ हो, लव यू माँ। धर्मशाला से निवीक्षा ने भी एक वॉइस नोट भेजा है, ये सुनते हैं।
0: तू कितनी भोली है प्यारी।

0: थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मदर्स डे, लव यू लॉट्स मामा।
1: निवीक्षा का ये मैसेज था धर्मशाला से। और अब एक कविता पढ़ने जा रही हूँ जो हमें भेजी है भूपेंद्र जम्बाल भूपी ने। चलिए पढ़ते हैं भुलक्कड़ माँ। माँ अब भूलने लगी है बहुत कुछ, नल खुला छोड़, पिताजी के कपड़े प्रेस करने या गैस स्टोव जलता छोड़, दूसरे कमरे की सफाई में लग जाना अब आम हो गया है। माँ के लिए आसान नहीं है टीवी सीरियल देखना भी और सलाइयाँ लेकर कुछ बुनने जैसी कोई दूसरी व्यस्तता यदि साथ ना हो। नहीं याद रहता माँ को दर्द और दवा लेना भी, जब करनी होती है गुड़ाई छलियों की या विजाई कणक की। पिछली रात की जो बची होती है एक दो चपातियाँ, वे भी किसी को देना भूल जाती है। अक्सर मैं देखता हूँ माँ को कई बार सबके बाद वही चपातियाँ खाते हुए। भुलक्कड़ माँ, जी हाँ, माँ तो सच में भुलक्कड़ होती है, अपना ध्यान रखना ही भूल जाती है। परिवार का ध्यान रखती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है, लेकिन अपना ध्यान नहीं रख पाती। लेकिन हम बच्चों का फ़र्ज है अपनी माँ का ध्यान रखें। और आज के इस खास मौके को और भी खास बनाएं, अपनी माँ के नाम एक संदेश भेजें। नंबर आपको बता दें कि 9914172223। बहुत सारे मैसेजेज हमारे पास आ रहे हैं और इस दिन को हम चाहते हैं कि सभी खास बनाएं अपनी माँ के नाम। कशिश का मैसेज अब हम पढ़ रहे हैं धर्मशाला से, इन्होंने भेजा है अपनी माँ के लिए। माँ आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो, जब भी मैं टूटती हूँ आपका प्यार मुझे फिर से संभाल लेता है, आपके बिना मेरा हर दिन अधूरा है। थैंक यू माँ हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मुझे समझने के लिए और बिना किसी शर्त के प्यार करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में एक माँ ही है जो हमें समझती है और बिना किसी शर्त के प्यार करती है। हैप्पी मदर्स डे, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, कशिश ने ये लिखा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ से, संजना राकेश, सरोज राकेश और राज का। माय डियर मम्मी, जीवन का हर पल खास है अगर मेरी माँ माता श्री साथ है। बेस्ट क्वीन ऑफ माय लाइफ इन माय मम्मी माता श्री, इन्होंने अपनी माँ को लिखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैसेज पढ़ रहे हैं प्रवेश शर्मा का चमुंडा से, इन्होंने अपनी माँ की याद में कुछ लिखा है। आज मदर्स डे पर अपनी माँ को याद करते हुए कुछ कहना चाहती हूँ। माँ आपके जाने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, सब कुछ होते हुए भी दिल में एक खालीपन हमेशा रह जाता है। आज जब लोग अपनी माँ के साथ हंस रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तब मेरी आंखें सिर्फ आपको ढूंढती हैं माँ। आपकी वो प्यार भरी आवाज़, मुझे अपने पास बिठाना, मेरे बालों में हाथ फेरना, आज भी हर पल याद आता है। जब भी मैं थक जाती हूँ या ज़िंदगी से हारने लगती हूँ, तो दिल में बस यही आता है कि माँ एक बार आपकी गोद मिल जाए। माँ आपके बिना घर घर नहीं लगता है, उसकी रौनक ही चली गई है। अब कोई मेरा इंतज़ार नहीं करता, कोई प्यार से मुझे नहीं पूछता बेटी खाना खाया क्या। आज भी रात को कभी कभी चुपके से रो लेती हूँ, क्योंकि आपकी याद बहुत आती है। कुछ दर्द ऐसे हैं जो किसी को बताए नहीं जा सकते। जी हाँ, इन्होंने अपने मन की भावनाएं लिखकर अपनी माँ के लिए भेजी हैं। जिनकी माँ उनके पास है वो बहुत किस्मत वाले हैं, लेकिन जिनकी माँ नहीं है वो हर पल उन्हें याद करते हैं। ये दिन बहुत ही स्पेशल है, कोई भी अपनी माँ को याद किए बिना रह नहीं सकता। अगला मैसेज हमें भेजा है अर्जुन शर्मा ने नगरोटा वगमा से, इन्होंने वॉइस नोट भेजा है। दोस्तों आइए सुनते हैं।
2: एक माँ ही होती है जो हर जगह हमारा साथ देती है। हैप्पी मदर्स डे, अर्जुन शर्मा नगरोटा बगवा।
1: बहुत ही नन्ही सी प्यारी सी आवाज़ में हैप्पी मदर्स डे कहने वाले अर्जुन शर्मा नगरोटा वगमा से ये हैं। और अच्छा लगा आपने हमें मैसेज किया। एक और वॉइस नोट है दोस्तों, आपको सुनवाते हैं।

ये चाहत शर्मा ने चमुंडा से हमें भेजा है। मदर्स डे के अवसर पर अपनी माँ और मासी के लिए कुछ कहना चाहती हैं। अरे वाह, मासी के लिए भी मैसेज भेजा गया है। एक ने ममता की छांव दी, दूजी ने सहेली का साथ निभाया, दोनों ने मिलकर मेरे जीवन को खुशियों से सजाया। माँ ने अगर उंगली पकड़ कर सही रास्ता दिखाया है तो मासी ने हर मोड़ पर मेरा हौसला बढ़ाया है। एक मेरी ढाल है तो दूजी मेरी सबसे पक्की यार, दोनों के आंचल में सिमटा है मेरा सारा संसार। बहुत अच्छा लगा, कहते हैं कि मासी यानी मासी, तो मासी भी हमारी माँ ही होती है। इन्होंने मासी के लिए भी संदेश भेजा, बहुत अच्छा लगा चाहत शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं श्रोताओं, अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, इसी तरह से अपनी माँ के लिए कोई संदेश भेजना चाहते हैं या दिल की कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 9 बजे तक ही हम आपके मैसेजेस ले पाएंगे, एक प्यारा सा गीत कार्यक्रम में शामिल करते हैं और सभी मैसेज पढ़ने की हम ट्राई करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला से समय आप सुन रहे हैं मदर्स डे पर आधारित विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सचिता। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमें श्रोताओं, एक और मैसेज हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने लिखा है माई सेल्फ डोली फ्रॉम नगरोटा सूर्या से। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है मैया, आई लव यू, मे यू लिव लॉन्ग टिल मेरी रिटायरमेंट तक आप जियो, मेरी दिली ख्वाहिश है मैया, हैप्पी मदर्स डे। एक वॉइस नोट है, आइए सुनते हैं।
1: अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे

अगली कविता श्रोताओं हमें भेजी है डॉक्टर सीमा शर्मा ने, वो सहायक आचार्य हैं हिंदी की डीएवी कॉलेज कांगड़ा में, और इन्होंने बहुत लंबी एक कविता हमें भेजी है, लेकिन हम थोड़ी सी पढ़ देते हैं। माँ सृष्टि की ज्योति, माँ को शब्दों में बांध सके, इतने शब्द कहाँ से लाऊं, जिनकी ममता सागर जैसी, उनकी महिमा कैसे गाऊं, ममता दया स्नेह की गंगा, माँ का मधुर तराना, जिनके आंचल में छाया है बसता खुशियों का अफसाना, माँ है तो घर मंदिर लगता है, माँ से हर आंगन मुस्काता, माँ बिन सूना जग का कोना, माँ से जीवन दीप जलता। जी हाँ, बहुत अच्छी कविता है और बहुत लंबी है। प्रीति और अमित ने अपनी माँ के लिए एक संदेश भेजा है, और इनकी माँ का नाम है पूनम। हैप्पी मदर्स डे फॉर माई मदर, वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें सब कुछ लाइफ में देंगे जो वो डिज़र्व करती हैं, उनकी हर एक विश पूरी करेंगे। लव यू सो मच मम्मी, भगवान मम्मी को खुश रखे। ये प्यारा सा मैसेज इन्होंने भेजा है। अब कुसुम गुलेरी धर्मशाला से, इन्होंने भी अपनी माँ के लिए एक संदेश भेजा है। अम्मा दिन के ऊपर मेरी अम्मा को संदेश दें। अम्मा दिन के ऊपर, अच्छा मदर्स डे को इन्होंने अम्मा दिन लिखा है, बहुत अच्छा लगा। आज आपके लिए मैं क्या कर पाऊँ अम्मा, मेरे से बहुत दूर रहती हैं आप, उम्र है उनकी 92 साल, पर दिल की धड़कन है वो मेरी, बहुत अच्छा। और इनकी अम्मा का नाम विष्णु देवी है, ग्राम पंचायत परगोड़ गांव नगरेटा, बरियाम सिंह इनका नाम है।

अगला मैसेज है, हेलो मैम, मेरा नाम काजल कश्यप है, मैं नगरोटा वगमा से हूँ, मेरी मम्मी का नाम सुनीता कश्यप है, मैंने कभी उनको नहीं कहा लेकिन आज कह रही हूँ लव यू माँ, क्योंकि ये बहुत खास दिन है, आज आपको कहना भी चाहिए। पायल रोहतगी हमीरपुर से इन्होंने भेजा है अपनी माँ के लिए मैसेज, मेरी माँ, माँ की ममता दुनिया की सबसे सुंदर भावना है, उनकी गोद में सच्चा सुख है, माँ का आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। और एक और मैसेज हमें आया है, मेरा नाम पूनम है, मैं जवाली से हूँ, मेरी माँ मेरी जिंदगी है, माँ के बिना जीवन अधूरा है, मेरी माँ मेरी

0: हर समय साथ देती है, जब कोई साथ नहीं देता तब भी मेरे माँ मेरा साथ देती है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। धन्यवाद। ये सारे मैसेज पढ़कर ऐसा लग रहा है श्रोताओं कि आप सभी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ को प्यार करने के लिए सिर्फ आज का ही दिन काफ़ी नहीं है। हर दिन अपनी माँ से हमें इतना ही प्यार करना चाहिए, ऐसे ही बयां करना चाहिए कि माँ आप हमारे लिए कितनी कीमती हो, क्योंकि माँ भूल जाती है अपना ध्यान रखना भी, और हम भी भूल जाते हैं माँ को अपना प्यार जताना भी। महक चौधरी, महिमा चौधरी, मोहित चौधरी, इन्होंने भेजा है मैसेज। मदर्स नेम है किरण ज्योति, कांगड़ा तहसील फतेहपुर विलेज धमेटा से। वी लव यू मम्मी, यू आर आवर रोल मॉडल इन एवरी हार्ड सिचुएशन, यू ऑलवेज स्टे विद अस, यू नेवर लेफ्ट अस अलोन इन एनी प्रॉब्लम। जी हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि माँ हमें किसी भी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ती, चाहे माँ 92 साल की ही क्यों ना हो जाए। एक वॉइस नोट है।
1: गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शिवन्या गोंडल। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे के ऊपर एक गाना गाना चाहती हूँ। मानू ना मार बाबा, मामा वा मिठिया वे की जानी। मानू ना मार बाबा, मामा वा मिठिया वे की जानी।
0: तो सुना दोस्तों आपने, कितना प्यारा सा ये वॉइस नोट था अपनी माँ के लिए। तो दोस्तों बहुत सारे मैसेज आपने किए अपनी माँ के लिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आज का ये दिन किस तरह से हम खास बना सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे मैसेज आपने हमें किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, अक्सर हम भाग दौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि उस इंसान का शुक्रिया कहना ही भूल जाते हैं जिसने हर सपने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर दी है। माँ ने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया और सबसे ज़रूरी गिरकर संभलना भी सिखाया। और आज हमें रुककर उनके पास बैठकर अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें शुक्रिया देना चाहिए। क्या खूब कहा है किसी ने दोस्तों, लवों पे उनके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खपा नहीं होती। जिन भी श्रोताओं ने आज हमारे इस कार्यक्रम में हमें आपने मैसेज किए हैं और अपनी माँ को शुक्रिया बोला है, उन्हें प्यार दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम बढ़ ही रहे थे कि एक और वॉइस नोट आ गया है, जल्दी से इसे सुन लेते हैं।
1: माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन की पहली धड़कन, पहला स्पर्श और पहला विश्वास है। माँ वह दीप है जो स्वयं जलकर हमारे जीवन को रोशन करती है। उसके त्याग, ममता और आशीर्वाद का कोई मदर्स डे के इस पावन अवसर पर मैं तेनजिन फुनचोग आकाशवाणी धर्मशाला के माध्यम से संसार की सभी माताओं को सादर नमन करता हूँ। ईश्वर हर माँ को स्वस्थ, सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करे, क्योंकि माँ का साया ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे अनमोल संपत्ति है।
0: तो श्रोताओ, इसी के साथ मदर्स डे पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम संपन्न करने के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त सचिता को दीजिए अनुमति और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे जितेंद्र सिंह, धन्यवाद। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम आरोग्यम का।

0: मुस्कान जो दिल से निकले और चेहरे पर खिल उठे, यही है सेहत की असली पहचान। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी सचिता और आज हम बात करने जा रहे हैं दांतों की देखभाल, स्वस्थ मुस्कान का राज। जी हां, ये है हमारा आज का विषय। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं दंत विशेषज्ञ डॉक्टर मीनाक्षी जी, जो हमें सरल और उपयोगी जानकारी देंगी। इस रोचक बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हमारे कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र जी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस खास पेशकश की। बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी आपका हमारे कार्यक्रम आरोग्यम में।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आज आमंत्रित किया, तो थैंक यू
0: जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश के लोगों में दांतों की सबसे आम समस्याएं कौन कौन सी देखने को मिलती हैं?
1: देखिए, यहाँ पे जो ज्यादातर लोगों की दिक्कतें हैं वो एक तो मसूड़ों की दिक्कतें हैं, जिसमें कि लोगों के जो मसूड़े हैं उसमें बहुत ज्यादा जो प्लाक, जैसे जो बोलते हैं कि जो जम जाता है, जो गंदगी जम जाती है, उसकी समस्या बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से कि एक तो दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और ये मैं कहूँगी कि ये थोड़ी ज़्यादा समस्या है लोगों में कि उनके मसूड़ों की जो हालत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पे
0: जी। तो वो किस वजह से है, अगर वजह हम जानना चाहें तो?
1: देखिए, वजह मैं ये कहूँगी, एक तो उनके थोड़े खाने पीने की जो आदतें हैं वो मैं कहूँगी, और दूसरा कि टाइम से उनका डेंटल चेकअप ना करवाना, मसूड़ों की अच्छे से सफाई ना करवाना, तो ये एक तो मेन कारण है जिसकी वजह से ये ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है
0: जी। तो क्या पहाड़ी इलाकों की ठंडी जलवायु दांतों और मसूड़ों की सेहत को प्रभावित करती है?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही जब ये जो पहाड़ी जब हवा लगती है तो उसमें क्या होता है कि जो इनेमल के जो नीचे डेंटीन है, अगर जो इनेमल हम उसको बोलते हैं, जो आपके दांतों के ऊपर एक थोड़ी कठोर परत होती है जो अपने दांतों को हॉट एंड कोल्ड से बचा के रखती है, जब सपोज वो वीक हो या वो घिस चुकी हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ठंडी हवा जब इनेमल के नीचे जो डेंटीन होती है जब उस पर लगती है, तो वो आपको दांतों में एक झंझनाहट पैदा करती है, जिसकी वजह से आपको ठंडे से या गर्म से आपको सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है।
0: तो डॉक्टर साहब, हिमाचल के लोगों की इस प्यारी सी मुस्कान को स्वस्थ रखने के लिए आपकी सबसे पहली सलाह क्या होगी?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप लोग अपना पहले ओरल हाइजीन मेंटेन करें, जिसमें कि दो टाइम आप अपना ब्रश कीजिए, सुबह और रात को, ठीक है, हर दो दो मिनट के लिए आप इसको ब्रश करिए अच्छे से। और दूसरा मैं बोलूँगी कि एक डेंटल चेकअप जो हर 6 महीने में एक बार होना चाहिए, तो वो ज़रूर करवाइए आप।
2: तो डॉक्टर साहब, ब्रश करने का सही टेक्निक क्या है?
1: देखिए, ब्रश करने की सही टेक्निक है, पहले तो सबसे पहले बात, जब भी आप ब्रश करें उसको दो दो मिनट के लिए आपको करना है, 2 मिनट के लिए सुबह करिए, 2 मिनट के लिए रात को कीजिए। और जब भी करें, दांत को बहुत हल्के हाथों से आपने ब्रश करना है और सर्कुलर मोशन में करना है, गोलाकार मोशन में, ऐसे घिसना नहीं है दांतों को, क्योंकि अगर आप दांतों को बहुत ज़्यादा घिसेंगे तो वो ऊपरली परत जो होती है वो निकल जाएगी, तो इसलिए जब भी ब्रश करें उसको गोलाकार करें मोशन में, और बहुत हल्के हाथों से ब्रश करना चाहिए
0: जी। ब्रश से ही रिलेटेड हम अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि ब्रश हमें कब अपना बदलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमने देखा है कि सालों साल एक ही ब्रश यूज करते रहते हैं, तो जो अपना ब्रश है, टूथ ब्रश है, हमें कितने समय के बाद उसको बदलना चाहिए?
1: देखिए, कम से कम 3 महीने में एक बार हमें ब्रश अपना जरूर बदलना,

0: क्या रहेगा कि आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी, सो दैट कि आप सोशली जब आप किसी से कनेक्ट होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा रहता है. तो मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल आपको फिजिकली, इमोशनली या मेंटली आपको बहुत अच्छा दिखाता है अगर आपको ओरल हाइजीन बहुत अच्छा है तो.
1: तो मसूड़ों और दांतों का जो ये रिश्ता है वो कितना अहम है? अगर मसूड़े खराब हों तो क्या दांत भी प्रभावित होते हैं?
0: जी हाँ बिल्कुल. देखिए, अगर मसूड़े आपके ख़राब हैं, मसूड़ों में पस है, या मैं कहूँ किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है अगर मसूड़ों में, तो मसूड़ों की जो पकड़ होती है, दांत को जो पकड़ने की, रखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है. तो उससे क्या होता है कि दांत आपके जो है हिलने शुरू हो जाते हैं. तो इसलिए मैं कहूँगी कि मसूड़ों और दांतों की जो एक कनेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है. अगर आपके मसूड़े अच्छे हैं तो आपके दांत बहुत स्वस्थ रहेंगे.
1: जी, तो हिमाचल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे घर के बुज़ुर्ग लोग हैं, वो दांतों को ज़्यादा अच्छा मानते हैं ब्रश के से भी ज़्यादा. उन्हें लगता है कि ब्रश से दांत हिल जाएंगे और दांतों जो है वो बहुत अच्छी रहती है. तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, दातुन भी बहुत अच्छी है दांतों के लिए. देखिए, दांतों में सब जो दातुन है, सबसे पहले मैं उसमें बताऊंगी कि एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जो आपके मुंह में जैसे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको कम करने में हेल्प करती है, ठीक है. दूसरा मैं ये कहूँगी कि जैसे जो दातुन होती है उसके जो उसका जो रेशेदार वाला जो सिरा होता है, जिस तरीके से हम लोग ब्रश करते हैं, तो वो दांतों के उन जगहों पे पहुँचता है जहाँ पे हमारा नॉर्मल ब्रश नहीं पहुँच पाता, या मैं कहूँगी दो दांतों के बीच में, ताकि जो उसमें जो खाना फंसा हुआ है वो आसानी से निकल जाता है. दातुन करना, तो दातुन करना अच्छा है.
2: डॉक्टर साहब, क्या दांतों के साथ साथ जीभ की सफाई भी जरूरी है?
0: जी हाँ बिल्कुल. देखिए, जीभ पे अगर हम नहीं ब्रश करते हैं या टंग क्लीनर से हम लोग नहीं अपनी जीभ साफ करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि आपके दांतों पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है. कई बार हम लोग देखते हैं कि सफ़ेद परत उस पर जम जाती है खाने की वजह से, ठीक है. अगर वो सफ़ेद खाने की परत जमेगी, उसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ होएगी, तो आपके मुंह से स्मेल आनी भी शुरू हो जाती है, ठीक है. अगर आप जीभ अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो जो आपके टेस्ट बड्स हैं, ठीक है, वो भी अच्छे से काम अपने नहीं कर पाते हैं और आप खाने का आनंद नहीं उठा पाते हैं. तो इसलिए जीभ की सफाई ज़रूरी है.
1: जी, तो दांतों के साथ साथ हमें अपनी जीभ को भी साफ रखना
0: जी,
1: है.
0: बिल्कुल.
1: तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या सिर्फ मंजन और टूथपेस्ट काफ़ी है या फिर और भी कोई टेक्निक होती है जिससे हम अपने मुंह की सफाई कर सकते हैं?
0: देखिए, टूथपेस्ट के साथ साथ आपको फ्लॉसिंग और माउथवॉश का भी यूज़ करना चाहिए. जो अपना डेंटल फ्लॉस जिसे हम बोलते हैं, वो एक तरीके का धागा रहता है, ठीक है, जिसको कि हम दो दांतों के बीच में फंसा के हम लोग वहाँ से सफाई करते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग ब्रश करते हैं तो नॉर्मल ब्रश से वो खाना निकल नहीं पाता, तो वहाँ पे ये जो डेंटल फ्लॉस है वो काम अपना करता है कि जो दो दांतों के बीच में जो खाने के कण फंसे होते हैं वो उसको आराम से निकाल देता है.
1: तो ये लोग खुद ही कर सकते हैं घर पे या फिर इसके लिए डेंटिस्ट के पास जाना होता है?
0: नहीं नहीं बिल्कुल, ये जो है डेंटल फ्लॉस लोग खुद अपना लेके अपना खुद से यूज कर सकते हैं, इसमें डेंटिस्ट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
1: रोज कर सकते हैं ये?
0: जी जी, इसको रोज ही करना चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट रहता है.
1: जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मीठी चाय, गुड़, मिठाइयाँ और लोकल खान पान जो है वो, इनसे दांतों पर क्या असर पड़ता है?
0: देखिए, ज़्यादा मीठे खाने से तो क्या होता है कि जब हम लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उसमें जो एसिड रहता है, ठीक है, वो अपने जो इनेमल है उसके साथ रिएक्ट करता है और उसको थोड़ा वीक कर देता है. इनेमल, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, एक कठोर परत रहती है अपने दांतों के ऊपर, ठीक है, जब उसको ये परत को जब ढीला कर देती है जो शुगर में जो एसिड्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे दांतों में सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, ठीक है. तो इसलिए थोड़ा मैं ये कहूँगी कि जब भी आप ये मीठा खाते हैं या चिपचिपा खाते हैं, तो उसके तुरंत बाद नहीं, कम से कम उसके 30 मिनट बाद आप कुल्ला या ब्रश आप ज़रूर कीजिए.
1: आपसे ये जानना चाहेंगे मैम कि कुल्ला कितना ज़रूरी है दांतों के लिए?
0: देखिए, कुल्ला भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर बार तो हम ब्रश हर जगह पे नहीं कर सकते हैं, है ना. तो इतना मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कुछ खा रहे हैं, खाना खाने के बाद अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत बाद आप कुल्ला ज़रूर एक बार कर लीजिए.
1: जी, जैसे कि मैम खान पान की बात हो रही थी, तो सेब और अखरोट जैसे स्थानीय खाद्य पदार्थ जो हैं वो दांतों के लिए कितने फ़ायदेमंद है?
0: देखिए, सेब आम बात कर रहे हैं या आप बादाम या अखरोट की बात
1: जी
0: कर रहे हैं, वो दांतों के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत मतलब एक तरीके की मैं कहूँगी कि दांतों की एक्सरसाइज ही होती है उनसे। ठीक है, दूसरा ये है कि इनमें विटामिन्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपके मुंह में जैसे सलाइवा की प्रोडक्शन, लार की जो प्रोडक्शन होती है थूक, वो बनता है। तीसरा इसमें ये चीज़ रहूँगी कि जब हम लोग ये चीज़ें खाते हैं,

0: लोग, तो मसूड़ों में भी जान आती है, मसूड़ों की पकड़ अच्छी बनती है,
1: जी
0: ठीक है। और इसमें और देखिए कई जैसे वाइटामिन होते हैं, जैसे या मिनरल्स होते हैं लाइक फॉस्फोरस या कैल्शियम पोटाशियम जैसे जो रहते हैं इनमें, तो उससे जो इनेमल की प्रोडक्शन होती है वो भी ठीक रहती है, वो बनी रहती है।
2: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे हम देखते हैं बच्चों में कीड़ा काफी जल्दी लग जाता है, उसके मुख्य कारण क्या होते हैं?
0: देखिए आजकल के जो बच्चों की खाने पीने की है आदतें, वो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आजकल के जो बच्चे हैं वो मीठा या जंक फूड खाते हैं। दूसरा उनका ये है कि वो इन चीज़ों को खा के उसके बाद प्रॉपर ब्रशिंग या कुल्ला नहीं करते हैं, ठीक है। एक और छोटे सबसे छोटे बच्चों में मैं ये कहूँगी कि बॉटल फीड की उनमें आदत है बच्चों में आजकल, कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि रात को बच्चों को सुलाते टाइम उनके मुंह में बॉटल फीड दे देते हैं, उसके बाद वो बच्चा जैसे सो गया नींद में, उसके मुंह में वही वो जो शुगरी जो ड्रिंक है वो उसके मुंह में ही रहता है। जब वो शुगर दांत के साथ मिलता है तो उससे क्या होता है, वहाँ पर सड़न पैदा होनी शुरू हो जाती है, तो जैसे कीड़ा लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये नॉर्मल आजकल है कि जो शुगर फीड है या जो शुगर ये बॉटल फीड करते हैं, तो इससे कीड़ा लगने की संभावना ज्यादा रहती है।
1: तो इससे कैसे बचा जा सकता है मैम?
0: देखिए इससे देखो, अगर तो कोशिश कीजिए कि बच्चा सोने से पहले अगर आप उसको बॉटल फीड करा दीजिए, कि बॉटल फीड कराने के बाद आप उसको कुल्ला करवाइए, उसके बाद उसको सोने दीजिए। अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाता ऐसा, तो कोशिश कीजिए कि खुद आप, जैसे बच्चा अगर सो भी गया है तो किसी साफ़ कपड़े से उसके दांत साफ़ कीजिए या उसके मसूड़े साफ़ कर दीजिए, ताकि वो जो शुगर जो उसके दांतों पर या मसूड़ों पर लगी है वो ना रहे वहाँ पर।
1: तो मैम बच्चों की बात हो रही है, तो क्या दूध के दांत खराब हों तो उनका इलाज भी हो पाता है?
0: जी हाँ बिल्कुल, दूध के दांत का भी इलाज होता है। और मैं कहूँगी कि अगर आपके बच्चे के दूध के दांत खराब हैं तो उसको श्योर आपको डेंटिस्ट से ज़रूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि आम तौर पे ये धारणा रहती है कि ये तो दूध के दांत हैं, ये तो
1: जी
0: टूट ही जाएंगे, आगे
1: जी
0: जाके पक्के दांत आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपके दूध के दांत खराब हैं तो जो आगे आने वाले दांत हैं, जो जिनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, तो उनके विकास के ऊपर वो बहुत इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए अगर दूध के दांत खराब है तो उसको भी आपको चेकअप करवाना ज़रूरी रहता है।
1: जी, तो बच्चों के दांत जब निकलने वाले होते हैं मैम, तो बहुत से बच्चों को लूज मोशन लगते हैं,
0: जी
1: दस्त उन्हें हो जाते हैं,
0: जी
1: तो ये एक बुजुर्ग घर में भी बोलते हैं और एक आम भ्रांति है कि जब बच्चों को दांत आएंगे तो उन्हें दस्त होंगे ही होंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
0: नहीं देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता है कि ऐसा बच्चों के साथ हो, हर किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता कि हर किसी को दस्त लगते ही लगते हैं। वो ये मैं कहूँगी कि बच्चे के डेवलपमेंट पे या उस टाइम पे जब बच्चा खाना पीना जो खा पी रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को दस्त लगेंगे कि नहीं। अगर बच्चा हेल्दी है आपको लगता है, तो उस केसेस में थोड़े कम चांसेस रहते हैं कि लूज मोशन के या दस्त के, पर ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चे में अगर दांत निकल रहे हैं तो उसको दस्त लगेंगे लगेंगे, ऐसा नहीं होता है।
1: जी, तो माता पिता जो है वो अपने बच्चों की डेंटल केयर में कौन कौन सी आम गलतियां करते हैं?
0: देखिए एक तो ये है कि आजकल पेरेंट्स की आजकल बच्चे जब जिद करते हैं ना, तो ये नॉर्मल है कि पेरेंट्स को रहते हैं कि आप उनको जंक फूड खिला देते हैं, या आजकल के बच्चों में आदत है कि चॉकलेट्स चिप्स
1: जी
0: ये खाने की ज़्यादा आदतें हैं। उसके बाद पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि उनको खिलाने के बाद उनको प्रॉपर ब्रशिंग या उनको रिंस करने की आदत नहीं डलवाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक पेरेंट्स की गलती है। फिर तीसरा ये है कि अगर प्रॉपर जो उनका रूटीन चेकअप जो होना चाहिए हर 6 महीने में एक बार, वो भी पेरेंट्स इतना ध्यान उस पर नहीं देते हैं। तो ये 2-3 गलतियां हैं कि जो मोस्टली हर पेरेंट करता ही करता है कि अपने बच्चों के डेंटल उसमें।
1: जी
2: डॉक्टर साहब, सरल भाषा में समझाइए RCT क्या होती है? देखिए
0: RCT होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट,
2: जी
0: इसमें हम लोग करते हैं जो दांत की नसें होती हैं हम लोग उसका इलाज करते हैं, ठीक है। ये हम उस केस में करते हैं जब दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जब जो हमारा मरीज़ है उसमें जैसे ठंडा गर्म की शिकायत हुई, या उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या उसमें पस पड़ गई है, उसको स्वेलिंग हो गई है, तो ज़्यादातर हम उस केस में नसों का इलाज करते हैं। नसें हैं या अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं उसको ट्रीट करते हैं इसमें।
2: तो क्या इसमें दर्द भी होता है?
0: नहीं देखिए, दर्द नहीं होता। ये जब भी हम लोग करते हैं इसको RCT को, तो सबसे पहले हम लोग एनेस्थीजिया देते हैं इसमें, मतलब दांत को सुन करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको दांत को सुन करते हैं, उसके बाद ये ट्रीटमेंट होता है। और ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि दांत को अंदर से हम लोग अच्छे से सफाई करते हैं, उस दांत की सफाई करने के बाद जो खाली जगह बच जाती है, जब नसें हम लोग हटा देते हैं जहाँ पे वो खाली जगह बचती है, वहाँ पे हम लोग एक ऊपर से GP

0: डालते हैं, जिसको बोलो मटेरियल डाल देते हैं ताकि वो खाली जगह ना बचे और दोबारा से बैक्टीरिया का अटैक ना हो। वो भरने के बाद ऊपर से हम लोग दांत की फिलिंग करके उसके ऊपर कैप दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस रहता है आरसीटी का, तो इसमें दर्द नहीं होता। बाकी साथ के साथ हम लोग पेशेंट जो होते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, हम लोग उनको एंटीबायोटिक्स और जो पेन किलर्स है वो भी रेकमेंड करते
1: तो
0: हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसके इलाज में साथ वाले दांत को कोई असर होता है या वो वैसे बरकरार रहता है?
0: नहीं, आरसीटी में देखिए जो दांत आपका खराब है वैसे तो उसी में ही होता है, साथ वाले दांत पे इसका कोई असर नहीं होता है। पर हाँ देखिए, अगर आपका सपोज दांत खराब है, ठीक है, बहुत दर्द है, तो कई बार क्या होता है कि अगर आप डिले करते हो उस चीज़ को कि नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो क्या होता है कई बार जो एक दांत की इन्फेक्शन है वो दूसरे दांत में या आसपास के दांतों में फैल सकती है। तो उस केस में ये होता है कि आपकी इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। अगर एक दांत में आरसीटी होनी है तो वो चांसेस हो जाते हैं कि दूसरे दांतों में भी हो जाए। पर अगर एक ही दांत में है, आप उसी टाइम पे उस दांत को ट्रीट करवाते हैं, तो फिर वो आरसीटी मतलब सिर्फ उसी पर्टिकुलर टूथ में होती है, आसपास के दांतों को वो असर नहीं करती है।
2: जी, तो आरसीटी करवाने के बाद मैम, जो जैसे जो वो दांत है तो वो बाकी दांतों की तरह ही रहता है या उसमें कोई फर्क आ जाता है? जैसे कुछ हार्ड चीज हम जब चबाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ फंस जाएगा, इसका भी डर रहता हो?
0: नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों, जैसे कि हम लोग आरसीटी जब हम लोग करते हैं, आरसीटी पूरा हम कंप्लीट करके उसके ऊपर फिलिंग देके उसके ऊपर हम लोग क्राउन दे देते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल दांत जिसको बोलते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि वो आपका दांत वहाँ पे खाना फंसेगा या कुछ भी। आप आराम से जो भी आप डेली खाना खाते हैं वो आप आराम से खा सकते हैं, वो आपका एज अ नेचुरल टूथ ही जो वर्क करेगा।
2: अब बात करते हैं दांत निकलवाने की, तो दांत कब निकलवाना जरूरी हो जाता है? क्या हर दर्द में जो दांत निकलवाना ही एक समाधान है?
0: नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दांत हम लोग उस कंडीशन में निकालते हैं जब हमें लगता है कि इस दांत को हम लोग आरसीटी से नहीं बचा सकते हैं। हमारी सबसे पहले कोशिश यही रहती है कि अगर दांत में दर्द है या कुछ दिक्कत है तो हम लोग उसको आरसीटी से बचाएं।
2: जी,
0: अगर हमें लग रहा है कि ये आरसीटी के लायक भी नहीं है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब उनका दांत बहुत ज़्यादा सड़ गया होता है, बहुत ज़्यादा खराब हो गया, ऊपर से दांत पूरा टूट गया, तो हमें उस केस में हमें उसकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। अदरवाइज हम यही कोशिश करते हैं कि उस दांत को बचाया जाए, ना कि उसको निकाला जाए।
2: तो श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्यम का शेष भाग आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।
3: सुना जा सकता है प्रादेशिक

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। दिल्ली से शिमला के लिए आज से हवाई सेवाएं बहाल। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन की जाएंगी संचालित। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पीति में लिख रहा विकास की नई इबारत। बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर शिमला में राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल से 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। इस बार मार्च माह में 93,564 विद्यार्थियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। विद्यार्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं 3 से 29 मार्च तक आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन 384 केंद्रों पर हुआ था। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं आज से दोबारा बहाल हो रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी कल 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस रूट पर मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हवाई सेवाएं होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अब लाहौल स्पीति के गांवों में विश्वास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई कहानी लिखता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चीन सीमा से सटे गांव तेजी से बदल रहे हैं। स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और माने जैसे गांव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गांवों में नई उम्मीद देना है, ताकि समय पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस कर सकें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और माने जैसे गाँव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। यहाँ सड़क, पानी, बिजली, इंटरनेट और रोजगार जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन और लोक निर्माण विभाग दुर्गम गांवों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ रहे हैं। वहीं 5G टावर लगने से अब दूर दराज इलाकों में भी डिजिटल क्रांति पहुंच रही है। पर्यटन विभाग स्थानीय युवाओं को होम स्टे और टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दे रहा है। कालाजीरा, केसर और सेवक थॉन जैसे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान दिलाने के लिए आधुनिक मशीनें और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गाँव में नई उम्मीद जगाना है, ताकि सीमा पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस करें। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से यह आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। ये परियोजना इस वर्ष जुलाई से 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। इसके तहत कल्याण मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियाँ और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज शिमला में कल बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व सूचना प्रौद्योगिकी के युग में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों व युवा अधिवक्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे अधिवक्ताओं की आवश्यकता होगी जो इन संवेदनशील व जटिल मुद्दों को प्रभावी रूप से समझ सके। इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न राज्यों से आए 400 से अधिक शोधार्थियों, प्राध्यापकों, शिक्षकों व विद्यार्थियों ने भाग लिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। किन्नौर जिला की प्राकृतिक विरासत, दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आज समापन होगा। ये आयोजन 8 मई से हिमाचल पर्यटन विभाग, ओम किन्नौर स्थानीय शाखा, वन विभाग और जिला प्रशासन किन्नौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
2: प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गौली क्षेत्र में आयोजित इस फेस्टिवल में स्थानीय लोगों, पर्यावरण प्रेमियों, पक्षी विशेषज्ञों, फोटोग्राफरों, कलाकारों और पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फेस्टिवल के पहले दिन संगीत प्रस्तुतियां, पर्यावरण एवं पक्षी संरक्षण कार्यशालाएं, कविता पाठ, फोटो प्रदर्शनी, फन गेम्स, फूड स्टॉल, स्मृति चिन्ह स्टॉल और स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही पारंपरिक उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिला। आज फेस्टिवल के अंतिम दिन पक्षी अवलोकन, प्रकृति भ्रमण, विशेषज्ञ संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम आमतौर पर साफ है, हालांकि प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है और लोगों को सुबह व शाम गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। विभाग के अनुसार मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो, जबकि 12 और 13 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज व अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, रिकॉर्ड गुम होने पर भू स्वामी का हक खत्म नहीं हो जाता, अदालत ने कहा प्रशासनिक चूक की सजा नागरिकों को नहीं दे सकते, लैंड बहाली मामले में पुनर्विचार का आदेश। पंजाब केसरी की सुर्खी है, हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश। दैनिक जागरण की एक खबर है, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश, 31 मई तक तबादलों की फाइल न भेजें, शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया भी टालने का आग्रह। मौसम पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, राज्य में कल से फिर झमाझम 12 व 13 को भारी बारिश के आसार, ओलावृष्टि तूफान का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। दिल्ली से शिमला के लिए आज से हवाई सेवाएं बहाल, मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन की जाएंगी संचालित। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पीति में लिख रहा विकास की नई इबारत। बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर शिमला में राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल से 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आरोग्यम का शेष भाग। दांत निकलवाने के बाद डॉक्टर साहब, मरीज को किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है?
1: दांत निकालने के बाद, देखिए जब हम दांत निकालते हैं उसके बाद हम पेशेंट के मुंह में कॉटन रख देते हैं, ठीक है। हम मरीज़ को बोलते हैं कि आप कम से कम 30 मिनट तक उस जो कॉटन को दबा के रखना ज़रूरी होता है ताकि जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाए, ठीक है। 30 मिनट के बाद पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप कॉटन निकाल के कुछ ठंडा ले लीजिएगा, और जो भी आपको मेडिसिंस डॉक्टर ने दी हैं, आपके डेंटिस्ट ने जो भी मेडिसिंस दी हैं, आप वो मेडिसिंस लीजिए। इसमें खास बात इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको थूकना नहीं है। जिस दिन आपने दांत निकलवाया उस दिन ना तो आपने थूकना होता है ना ही आपने कुल्ला करना होता है बार बार, क्योंकि जितना आप थूकेंगे या जितना आप कुल्ला करेंगे उससे क्या होता है कि वहाँ पर जख्म नहीं बनेगा और आपको जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूस आपको ब्लीडिंग होती रहेगी, आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। और अगर आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो वो कुछ और दिक्कत या और परेशानी आपको कर सकती है। तो यही एक मेन सावधानी होती है कि आपको ज़्यादा थूकना नहीं है। और दूसरी चीज़ एक और कि आपको उस दिन गर्म नहीं खाना होता, जो भी आप लोग ठंडा खाएं, थोड़ा सॉफ्ट खाएं, तो वो चीज़ जितना ज़्यादा आप थूकेंगे उतना ज़्यादा ब्लीडिंग होएगी।
2: डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताइए कि दांतों की सफाई क्या होती है, क्योंकि लोगों में वहम है कि दांतों की

0: अगर हम सफाई करवाएंगे तो दांत कमजोर पड़ जाते हैं, इसमें कितना सच है?
1: देखिए, ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि दांतों की सफाई या जैसे हम स्केलिंग बोलते हैं अपनी भाषा में कि उसको कराने से दांत वीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। दांतों की सफाई क्या है कि जब दांतों पे आपके बहुत ज़्यादा, देखिए, अगर प्लाक जम जाता है, जो गंदगी जम जाती है, अगर हम लोग उसको नहीं निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अगर वो जो गंदगी है अगर वो बढ़ती जाएगी तो वो दांतों के पास जमा होने शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो मसूड़ों की पकड़ है आपके दांतों पर वो कम होती जाएगी, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि अगर आप उसकी सफाई नहीं करवाएंगे तो उस केस में रहता है कि दांत आपके वीक हो जाएंगे। तो मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनकी आम धारणा रहती है कि अगर हम स्केलिंग कराएंगे तो हमारे दांत वीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। जब भी आप सफाई करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको एक बार लगता है कि ऐसा कुछ है, बट ऐसा नहीं होता। दांत कभी भी हिलते नहीं है स्केलिंग के बाद, और बल्कि आपके जो उन मसूड़ों की पकड़ है वो और भी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे कि आपके दांत और ज़्यादा मजबूत होते हैं।
2: जी, तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जैसे टेढ़े मेढ़े दांत भी कई लोगों के होते हैं, तो क्या सेहत पर भी ऐसे दांतों का असर पड़ता है?
1: जी हाँ, देखिए, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें रहती हैं। एक तो ये कि आपके दांतों की अच्छे से सफाई नहीं हो पाएगी, आपके दांत आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो प्रॉपर वहाँ पे ब्रश जा नहीं पाएगा और अच्छे से सफाई नहीं हो पाएगी। दूसरा, वहाँ पे खाना फंसने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर खाना वहाँ पे ज़्यादा फंसेगा और फिर अच्छे से ब्रश नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे सड़न पैदा होएगी, कैविटी बनेगी और कुछ भी दिक्कत आगे चल के हो सकती है आपको, ठीक है। तीसरा ये भी होता है कि अगर दांत आपके टेढ़े मेढ़े हैं तो कई बार क्या होता है कि आपको जैसे खाना जब आप चबा रहे हो तो एक अगर दांत आपके आगे पीछे कहीं मिल रहे हैं तो उससे आपके ये जो ज्वाइंट रहता है जिसको हम लोग TMJ या मोस्टली टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट बोलते हैं, उस पर भी असर पड़ सकता है। और कई बार होता है कि थोड़ा साइकोलॉजिकल भी इसका इफेक्ट रहता है कि पर्सन को, अगले वाले पर्सन को या पेशेंट को खुद को ही देखने में वो अच्छे नहीं लगते हैं कि आगे पीछे है दांत या ऊपर है या थोड़ा ज़्यादा बाहर को है, तो उस केस में भी रहता है कि पेशेंट थोड़ा उस चीज़ से खुश नहीं होता। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं
2: जी। तो डॉक्टर साहब, ऐसा है ना कि अगर टेढ़े मेढ़े दांत आए ही ना तो इसके लिए हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
1: देखिए, टेढ़े मेढ़े दांत ना आए इसके लिए तो मैं ये कहूँगी कि जैसे ही पक्के दांत आने शुरू होते हैं तो आप डेंटिस्ट से अपना चेकअप करवाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मोस्टली 7-6 या 7 साल से, क्योंकि पक्के दांत आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको उस टाइम पे लगता है कि पेशेंट के दांत जो है, बच्चे के दांत है, वो आगे पीछे आ रहे हैं, उसी टाइम पे आप जो डेंटिस्ट है आप उनसे चेकअप करवाइए, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक स्पेस मेंटेनेंस, जिससे कि हम लोग दांतों की जो जगह है वो वहीं पर बना के रख सकते हैं कि दांत टेढ़े मेढ़े ना आए। तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स रहते हैं काफ़ी तरीके के, पर यह है कि उसके लिए आपको पहले ही आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा।
2: जी, तो जैसे कि ब्रसेल्स होते हैं तो वे किस उम्र में लगाना बेहतर होता है, क्योंकि कई लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े या फिर ऊपर की ओर होते हैं, तो कुछ लोग इसको लगवाना चाहें तो कौन सी उम्र में इसको लगवाना सबसे ज़्यादा सही होगा?
1: देखिए, जैसे जो उम्र अगर मैं बोलूँ तो जैसे 9 से जो 14 साल की उम्र रहती है उसमें लगाना ठीक रहता है वैसे ये। उसमें क्या होता है कि जो आपके दांत की हड्डी होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, उस टाइम पे अगर हम लोग ब्रेसेस लगवाते हैं तो जो दांतों की मूवमेंट होती है वो बहुत इजीली हम करवा सकते हैं। दूसरा, हम ये कई बार देखते हैं कि अगर जैसे पेशेंट का जो कैनाइन टीथ होता है, जो फ्रंट से तीसरे वाला जो दांत होता है, हम कई बार उसका वेट करते हैं कि अगर वो दांत निकल जाए उसके बाद आप कभी भी अपना ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करवा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शंस रहते हैं ब्रेसेस लगवाने के। तो आप आइडियली आप मान के चलिए कि जब आप 12-13 साल के हैं उस टाइम से आप अपना ये ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं।
2: अगर उसके बाद भी लगवाना पड़ जाए तो सही उम्र क्या रहती है कि कब तक लगवा सकते हैं?
1: देखिए, आप लगवाना चाहे तो आप 40-50 की उम्र तक भी लगवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनके लगवाते हैं। अगर आप ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते हैं तो उस केस में हमारे पास एलाइनर्स का एक ऑप्शन रहता है, तो हम एलाइनर्स भी लगवा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में जगह होती है, तो क्या वो सामान्य है?
1: जी हाँ, बिल्कुल वो सामान्य है। कई बार क्या होता है कि जब जैसे सपोज सामने के जो 2 दांत आ रहे हैं वो अगर प्रॉपर मीट नहीं हो पाते तो वो नॉर्मल है कि वो 2 दांतों में गैप रह जाता है। तो उसको बंद करने का, उस गैप को बंद करने का भी हमारे पास 2-3 ऑप्शंस रहते हैं उसमें।
2: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि तंबाकू, बीड़ी, हुक्का या सुपारी, इनका सेवन कुछ लोग जैसे करते हैं तो मुँह पर और दांतों पर इनका कितना खतरनाक असर पड़ता है?
1: देखो तंबाकू बीड़ी या ये जो सुपारी जो लोग लेते हैं, मैं बताना चाहूँगी कि वो बहुत बुरा असर करते हैं आपकी बॉडी पे। जो तंबाकू अगर जो लोग सेवन करते हैं उनमें आम देखा गया है कि उनके मुंह में ओरल कैंसर, जिसको हम मुख का कैंसर बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके मुंह में बनने के तंबाकू से। जो लोग सुपारी का सेवन करते हैं उस केस में क्या होता है कि पेशेंट को OSMF करके हम लोग एक बीमारी बोलते हैं, वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए जो ओरल कैंसर है वो तंबाकू की वजह से है, उसमें होता है कि आपके मुंह में छाले हो जाना या जो हील नहीं हो पा रहे हैं, है ना, वो चीज़ रहती है। जो OSMF जो दूसरी बीमारी बोल रही हूँ उसमें पेशेंट को दिक्कतें ये आती हैं कि उसमें उनका मुंह खुलने में दिक्कत हो जाती है, थोड़ा जलने उसके मुँह में मसूड़े जलते हैं, उनको ऐसा लग रहा है मुँह में बर्निंग सेंसेशन होती हैं। तो कई तरीके की ये बीमारियाँ होती है और मैं कहूँगी कि बहुत घातक रहती हैं ये चीज़ें। अगर आप पान सुपारी या ये जो बीड़ी तंबाकू जो लेते हैं, आप सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो उसमें ये रहता है कि आपके मुंह में स्टेन्स हो जाते हैं, जो दाग धब्बे हो जाते हैं, तो वो देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। तो ये कुछ इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि जो हर पेशेंट में देखने को मिलते हैं जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं।
2: जी, तो डॉक्टर साहब जैसे कि कई बार मुंह से बदबू आती है, तो बदबू सिर्फ सफाई की कमी से ही आती है या ये भी कोई बीमारी का लक्षण है?
1: देखिए ये बीमारी का लक्षण हो सकते हैं जब आप मसूड़ों की सफाई अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं। कई बार क्या है कि पेशेंट बहुत अच्छे से अपने दांतों को ब्रश कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से वो टूथपेस्ट अपना जो भी मंजन है आप उसको यूज़ कर रहा है, फिर भी उसके मुंह में स्मेल आती है, तो उस केस में कई बार क्या होता है कि मसूड़ों की दिक्कत हो जाती है। मसूड़ों में कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है या उनमें पस भर जाती है, तो ये भी एक कारण होता है कि जिसकी वजह से मुँह में स्मेल आती है। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रश कर रहे हो और आपके मुँह से स्मेल नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आप ब्रश आप कर रहे हो, आप दो बार ब्रश कर रहे हो, पर अगर आपके मसूड़े स्वस्थ नहीं हैं तो उस केस में आपके मुंह से स्मेल आनी शुरू हो सकती है।
2: तो डॉक्टर साहब क्या वाइटनिंग टूथपेस्ट सच में दांतों को चमका देते हैं?
1: नहीं, देखिए जो वाइटनिंग टूथपेस्ट होती है वो आपके देखिए दांतों का एक नेचुरल कलर होता है, वो उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं जो आप वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। बट हाँ, अगर आप इनको बहुत लंबे टाइम तक अगर इनके यूज़ करते हैं तो ये आपके दांतों में सेंसिटिविटी का इशू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वाइटनिंग टूथपेस्ट, हर वाइटनिंग टूथपेस्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके उससे आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है।
2: जी, तो क्या उम्र के साथ डॉक्टर साहब दांत गिरना सामान्य है?
1: मेरा मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए दांत उस स्थिति में गिरते हैं जब आप उनकी सही से आप उनकी देखभाल नहीं करते हैं, ठीक है। विद एज क्या होता है कि हम दांतों की अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में दांतों का हिलना, मसूड़ों में पस पड़ जाना या मसूड़ों में सोजिश आ जाना, तो ये दो तीन कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये सामान्य नहीं होता है कि विद एज आपके दांत हिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। पर उनकी सही आप जब रख रखाव नहीं करते हैं, सही आप अपने मुँह की देखभाल नहीं करते हैं, तो उस केस में चांसेस उसमें चांसेस हैं कि आपके बढ़ेंगे बढ़ेंगे।
0: डॉक्टर साहब ये बताइए हमें कितने समय बाद डेंटल चेकअप कराना चाहिए?
1: अगर मैं कहूँ तो 6 महीने में एक बार आपको अपना डेंटल चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, चाहे आपके मुंह में कोई दिक्कत है चाहे आपके नहीं। 6 महीने में हम लोग इसलिए सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके कुछ दांतों में कुछ दिक्कत होने वाली है या सपोज़ कुछ कीड़ा लगा है या कुछ है ऐसी कुछ दिक्कत आने वाली है, तो उसको हम लोग पहले ही डायग्नोज कर पाएँ और उसको पहले ही जो अर्लियर इनिशियल स्टेजेस में हमने उसको ट्रीटमेंट देना है वो हम लोग दे पाएँ, ताकि बाद में पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत ना हो।
2: जी, तो मैम जैसे कई बार दांत में दर्द अचानक से हो जाता है, तो अगर गांव में जहां पर की डेंटिस्ट उपलब्ध नहीं है तो एकदम से किसी के दांत में दर्द हो रहा है, तो शुरुआती उसका जो उपचार है वो कैसे किया जाए?
1: देखिए शुरुआती उपचार तो मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें कहूँगी कि छोटे छोटे घरेलू उपचार ही मैं इनको बोलूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं तो उस केस में देखिए आप लौंग का तेल, हम लोग मोस्टली बोलते हैं कि लौंग का तेल थोड़े से कॉटन में लेके रुई में लेके आप अपने दांत में रख सकते हैं, ठीक है, उससे क्या है कि थोड़ा सा दांत का दर्द आपका कम हो जाएगा। दूसरा मैं घरेलू उपचार बोलूँगी कि जैसे थोड़े से कोसे पानी में नमक मिला के आप उसके कुल्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा मैं बोलूँगी कि किसी रुमाल में या किसी कपड़े में जैसे आप बर्फ़ रख के उसकी आप ठंडी सिकाई कर सकते हैं। तो ये कुछ घरेलू उपचार हैं, पर मैं ये कहूँगी कि ये फॉर द टाइम बीइंग ही आपको थोड़ा आपको टेम्प्रेरी रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ घरेलू उपचार है, तो पर कोशिश कीजिए कि जैसे ही आपको टाइम मिले आप डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाके एक बार चेकअप करवाएं।
2: जी, तो जैसे कि डॉक्टर

0: अब चाय का सेवन बहुत से लोग करते हैं, तो चाय से भी क्या दांत खराब होते हैं?
1: जी हाँ बिल्कुल। देखिए चाय में क्या है कि जो शुगर रहती है, ठीक है, उसमें जो एसिड रहता है, जब वो क्या होता है कि जब वो अपने इनेमल के साथ मिक्स होते हैं तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। जब वो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है तो वो दांतों में सड़न पैदा करने शुरू कर देता है, ठीक है। तो अगर सड़न पैदा होएगी, दांतों में कैविटी बनेगी, तो वो एक दिक्कत करेगा। दूसरा है कि जब चाय पीते हैं, चाय में क्या है कि टैनिन होता है, उससे क्या होता है कि अपने दांतों पे जो दाग धब्बे हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं अगर आप इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। तो ये मैं वही कहूँगी कि अगर आप चाय वगैरह पीते हैं तो थोड़ा कोशिश कीजिए इन चीज़ों का सेवन थोड़ा कम कीजिए। पर हाँ, अगर आप पी रहे हैं तो कम से कम उसके 30 मिनट बाद एक बार कुल्ला ज़रूर कर लीजिए।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि कहा जाता है कि चाय पीने के बाद
1: जी
0: तुरंत एकदम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए,
1: जी
0: तो ये बात कितनी सच है?
1: देखिए बिल्कुल सच है कि अगर आप गर्म चाय के ऊपर ऐसे ठंडा पानी पीते हैं तो एकदम से आपके दांतों को प्रभाव ज़रूर करेगा। ये हम अपनी इसको डेंटल लैंग्वेज में हम लोग इसको थर्मल शॉक बोलते हैं, ठीक है। कि अगर जैसे ही आपने गर्म चाय पी, ऊपर से आपने ठंडा पानी पिया, तो ये जो इनामल होती है, अपनी जो कठोर परत होती है, उसको या तो वीक कर देती है, ठीक है, या उसको पोरस कर देती है, जिससे कि आपको सेंसिटिविटी का इशू हो सकता है बाद में, या पेन हो सकती है आपके दांतों में, या वीक हो सकते हैं आपके दांत।
0: जी, तो मसूड़ों से भी कई बार डॉक्टर साहब लोगों के खून आना शुरू हो जाता है, तो
1: जी
0: या किसी ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है?
1: जी हाँ बिल्कुल। देखिए अगर आपके मसूड़ों में से खून आता है, वो इस वजह से होता है कि जब आपके मसूड़ों में बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, या आप उसको अच्छे से अपने मसूड़ों की सफाई नहीं करवा पाते हैं, या उनमें गंदगी जमा होती रहती है। तो देखिए ये मसूड़ों में जो खून आता है, ये मैं कहूँगी एक इनिशियल स्टेज है, ठीक है, डेंटल प्रॉब्लम की एक इनिशियल स्टेज है, ठीक है। अगर आप इसका ओवर टाइम अगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो ये जो मसूड़ों की बीमारी है ये आगे और भयंकर रूप ले सकते हैं, ठीक
0: जी
1: है, जिसको कि हम लोग पायरिया या पेरिटोनाइटिस कहते हैं, जिसमें कि आगे चल के आपके दांतों में पस तक भी पड़ जाती है, पस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, दांत आपके हिलने शुरू हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाती है।
0: जी
1: जी
0: तो जैसे कि मैम, आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल या टीवी देखते हुए बार बार कुछ न कुछ खाते रहते हैं, तो
1: जी
0: क्या इससे भी कैविटी बढ़ती है?
1: जी हाँ बिल्कुल। देखिए आजकल के बच्चे क्या है कि जब टीवी देखते हैं उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है खाने में, तो
0: जी
1: वो जो भी उनके सामने आ रहा है, चाहे शुगरी है, कोई मीठी चीज़ें आ रही हैं, जंक फूड आ रही हैं, तो मोस्टली क्या करते हैं बच्चे खाते हैं और फिर से टीवी में वो अपने मगन हो जाते हैं। बट वो जैसे जब कुल्ला वगैरह नहीं करते हैं या रिंस नहीं करते हैं, तो ये बच्चों में टेंडेंसी आज के टाइम पे मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि बच्चों के दांत बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं,
0: जी
1: और बहुत कम उम्र से बच्चों के दांत खराब होना शुरू हो रखे हैं, क्योंकि बच्चे आजकल टीवी और मोबाइल पे इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि वो अपना डेंटल हाइजीन को नहीं ध्यान में रखते हैं। तो वो बैठे हैं टीवी के सामने, देख रहे हैं, खा रहे हैं अपना, उसके बाद रिंस करना या कुल्ला करना वो नहीं करते हैं, तो ये आम बात है।
0: जी तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अब अक्कल डाट की हम बात कर लेते हैं, तो
1: जी
0: वो कई उम्र तक निकलती ही रहती है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में वो निकलती
1: जी
0: है, जो कि बहुत दर्द देता है, तो
1: जी
0: इसके बारे में आप कुछ बताइए।
1: देखिए जो अकल दाढ़ होती है वो मैं कहूँगी कई बार क्या होता है कि 35-40 उम्र तक भी निकलती रहती है, ठीक है, और इसका निकलने का कोई एग्जैक्ट समय नहीं है, ठीक है, ये कभी भी निकल सकती है। और कई बार क्या होता है किसी भी डायरेक्शन में, कई बार होता है कि मुंह के अंदर वाली साइड निकल रही है या कई बार बाहर वाली साइड निकलती है, तो ये जब भी निकलती है तो ये नॉर्मल है कि ये परेशानी करती ही करती है। और उस टाइम पे क्या होता है कि जब ये निकल रही होती है तो कई बार क्या होता है आपको मुंह खुलने में दिक्कत है या आपको खाना चबाने में दिक्कत है, तो इसका इलाज वही है कि आपको डेंटल के पास जाके एक बार इसका चेकअप जरूर करवाना चाहिए।
0: घर पे इसका कोई उपचार नहीं होता?
1: मैम देखिए घर पे मैं कहूंगी कि अगर आपको कई बार है कि रात को दर्द हो जाता है या कुछ दिक्कत है, तो बस आप इतना कर सकते हैं कि कोसे पानी में जैसे नमक डाल के आप वो उसके कुल्ले कीजिए, या जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ी ठंडी सिकाई आप सिर्फ वो कर सकते हो। तो ट्रीटमेंट आप खुद से अपने घर पे आप कुछ नहीं दे सकते, इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना ही पड़ेगा।
0: जी, अगर दर्द ज़्यादा है तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना
1: जी बिल्कुल
0: चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जी, फीलिंग और कैविटीज़ की बात हम करते हैं, तो दांत में फीलिंग हमें कब करवाना चाहिए?
1: देखिए दांत
0: कितना ज़रूरी है और ये फीलिंग करवाना?
1: देखिए दांत में फिलिंग, जैसे ही आपको शुरुआती तौर पे कई बार क्या होता है, पेशेंट हमारे पास आता है, वो बोलते हैं कि जी मेरे दांतों में इसको ऐसे लग रहा है कि खाना फंस रहा है, ठीक है। अगर उनको दांत में कुछ ऐसी कैविटी नज़र आ रही है, कुछ कहीं लग रहा है उसको, कहीं ब्राउन स्पॉट नज़र आ रहा है, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि तुरंत डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाइए। क्योंकि कैविटी क्या होता है कि अगर इनिशियल स्टेज पे ही है तो हम लोग उसको फिल कर सकते हैं, अगर वो कैविटी जैसे जैसे अगर वो बढ़ती जाएगी तो उस टाइम पे जो फिलिंग है हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, फिर उसके बाद उसके अलग से ट्रीटमेंट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके दांतों में खाना फंस रहा है, या आपको थोड़ा बहुत कहीं लग रहा है कि थोड़ी सेंसिटिविटी हो रही है, या थोड़ा सा आपको खाना चबाते टाइम आपको दर्द हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि एक बार डेंटिस्ट के पास जाके उसकी फिलिंग आप करवा सकते हैं।
0: फिलिंग सेफ रहती है?
1: जी हाँ बिल्कुल, फिलिंग बिल्कुल सेफ रहती है। और मैं कहूँगी कि अगर दांत जब आपके ख़राब होना शुरू होते हैं तो वो सबसे पहले हमारा स्टेप ही ये है कि अगर आपके दांतों में कैविटी लगी है तो हम सबसे पहले कोशिश ही ये करते हैं कि उसको पहले हम लोग फिलिंग से ही बचा पाएँ। अगर फिलिंग से हमें लगता है कि हम नहीं बचा पाएंगे दांत, तो उसके बाद आगे और ऑप्शंस रहते हैं ट्रीटमेंट के। वो जो आगे वाले ऑप्शंस रहेंगे ट्रीटमेंट के, वो थोड़े ज़्यादा मैं कहूँगी कि ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, जैसे कि RCT कराना या एक्सट्रैक्शन कराना। तो इन सबसे ईजी है कि आप फिलिंग के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। बट फिलिंग से भी पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर आप अपना घर पे ओरल हाइजीन मेंटेन करें ताकि आपको कैविटी लगे ही ना, तो वो सबसे बेस्ट है।
0: जी, तो दांत निकलवाना कुछ लोग ठीक नहीं मानते हैं, ग्रामीण इलाकों में भी, और ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बुढ़ापे में दांत को निकलवाना अच्छा नहीं समझते। अगर उनके दांत ख़राब हैं या सिचुएशन ऐसी है कि उनका दांत निकलवाना ही पड़ेगा, तो ऐसे में क्या किया जाता है?
1: देखिए बुज़ुर्ग लोगों में, या मैं कहूँगी ग्रामीण क्षेत्रों में ना, ये आम धारणा है कि दांत वो लोग नहीं निकलवाते हैं। एक बात ये है कि उनको एक्चुअली, एक तो ये उनको भ्रम है, ठीक है, वैसे मैं कहूँगी इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, उनको भ्रम ये चीज़ है कि अगर हम लोग दांत निकलवाएंगे, खासकर ऊपर वाले दांत, तो हमारे आंखों की रोशनी चली जाएगी। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दांत की और जो आंखों की जो नसें हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। तो देखो अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो उसमें एकमात्र ऑप्शन हमारे पास यही रहता है कि उसको निकालना ही सेफ रहता है। पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रहता है कि लोग जो हैं, मोस्टली जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो जो वहाँ पे जिनको हम क्वैक्स बोलते हैं, या मैं बोलूँगी जो झोला जाप डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाके अपने दांत वगैरह निकलवाते हैं। उसके बाद क्या है कि वहाँ पे जब वो निकलवाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उसके बाद दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कि उनको इन्फेक्शन हो जाना, या जहाँ पे उन्होंने दांत निकलवाया है, जिस जगह से दांत निकलवाया है वहाँ पे पस पड़ जानी, या उनके खून का बंद ना होना, तो ये दिक्कतें उनको कई बार होते हैं कि देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक आम डर है कि जो लोगों में रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो मैं कहूँगी कि जब भी देखिए आप दांत निकलवाएं, या ऐसी अगर आपको कुछ भी समस्या आ रही है, तो एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास आप जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएं, उनसे आप अपना दांत निकलवाएं।
0: जी, तो नकली दांतों की अब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब। जैसे कि नकली दांत किसी ने लगवाने हैं, तो ये कौन सी सिचुएशन में लगाए जाते हैं और कब लगाए जाते हैं, या इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है?
1: देखिए नकली दांत हम लोग तब लगाते हैं जब दांत आपका निकल जाता है, आपका सपोज जो नेचुरल टूथ है वो कई बार क्या होता है कि आता भी नहीं है, या कई बार हम बोले कि वो किसी वजह से आपका दांत खराब हो गया, सड़ गया, तो हमें उसको निकालना पड़ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो तरीके के रहते हैं जो नकली दांत रहते हैं, इसमें बस दो ऑप्शन होते हैं, एक तो रिमूवेबल जो उसको हम निकाल चढ़ा सकते हैं, और दूसरा एक फिक्स का ऑप्शन रहता है। ये दोनों ऑप्शन हमें देखना पड़ता है पेशेंट के मुंह को अच्छे से डायग्नोस करके कि वो कौन सा लगवाना चाहता है, या उनके बोन की हेल्थ क्या है। काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको कि हम लोग चेक करते हैं पहले कि इस पेशेंट के ऊपर रिमूवेबल वाला ठीक रहेगा या वो फिक्स वाला ठीक रहेगा।
2: डॉक्टर साहब इम्प्लांट्स क्या होते हैं?
1: देखिए इम्प्लांट मैं आपको बताऊँ तो आप ये मानिए कि नेचुरल टूथ का एक रेप्लिका ही मैं उस चीज़ को बोलूँगी, ठीक है। ये एक टाइटेनियम पोस्ट कर होती है, ठीक है, जो कि हम लोग जहाँ से दांत निकालते हैं हम लोग उस जगह पे डालते हैं। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ कि ये जहाँ से अपने जो दांत की जड़ निकलती है हम लोग वहाँ पे ही टाइटेनियम पोस्ट डालते हैं। ये बायोकम्पेटिबल होती है, मतलब ये बॉडी के साथ कंपेटिबल रहती है, आपको कोई दिक्कत नहीं करती है। तो ये आजकल का लेटेस्ट टेक्निक है कि जो जब पेशेंट के दांत निकलते हैं तो हम लोग उस पर इम्प्लांट डालते हैं, और ये बहुत सेफेस्ट है और बहुत अच्छा प्रोसीजर है आज के टाइम पे।
0: जी, तो डॉक्टर साहब जैसे कि किसी दुर्घटना में अगर किसी का कोई दांत टूट जाता है या दांत का कुछ हिस्सा ही टूटता है तो वो देखने में बहुत अजीब सा लगता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है आपके पास?
1: देखिए अगर दुर्घटना में दांत टूट जाता है, सपोज देखिए अगर तो आपके पास जैसे ही आपका दांत निकल गया, ठीक है, आप या तो तुरंत उसको डेंटिस्ट के पास आप ले जाइए, कोशिश कीजिए या तो उसको दूध में रख के लेके जाइए, ठीक है, तो उससे क्या होगा वो जो दांत

0: रहेगा वो वाइटल रहेगा, आप साथ के साथ तुरंत आप उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाइए, तो उसी दांत को जो होता है कि डेंटिस्ट फिक्स कर सकता है। अगर आपका दांत, अगर आपके पास वैसा ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में हमारे पास ये होता है कि अगर सपोज देखो थोड़ा सा दांत टूटा है तो उसको हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, हमारे जो फिलिंग मटेरियल कंपोजिट होते हैं उसके साथ हम लोग उसको बिल्ड कर देते हैं, या अगर सपोज पूरा ही दांत निकल गया है तो उस केस में हम लोग इम्प्लांट या और भी जो ब्रिज के ऑप्शंस हैं उससे हम लोग वो दांत लगा सकते हैं।
1: अगर दांत पूरा का पूरा निकला है तो वो फिर से लग जाएगा?
0: जी फिर से लग जाएगा, बट कोशिश कीजिए उसको 30 मिनट के अंदर अंदर आप डेंटिस्ट के पास ले जाइए, और कोशिश कीजिए उसको दूध में रखें क्योंकि वो थोड़ा फिर वाइटल रहता है दूध, तो उसको लगाना वो ईजी रहता है।
1: जी, तो अगर दांत का कोई टुकड़ा ही टूटा है मान लीजिए तो वो फिर से नहीं लगेगा?
0: जी नहीं, वो नहीं लगता है, उस केस में हम लोग कंपोजिट बिल्डअप कर देते हैं, मतलब दांत को वो थोड़ा फिलिंग से हम लोग बिल्ड कर देते हैं उसको।
1: जी
0: जी
2: डॉक्टर साहब, आजकल मार्केट में काफी तरह के फिलिंग मटेरियल चल रहे हैं, तो कौन सा बेहतर है?
0: देखिए आज के टाइम पे जो चल रहा है मोस्टली हमारे पास कंपोजिट चलता है। पहले के टाइम पे हमारे पास एमलगम फिलिंग होती थी, वो आज के टाइम पे वो बंद है क्योंकि उसमें मर्क्यूरी रहता था तो वो बॉडी के साथ कंपेटेबल नहीं होता था, तो और जो उसका कलर होता था तो वो थोड़ा ब्लैकिश कलर में होता था, जो कि अगर फिलिंग आप करवाते हो तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती थी। आज के टाइम पे जो हम लोग फिलिंग करते हैं वो कंपोजिट होती है, वो टूथ कलर के साथ मैच होती है कि अगर आपने फिलिंग करवाई है तो वो पता भी नहीं लगता कि आपने फिलिंग करवाई है, तो आज के टाइम पे कंपोजिट जो फिलिंग है वो सबसे बेस्ट रहती है।
1: जी हाँ, तो डॉक्टर साहब जैसे कि जो हमारी स्माइल है वो हमारे दांतों से ही बनती है, अगर दांत सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं तो हमारी मुस्कान भी सुंदर होती है। तो अगर किसी के दांत अच्छे नहीं हैं और वो अपना पूरे दांतों को पूरी अच्छी तरह से सेटल करना चाहता है तो इसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट होता है?
0: देखिए ट्रीटमेंट मैं बोलूँ कि ट्रीटमेंट से पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, कोशिश कीजिए कि आप अपने जो ओरल हाइजीन है उस चीज़ को मेंटेन कीजिए। मैं इसमें दो तीन आपको एक बोलना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए हर 6 महीने में एक बार आप अपना डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं, जिससे कि आने वाली दिक्कत अगर आपके दांतों में कुछ है हम उसको पहले ही पता कर पाएं, ठीक है। दूसरा है कि प्रॉपर आप उस चीज़ को ब्रश कीजिए, अपने दांतों को ब्रशिंग कीजिए सुबह और रात को सोने से पहले, ठीक है। तीसरा मैं कहूँगी कि आप अपनी डाइट अच्छी लीजिए, खाना जैसे हरे पत्तेदार सब्जियाँ होंगी वो लीजिए, विटामिन सी लीजिए, और ये जो कि आपके दांतों को और मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। और चौथा मैं बोलूँगी कि चाय कॉफ़ी का या खासकर ये जो तंबाकू या जो सुपारी पान मसाला जो लेते हैं प्लीज़ इनका सेवन बंद कर दीजिए कि ये आपके दांतों के लिए बहुत हानिकारक है।
1: जी दांतों में ठंडा और गर्म भी लगता है जैसे जी, तो वो किस वजह से होता है?
0: देखिए वो उस केस में होता है कि जब अगर आपके दांतों में सड़न होगी, आप इनिशियल स्टेज पे उसको ध्यान नहीं देते हैं, जब वो सड़न है, जब वो आपके दांतों की नसों तक पहुंच जाएगी तो उस केस में होता है कि आपको ठंडा या गर्म लगना शुरू हो जाता है। या कई बार क्या होता है कि जब आपके दांत बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं, कई बार हम क्या करते हैं कि दांत ब्रश बहुत ज़ोर से करते हैं, उससे क्या होता है कि जब इनामल हट जाती है तो उस केस में क्या होता है कि जब आपके दांतों में कुछ भी आप कुछ खाते पीते हैं तो वो ठंडा गर्म लग सकता है। तो ये दो दिन है कि इसमें रीजंस रहेंगे, एक तो मैं बोलूँगी कि दांतों का सड़ना, और दूसरा बोलूँगी कि अगर जब मसूड़े अगर आपके स्वस्थ नहीं है, अगर मसूड़े आपके बहुत वीक है तो उस केस में आपको ठंडा गर्म लग सकता है।
1: तो जब भी ठंडा गर्म लगे तो हमें डॉक्टर को दिखाना
0: जरूर बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। तो जैसे मैम टूथपेस्ट की हम बात कर रहे थे तो क्या बच्चों के लिए अलग से टूथपेस्ट रहता है?
0: जी देखिए बच्चों के लिए अलग से टूथपेस्ट रहता है, और मैं कहूंगी कि जो बच्चों की टूथपेस्ट आती है बेटर है कि आप बच्चों को बच्चों वाला ही टूथपेस्ट दीजिए, ठीक है। और बच्चों को बहुत कम मात्रा में उनको टूथपेस्ट चाहिए होता है, ऐसे पूरे ब्रश पे नहीं लगा देना चाहिए। इनफैक्ट जो एडल्ट्स रहते हैं उनको भी बहुत कम मात्रा में टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए, पर बच्चों के लिए हाँ बिल्कुल अलग से आते हैं टूथपेस्ट, जो बच्चों के एज कंपेटेबल रहते हैं तो उनको वही यूज़ करने के लिए रखेंगे।
1: तो कई बार बच्चों को हम ब्रश करवाते हैं तो वो निगल लेते हैं टूथपेस्ट भी उस झाग को, तो ये इससे कोई घबराने वाली बात
0: नहीं? ऐसे कुछ घबराने वाली नहीं होती है बात, क्योंकि जो बच्चों की टूथपेस्ट होती है वो उनको ध्यान में रख के ही बनाई जाती हैं, तो उनमें उतने केमिकल्स और वो नहीं होते हैं कि जो बच्चों को वो दिक्कत करे। बट फिर भी कोशिश कीजिए बच्चों को आदत डालिए कि अगर ब्रश कर रहे हैं तो उसको थूके, उसको अंदर ना लेके जाए।
1: जी तो मैम जैसे जीभ में कई बार छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं
0: जी,
1: तो वो किस वजह से होते हैं?
0: देखिए जीभ में जो दाने होते हैं वो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, ज़्यादा गर्म खा लेते हैं, उससे भी कई बार होता है कि हमारे जीभ में दाने हो जाते हैं। या मैं दूसरा बोलूँगी अगर आप जीभ की अपने अच्छे से सफाई नहीं कर पा रहे हैं, उस पर बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाती है, तो वो भी एक रीज़न रहता है।

0: किड्स पे दान मतलब जीप पे आपके दाने हो जाते हैं, तो ये एक दो रीजंस रहते हैं।
1: जी, ऐसा कहा जाता है कि 32 दांत हमारे होते हैं, तो कई बार कुछ लोग गिनते हैं कि हमारे तो 32 दांत हैं ही नहीं, तो ये इसके बारे में हमें बताइए, जरूरी है 32 दांत होना?
0: नहीं, जरूरी नहीं है 32 दांत होना। देखो 28 दांत जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जो बाकी के 4 दांत होते हैं वो हमारे विजडम टूथ होते हैं, जिसको हम अकल दांत कहते हैं। तो वो किसी किसी पेशेंट में निकलते हैं, किसी मरीज किसी में नहीं निकलते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि जो 4 के 4 आपकी विजडम टूथ है या जो अक्ल दाढ़ है वो निकलेंगे ही, ऐसा नहीं है। तो 28 दांत तो होते ही है, 4 दांत होते हैं विजडम टूथ होते हैं, वो कई बार निकलते हैं तो कई बार नहीं भी निकलते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में अब आप हमारे श्रोताओं को एक आसान सा डेंटल मंत्र अगर आप उन्हें देना चाहें तो वो क्या होगा?
0: देखिए, डेंटल मंत्र मैं यही देना चाहूँगी कि अपने दांतों का ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, प्रॉपर उनको ब्रश कीजिए, प्रॉपर अपने मुँह की सफाई कीजिए, अपना जो रूटीन चेकअप है वो अब ज़रूर कीजिए और करवाइए अपना, और जो ये पान तंबाकू है प्लीज़ उससे आप दूर रहिए। आखिर में एक सभी से विनती है हिमाचल के लोगों से कि हमारे राज्य में ये जो चिट्टा है, ये जो ड्रग है, ये बहुत ज़्यादा पैर पसार रही है, तो मैं हिमाचल के लोगों से ये विनती करती हूँ, खास करके यंगस्टर से, कि प्लीज़ इससे दूरी बना के रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो प्लीज़ अपने घर परिवार के साथ रहिए, अपने घर वालों को इस चीज़ के बारे में अवेयर कीजिए, अपने आस पड़ोस में बचाइए अगर कोई इस बीमारी से ग्रस्त है या जो इस चीज़ को ले रहा है, ताकि हम लोग अपने हिमाचल को बहुत स्वस्थ और नशा मुक्त बना सके। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अगर मुस्कुराना है बेफिक्र, तो रखें अपने दांतों का पूरा फिक्र। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आज आरोग्यम में हमने जाना कि कैसे छोटी छोटी सावधानियां हमारी मुस्कान को स्वस्थ और खूबसूरत बनाए रख सकती हैं। सही ब्रशिंग, संतुलित खान पान और समय समय पर जांच, यही है स्वस्थ दांतों के 3 मजबूत स्तंभ। डॉक्टर मीनाक्षी जी, आपके बहुमूल्य सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: और डॉक्टर जितेंद्र जी, इस कार्यक्रम में सार्थक चर्चा को सहज ढंग से आगे बढ़ाने के लिए भी आपका आभार।
2: धन्यवाद।
1: दोस्तों, याद रखिए, स्वस्थ दांत खुशहाल जीवन। मैं सचिता आपसे लेती हूँ अनुमति। फिर मिलेंगे आरोग्यम के अगले अंक में एक नई जानकारी और नए विषय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार और मातृ दिवस की आप सभी को और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं।

कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की मिलीजुली आवाजों में अभी श्रोता सुन रहे थे कर्ण अर्जुन फिल्म का गीत। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: मई धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
3: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
4: फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण और साथियों का गाया हुआ दिल का रिश्ता फिल्म का गीत। संगीतकार नदीम श्रवण।

क्या कहना, इस फिल्म का गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाजें थी, संगीतकार थे राजेश रोशन।

कविता कृष्णमूर्ति के गाए प्यार झुकता नहीं फिल्म के इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मदर्स डे की एक बार फिर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 10:30 हो चुके हैं और ये समय है हिमाचली गीत और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम का। सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त हिमाचली लोक गीतों की फुहार लेकर।

0: एक भाई अपने साथियों के साथ अपनी बहन के घर से गुजरता है, तो बहन अपने भाई को अपने आंगन में दरेक पेड़ की छांव में बैठने के लिए कहती है।
1: कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कर्नेल राणा की आवाज में।
0: इस गीत में दोनों भाई बहन के संवादों का चित्रण है।

अमित सरवण व साथियों की आवाज में ये लोकगीत हमारे श्रोताओं ने सुना। हिमाचली गीत और लोकगीत हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब सुनिए रजनी व उमा शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज सुबह 11 बजे घोषित कर रहा है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। इस बार मार्च माह में 93,564 विद्यार्थियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। विद्यार्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं 3 से 29 मार्च तक आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन 384 केंद्रों पर हुआ था। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं आज से दोबारा बहाल हो रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी कल 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस रूट पर मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हवाई सेवाएं होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अब लाहौल स्पीति के गांवों में विश्वास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई कहानी लिखता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चीन सीमा से सटे गांव तेजी से बदल रहे हैं। स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और माने जैसे गांव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गांवों में नई उम्मीद देना है, ताकि सीमा पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस कर सकें। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: स्पीति घाटी के ग्यू, लालुंग और मानी जैसे गांव अब मॉडल विलेज के रूप में उभर रहे हैं। यहां सड़क, पानी, बिजली, इंटरनेट और रोजगार जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन और लोक निर्माण विभाग दुर्गम गांवों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ रहे हैं। वहीं 5G टावर लगने से अब दूर दराज इलाकों में भी डिजिटल क्रांति पहुंच रही है। पर्यटन विभाग स्थानीय युवाओं को होम स्टे और टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दे रहा है। काला जीरा, केसर और सेवक थॉन जैसे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान दिलाने के लिए आधुनिक मशीनें और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि सीमावर्ती गाँव में नई उम्मीद जगाना है, ताकि सीमा पर बसे लोग खुद को देश की मुख्य धारा से और अधिक जुड़ा महसूस करें। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: किन्नौर जिला की प्राकृतिक विरासत, दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आज समापन होगा। ये आयोजन 8 मई से हिमाचल पर्यटन विभाग, ओम किन्नौर स्थानीय शाखा, वन विभाग और जिला प्रशासन किन्नौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। फेस्टिवल के अंतिम दिन आज भी पक्षी अवलोकन, प्रकृति भ्रमण, विशेषज्ञ संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्की धूप के बीच बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है और लोगों को सुबह व शाम गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। विभाग के अनुसार मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो, जबकि 12 और 13 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज व अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: ये हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 MHz पर। प्रातः के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए।

0: सभी श्रोताओं को मेरा यानी गिरेंद्र सिंह ठाकुर का नमस्कार। और श्रोताओं, आज के अंक में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको विदित है कि इस कार्यक्रम में हम एक व्यक्ति विशेष जिसने अपने जीवन के अनेक पड़ाव पार किए हों उनसे बात करते हैं। जीवन में क्या कुछ सीखा, क्या कुछ उन्हें दुश्वारियां आई, क्या कुछ जीवन ने उन्हें प्रेरणा दी, क्या कुछ लेकर बातों को जो है आगे बढ़े, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। तो ऐसी ही एक शख्सियत है हम संग जो आज हमारे स्टूडियोज में हमारे मध्य मौजूद हैं। तो नमस्कार जी, अपना नाम बताइए और पूर्ण ब्यौरा दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं।
1: मेरा नाम हरि सिंह,
0: हरि सिंह जसरोटिया। तो हरि सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से?
1: मूल रूप से तो पैदाइश जो है वो यहाँ चढ़ी के नीचे द्रोटू गाँव में।
0: द्रोटू गाँव में जी, तो वही आपका घर था?
1: जो वही माँ बाप ने बनाया था, फादर ने। और बाकी जो हमारे बुजुर्ग जो थे दादाजी, वो नई से आए थे जसरोटी, ये बहुत ज्यादा है वहाँ पर
0: जी। तो जम्मू कश्मीर में पड़ता, जम्मू संभाग में।
1: जम्मू से तो हमारे एंसेस्टर आए थे ना
0: जी। कब आए थे कोई?
1: वो तो 150 साल पहले के आए हूँ, मनई में परदादा मारे वो मनई में रहे
0: जी। तो कुल कितने भाई बहन हैं आप?
1: मैं तो अकेला ही हूँ ना इस बात।
0: अकेले, बहन कोई नहीं है?
1: बहन नहीं है, पर जब माँ बाप के

0: बड़ा फर्ज मैंने ही पूरा किया।
1: जी चलो अच्छी बात है जी। ये
0: बड़ी
1: समाज में जो है जुड़ाव जो है उस वक्त था।
0: धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, क्योंकि हमारे पिताजी
1: जी
0: जब वो पार्टीशन में वो पाकिस्तान में नौकरी करते थे, और वो हिंदू मुस्लिम जो राइट शुरू हुए तो किसी ऑफिसर ने अपने घर में 6 महीने वहां पर रखा, उनको शेल्टर दिया।
1: अच्छा
0: जब वो पूरी उम्मीद मदर के तो ऐसी बुरी हालत थी कि उनका मरने का जी कर रहा, पर मेरी वजह से जीना पड़ रहा था। बेटे की ममता मरने नहीं दे रही थी और पति का गम उनको जीने नहीं दे रहा था। तो उसके बाद 6 महीने के बाद वो आए तब जा करके। अगर वो वापस नहीं आए होते तो पता नहीं हम यहाँ पर पहुंचते या इंजीनियर बन सकते या क्या बनते।
1: जी
0: उस तक के 5वीं 6वीं तक की पढ़ाई ना होती।
1: जी तो आपकी पढ़ाई जो है कहाँ से शुरू हुई, किस स्कूल से हुई शुरू?
0: एक लदवाड़ा,
1: लदवाड़े में।
0: सीधा आर का रास्ता, बड़ा अच्छा पदरा लेवल बाकी थी 1.5 किलोमीटर।
1: अच्छा तो
0: मुकाबले
1: आपकी
0: में
1: जो है पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई?
0: 10वीं तक तो रात स्कूल होगी ना,
1: जी रेत स्कूल में।
0: और
1: आपका
0: दसवीं
1: कोई पुल था उस वक्त, नाला आ जाता था बरसात में
0: वो
1: कभी?
0: तो चंबी का पुल बड़ा मशहूर था। अंग्रेजों
1: तो पुल तो अंग्रेजों के जमाने में बना था कोई उधर?
0: के टाइम में बहुत अच्छा पुल बना हुआ था वो, काफी
1: अच्छा
0: अब भी है निशानों से कहा।
1: तो एक पुल तो हम कांगड़ा के पास देखते हैं, अंग्रेजों के जमाने के जो पुल हैं वो आज भी चल रहे हैं।
0: अब वो तो चल रहे हैं।
1: हमने देखा कि रेलवे लाइन थी वो भी चल रही है।
0: हाँ तो
1: तो
0: रेलवे,
1: रेल आपके दौरान ही बनी थी जब आप छोटे थे?
0: रेल का ही तो सर्वे के टाइम में तो मेरे पिताजी की नौकरी शुरू हुई थी,
1: अच्छा
0: तो वो सर्वे पठानकोट से लेकर जोगिंदर नगर वाला जो पता नहीं कहाँ तक उनको सर्वे का
1: जी।
0: काम किया।
1: जो बचपन में आप पढ़ाई करते थे कोई ऐसा यादगार पल, घर में कोई डांट पड़ी हो किसी से, परिवार के सदस्य से, दादी से, नानी से, किसी से, इस
0: ना
1: प्रकार?
0: ना, डांट तो सिर्फ माँ और दादी से, वो सिर्फ डोमेस्टिक वर्क के लिए थी, पढ़ाई के लिए डांट क्योंकि वो दोनों अनपढ़ थी।
1: जी आजकल के बच्चों को कोई काम नहीं करना पड़ता है, कोई कुछ नहीं। उस वक्त तो गाय भी पाली
0: हाँ,
1: होती थी।
0: गाय पाली, उसका मैं दरख्तों से घास भी काटना है, और एक मेजरमेंट कुटिया की थी एक लंजो, तो वहां पर खड़ बिकता था वो।
1: जी बचपन में कोई ऐसी यादगार पल जो होता है कि कभी चारा लाने गए, कोई घास लाने गए, पांव टूटा हो, कोई चोट लगी हो,
0: वही
1: डांट लगा
0: वही
1: हो?
0: बताने जा रहा हूँ ना
1: जी
0: कि जब घास काटने गए तो एक वो सिंबल का दरख्त था, उसके ऊपर रंगड़ा जी पानी थी,
1: जी
0: तो एक चील आई वो बैठ गई उस पर,
1: जी
0: उसने तोड़ दिया और
1: ओहो
0: पूरे मेरे सर पर और पूरा बॉडी पर, और फिर ये अभी भी ये निशान है। उसके बाद ताया जी मेरे वो उठा करके ले आए, और फिर मेरी माँ ने रातों रात हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल डॉक्टर भी जा चुका था, तो
1: अच्छा
0: कंपाउंडर को बुलाया तो उसने कुछ इंजेक्शन दिया, तो इंजेक्शन से पेशाब जो था वो बिल्कुल निकल गया, वो लहू की तरह लाल रंगी से निकल गया।
1: अच्छा
0: उसने पूरा जहर निकाल दिया, कुछ अच्छा तजर्बेकार था, उसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो डेथ के चांसेस भी हो सकते थे।
1: जी क्योंकि इतने रिंगल काट जाएं बहुत जो है मुश्किल होती है फिर, क्योंकि वो जो है मांस ले लेते हैं और पूरा का पूरा समूह पड़
0: आप
1: जाता
0: काफी
1: है।
0: निशान पड़ गया था।
1: जी तो एक वो यादगार था कि आपने मौत के मुंह से निकल के आ
0: मौत
1: गए।
0: के मुंह से निकलने आ रहे,
1: तो माताजी तो बहुत रोई होंगी उस दिन तो बहुत।
0: रोना नहीं, वो तो ना हिम्मत की, रातों रात ले गए उठा करके।
1: कितने किलोमीटर चले थे पैदल
0: वो
1: माताजी?
0: 3 साढ़े 3 किलोमीटर तो है
1: रात को
0: ही,
1: जो है 3-4 किलोमीटर चलना जो है
0: बड़ा
1: महिला के
0: मुश्किल।
1: लिए। तो उसके बाद जो है पढ़ाई के, आपने 10वीं तक पढ़ाई की,
0: ना 10वीं
1: दसवीं
0: तक
1: में कुछ जो है यहाँ चढ़ी में कुछ और कुछ समस्या आई कोई, किसी प्रकार
0: ना,
1: का कोई
0: रात
1: यादगार
0: में,
1: पल रहा हो?
0: रात में नहीं, वहाँ कोई समस्या नहीं, वो पढ़ाई ठीक ठाक ही चलती रही, पर यह है कि टीचर कभी पूरे नहीं होते थे, इसलिए बीचकार गैप पड़ जाता था। खुशी
1: जी
0: यही है कि भाई जो टीचर मारते हैं उनका काम करना है, जो टीचर गैर हाजिर है तो उसका
1: कोई
0: जो
1: नहीं करता
0: सब्जेक्ट है
1: था।
0: वो कमजोर रह जाते थे, ये हो
1: जी
0: जाता
1: तो पुराने समय में होता था कि माँ बाप जो है जो गुरुजन होते थे अध्यापक होते थे उनको ये कहते थे कि अब बच्चा आपके पास है, आपने पढ़ाना है इसको, सब कुछ करना है। तो उसमें जो है कई बार पिटाई भी बड़ी होती थी?
0: पिटाई थी। जब मैं पहली बार गया तो जो पहले हेडमास्टर थे वो ज्यादा पिटाई करते थे, और दूसरे मास्टर थे वो भी ज्यादा पिटाई करते थे।
1: अच्छा तो कौन कौन से विषय थे?
0: चौथी से पंजाबी शुरू हुई
1: जी
0: और 6ठी क्लास से संस्कृत, और हिंदी तो पहली से ही शुरू होती थी।
1: जी तो अंग्रेजी का कब से शुरू हुआ?
0: अंग्रेजी भी 6ठी से ही,
1: 6ठी से ही शुरू है।
0: छठी से अंग्रेजी,
1: तो
0: जो
1: गणित
0: आज
1: और
0: गणित भी पहली से ही,
1: पहले से ही शुरू हुआ।
0: एक दो की गिनती जो ये बोले।
1: तो ऐसे में जो है पंजाबी पढ़ाने वाले सरदार होते थे या
0: नहीं
1: क्या
0: नहीं वो अपने मास्टर जी
1: पढ़ाते थे, वो आती थी उनको?
0: आती पंजाबी, तो उस वक्त कांगड़ा ही पंजाब में था ना,
1: जी
0: 66 में हिमाचल में आए ना।
1: बिल्कुल जी। तो पंजाबी जो है आपको सीखने में मजा आता था कुछ? क्योंकि आजकल तो पंजाबी गाने भी सुनते हैं लोग, यहाँ जो है प्रचलन बहुत है।

0: मामे सूरिया ने रोटे थे और वो मेरी नानियां वगैरह थी वो गगरेड़ से, तो वो पंजाबी बोलते थे।
1: अच्छा हाँ, क्योंकि पंजाब के साथ
0: पंजाब
1: लगता
0: तो
1: है।
0: सबसे ज्यादा ही।
1: ऐसे में जो है कोई ऐसा पल जो है जिसमें आपको लगा हो कि मुझे उर्दू या पंजाबी या संस्कृत पढ़नी नहीं थी लेकिन मुझे पढ़नी पड़ रही है, कुछ ऐसा लगता था कि?
0: जब मैं IIT मद्रास से, मुझे आजकल चेन्नई है, पहले हमारे टाइम में स्टेट का नाम भी मद्रास
1: मद्रास था जी।
0: और सिटी का नाम भी मद्रास,
1: जी बिल्कुल जी।
0: तो जब आया तो पता चला कि हिमाचल में उर्दू जरूरी है। तो जब तक
1: अच्छा
0: नौकरी नहीं लगी थी 1-2 महीने, तो मैंने उर्दू सीखने की कोशिश की थी ताया जी से। हाँ,
1: 10वीं के बाद जो है,
0: ये तो धर्मशाला कॉलेज
1: धर्मशाला कॉलेज, उसके बाद जो 10वीं के बाद 11वीं जो है कॉलेज में ही होती
0: कॉलेज
1: थी।
0: में,
1: तो कितने साल के थे डिग्री आपकी?
0: कॉलेज में BSc 4 साल की ना।
1: 4 साल की। बीएससी के बाद आपने कोई और भी पढ़ाई की फिर?
0: BSc के बाद इंजीनियरिंग में
1: किस
0: आई आई
1: क्षेत्र
0: टी
1: में? IIT कहाँ? मद्रास में।
0: मद्रास में,
1: तो वहां कैसे जाना हुआ आपका?
0: ये कंपटीशन टेस्ट था, उस वहाँ कंपटीशन पास हो गए तो उसमें उन्होंने बुला लिया।
1: अच्छा, तो ये परीक्षा कहाँ हुई थी आपकी कंपटीशन के लिए?
0: दिल्ली में
1: दिल्ली में। तो किसी ने जानकारी दी कि ये इसका
0: नहीं,
1: कंपटीशन है?
0: कॉलेज में आ गया था एड,
1: अच्छा, कॉलेज में पहुंच गई
0: कॉलेज में
1: थी।
0: आ गया और मेरा एक क्लासमेट था, वो कहता
1: विज्ञापन
0: कि
1: जो है कॉलेज में पहुंच गया
0: वो
1: था।
0: गया अपने पहुंच गया, तो मेरा एक क्लासमेट था, तो उसने बताया कि हम अप्लाई करते हैं, और उसने भी किया, मैंने भी किया, और वो अपने साथ ले भी गया। लकली उस वक्त डॉक्टर शालिग्राम जी भी, वो भी उसी ट्रेन में जा रहे थे, हमारी बुकिंग भी करवा दी उन्होंने,
1: अच्छा
0: अपने घर में भी ले गए थे, और दिल्ली
1: अच्छा
0: भी काफ़ी घुमाई उन्होंने।
1: चलो
0: और
1: अच्छी बात है
0: फिर
1: जी।
0: टेस्ट में मैं क्लियर हो गया, और दूसरा मेरा साथी वो रह गया था, वो
1: द्रास में जो हो गए, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहां जो है आपको दिक्कतें परेशानी कुछ आई?
0: ये था खाने पीने की दिक्कत आई, तो नॉर्थ इंडियन हमने मसाला मैस के नाम से लग, वरना रोज सांबर रसम वगैरह
1: जी
0: वही
1: क्योंकि
0: खाद्य पदार्थ, वो इतने हमें पसंद नहीं समझ
1: जी
0: जाते।
1: क्योंकि देखो ना, आपने बचपन में जो खाए होता है उसी का ही आनंद आता है।
0: आधा ना
1: हमें
0: तो
1: जो
0: जो
1: रोटी खाने में मजा आएगा तो बाकियों को थोड़ी आएगा, उनको, दक्षिण भारत के लोगों को। जी
0: और उनका खाने का, वो उनके सर देख ही नहीं सकते ऐसे खाते थे, पर
1: हमें
0: उनका कल्चर ये है कि दे लाइक टू टेक मील विद हैंड, चम्मच बिल्कुल नहीं यूज करते ना।
1: इस दौरान जो है हॉस्टल में जो है क्या कुछ दुश्वारियां आई? कुछ जैसे जमीन पर बैठ के खाते थे जैसे हमारे जो पैंट
0: ना
1: लगाते हैं?
0: जमीन का नहीं चक, वो तो ठीक है,
1: ठीक था।
0: अच्छा सब कुछ ठीक था। इवन एक फैसिलिटी ये थी कि सिंगल रूम मिलता था, ये जो हॉस्टल के चिड़ियाघर है, एक ही कमरे में 6-6 बच्चे पढ़ते हैं, वो गलत हो जाता है ना। धर्मशाला कॉलेज में था एक सिर्फ एक क्यूबिकल हॉस्टल था आर्मी के, उनको एक एक कमरा मिल जाता था, वो ठीक रहता है ना,
1: जी
0: क्योंकि पढ़ाई में दो होंगे तो बातें करेंगे, डिस्टर्बेंस होगी ना।
1: तो ऐसे में जो है जैसे उस वक्त जो है आपको रेलगाड़ी में जाना पड़ता था, कैसे लेते थे, कहाँ से कैसे सफर करते थे?
0: पहले गए थे जब एग्जाम देना था, और फिर बाबूजी मुझे रेलवे का पास भेज देते थे, तो
1: अच्छा
0: कांगड़ा मंदिर से पठानकोट, पठानकोट से फिर आगे ट्रेन।
1: अच्छा। तो फिर जो है आपको रिजर्वेशन पूरा हो जाती थी सारा कुछ,
0: ना
1: तो आपको ज्यादा समस्या नहीं उत्पन्न होती थी?
0: सफर में कोई समस्या नहीं, क्योंकि उस वक्त थर्ड क्लास होती थी,
1: जी।
0: सेकंड का पास मुझे मिल जाता था।
1: तो उसके उपरांत जो है जब आप वहां से डिग्री लेके आए तो आपने कौन से विषय में पढ़ाई की थी? वहां के विषय थे
0: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
1: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
0: क्योंकि बचपन से जब गांव में थे तो बिजली तो उस वक्त थी नहीं, तो
1: जी
0: मेरे रिश्तेदार नानी के देवरानी के भाई साहब वो SDO लगे हुए थे धर्मशाला में, तो धर्मशाला में उनके पास जो आया, तो पहली बार मैंने जो स्विच ऑन ऑफ करके इलेक्ट्रिसिटी, पहली बार बड़ी हैरानी लगी, मैंने क्या क्या जादू है ये।
1: जी
0: हाँ, उसी से क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि भाई इलेक्ट्रिसिटी भी कोई चीज है,
1: तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन एक अपने आप को अलग सी फीलिंग देती हैं।
0: इलेक्ट्रिसिटी तो अपने आप ही अलग फीलिंग है इस वक्त, तो इलेक्ट्रिसिटी हर चीज, अगर हमें पानी चाहिए तभी इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी से पानी नहीं पहुंचेगा
1: जी
0: लोगों के
1: जी जी
0: पास,
1: जी
0: और जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो भी
1: अब
0: इलेक्ट्रिसिटी
1: तो
0: से ही।
1: बिजली से चलने वाली वाहन भी आ रहे हैं, कारें भी आ रही हैं।
0: बिल्कुल, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना, ये भी इलेक्ट्रिसिटी ने आइडिया दिया है।
1: जी जी जी तो उसके उपरांत जो है जैसे आप डिग्री करके आए, आपने फिर परीक्षाएं दी होंगी नौकरी के
0: नहीं,
1: लिए?
0: नौकरी के लिए परीक्षाएं नहीं थी उस वक्त, नया नया बिजली बोर्ड बना ही था,
1: अच्छा
0: तो उस वक्त ये था कि जरा पोस्टिंग के लिए टाइम लगा, डायरेक्ट SDO बाद में तो बढ़ने लगे, पर मैं जूनियर इंजीनियर की लाइन मैन से प्रमोट होते थे, वो लाइन सुपरिटेंडेंट बनते थे, जो डिप्लोमा होल्डर थे वो उनको SO बोलते थे, सेक्शन ऑफिसर,
1: तो हरि सिंह जी, आईआईटी में आपके मद्रास सिलेक्शन हो गई थी, चुनाव हो गया था, तो उसके लिए जो है पहाड़ी रियासतों के लिए कोटा भी होता था?
0: सिर्फ यही था कि हिमाचल से ये एक आर्मी का कैप्टन था।

0: आर्मी से कैप्टन तीन चार थे पर एक हिमाचल का भी एक था, तो उसने मुझे बताया कि भाई हिमाचल गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प करती है, तो वो मैंने अप्लाई किया तो वो मुझे
1: वजीफा लग गया।
0: एक साल 800 रुपया मिल गया था।
1: तो चेन्नई में आपको वजीफा मिलता था?
0: ना वजीफा नहीं मिला था, सिर्फ ये हिमाचल गवर्नमेंट ने एक साल 800 रुपया लिया था बस।
1: साल में एक बार दे दिया 800 रुपये,
0: हाँ
1: 1967 की बात है।
0: तो 150 रुपया टोटली खर्चा आता था ना,
1: तो यानी कि 800 बहुत भारी
0: बहुत अच्छी रकम
1: होती थी।
0: थी।
1: तो आजकल जो है 800 जो है कितने के बराबर होगा आपके अंदाजे के मुताबिक? एक 800 रुपये उस वक्त के 800 रुपये।
0: 800 तक क्या, जब नौकरी हमारी 550 से शुरू हुई थी,
1: जी जी
0: जब
1: जी
0: इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो अब तो मैं 1 लाख तो पेंशन ही ले रहा हूँ।
1: जी जी
0: हाँ तो 100 गुना से ही कर दो तब भी।
1: तो उसके बाद जो है नौकरी आप पर लगे तो
0: तो
1: कहाँ लगे?
0: 1.5 साल के बाद लगे ना,
1: 1.5 साल के बाद लगे। तो
0: तो
1: 1.5 साल क्या किया आपने?
0: 6 महीने तो किसी ने कहा भाई बोर्ड में है तो आपको सिलेक्शन तो हो ही जानी, सिर्फ ये है कि टाइम पास करने के लिए वो एक एज सर्वेयर का काम शुरू कर दो।
1: जी
0: तो रेत स्लो सड़क बनी तो उसका सर्वे का काम चला हुआ, तो वो एक जो ओवरसीर था उसने मुझे रख लिया था, तो
1: अच्छा।
0: फिर वो सर्वे का काम किया। तो सर्वे के फिर लोगों ने यही कहना कि ये तो सिविल का है तो इलेक्ट्रिकल में ट्राई करो, और फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ धर्मशाला में पुराने कांगड़ा से कुमकर्णी साहब वो एक्सियन लगे हुए थे, वो फिर
1: जी
0: बोर्ड के मेंबर रिटायर हुए, चेयरमैन भी बन सकते पर उनकी डेथ हो गई थी आज मेंबर, तो उन्होंने फिर मुझे इलेक्ट्रिशियन की जॉब दी। और साल पर उसके बाद उन्होंने जब अपॉइंटमेंट हुई तो मेरे यहाँ पर एडजस्टमेंट भी करा दिया अपने
1: अच्छा,
0: डिवीजन में
1: यही हो गए थे
0: यहीं,
1: आप, घर के पास ही नौकरी लग गई फिर।
0: फिर बाद में उन्होंने कांगड़ा में भेज दिया मुझे,
1: अच्छा,
0: तो कांगड़े में 2 सब डिवीजन थे। फिर जब
1: कांगड़ा में
0: एक्सपेंशन
1: आप जेई
0: जेई
1: की?
0: जेई
1: जी।
0: फिर जब क्योंकि वर्कलोड बढ़ता गया, कनेक्शन बढ़ते गए, तो इसलिए सब डिवीजन और डिवीजन भी बढ़ते गए, तो योल में सब ऑफिस था तो वो सब डिवीजन बन गया, तो योल में आ गए। योल के बाद फिर नगरोटा में बदली
1: जी,
0: शुरुआत,
1: जिला कांगड़ा में ही रहे आप
0: नहीं सिर्फ जेई पीरियड में
1: जेई में?
0: 4 साल।
1: तो यानी कि आप उस वक्त डिग्री करके जेई बन गए थे,
0: हाँ जेई,
1: हालांकि अभी तो डिप्लोमा होल्डर बनते हैं।
0: अब डेजिनेशन ही जेई कर दिया हुआ ना, जो लाइन स्टाफ से बनते थे वो ये लाइन सुपरिटेंडेंट
1: जी
0: और जो ओवरसीयर जो डिप्लोमा करके आते थे पॉलिटेक्निकल से।
1: जी जी जी तो उसके बाद जो जब जेई बने आप, उसके बाद जो है प्रमोशन हो गया, एसडीओ बन गए, तो कहाँ
0: जो
1: कहाँ?
0: नोगली पावर हाउस
1: अच्छा,
0: जहाँ बिजली जनरेट होते हैं
1: वहाँ गए, वहाँ कुछ परेशानी आई? क्योंकि होता है कि आप एक नए जगह पे जाओ तो कुछ ना कुछ परेशानी होती है, आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे अलग लोग होते हैं, एक प्रोजेक्ट के लोग होते हैं।
0: ये अच्छा ये हुआ कि हमारे कांगड़ा साइड के काफी स्टाफ मिल गया था,
1: जी
0: बाकी किन्नौर साइड तो सिर्फ वहाँ नौगली पावर हाउस से ही सप्लाई जाती थी, पीछे से सप्लाई उतनी अवेलेबल नहीं होती थी। बाद में
1: अच्छा
0: तो हमारे प्रोजेक्ट बनते गए तो बिजली हमारे बस्सी का काम चला हुआ था, गिरी पावर हाउस का काम चला हुआ था, उसके बाद जो भाभा पावर हाउस वो 120 मेगावाट का वो चला, तब अब तो नाथवा झाकड़ी की वजह से तो
1: पूरी बिजली
0: पूरी
1: सप्लाई आ रही
0: बिजली,
1: है।
0: और पार्वती डैम भी चालू है
1: जी,
0: उसमें।
1: बड़े बन गए अब तो। खैर, तो
0: ना
1: भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट आपके जब आप डिग्री कर रहे थे उसी दौरान शुरू हो गया था?
0: वो तो हमारे स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे ही बोलते थे भाई भाखड़े में कोई काम करना चाहता है तो आओ, तो लोगों को वैसे बुला कर ले जाते थे।
1: अच्छा
0: जब जवाहरलाल नेहरू ने
1: जी,
0: दिया था स्ट्रक्चर, वो तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बन गया ना कि दोनों तरफ से संकड़ी जगह से पानी निकाला हुआ है और इतना बड़ा गोविंद सागर है बना हुआ है।
1: जी तो एसडीओ के बाद जो है आप किन किन स्थानों पर रहे, उसके बाद प्रमोशन होगी
0: एसडीओ
1: फिर?
0: तो नौगली पावर हाउस, फिर उन्होंने जो कुमकर्णी साहब थे अपने पास ही बुला लिया, एक डिजाइन का ऑफिस होते हैं
1: कुमकर्णी जो है आपके सीनियर थे?
0: जो वो एक्सियन थे ना
1: जी
0: वो फिर 80 बन गए हुए थे, तो
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे शिमला बुला लिया,
1: अच्छा
0: तो वहाँ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, तो पूरे हिमाचल के बिना बिजली से कोई गांव नहीं छोड़ना,
1: अच्छा
0: वो पूरी स्कीमें बनानी ना, तो कितने वहाँ घर आने जिसके लिए कितने ट्रांसफार्मर चाहिए, HT LT लाइन क्या, वो पूरा
1: पूरा ब्यौरा बनाते
0: पूरा
1: थे आप?
0: ब्यौरा बनाना, और सेंटर में REC का दफ्तर, वो फिर सारी स्टेटों को लोन देते थे ना, तो बहुत स्कीमें सेंक्शन करा के लानी और पैसा बोर्ड के खाते में जमा करा देना, और खर्चने की हमारी कोई पाप नहीं, खर्चना फील्ड वालों नहीं है।
1: जी, तो उस वक्त जो है रेडियो भी जो है बिजली पर चलने वाले होते थे, तो आपने रेडियो रखा था, आप शिमला चले गए थे?
0: ना रेडियो तो वो मैंने कोई नहीं रखा, सिर्फ जब शादी हुई तो दहेज में जरूर दे दिया था ससुर।

0: अच्छा, रेडियो मिल गया था दहेज में। लाइसेंस भी लेना पड़ता था आपके जमाने में?
1: उसका लाइसेंस भी था।
0: कितनी फीस थी को देनी पड़ती
1: थी? अब याद नहीं रहा, 50 रुपए लगते थे किन साल के।
0: अच्छा, उस वक्त 50-60 रुपए देने
1: बड़े
0: पड़ते थे,
1: बहुत ज्यादा लगते थे।
0: अच्छा, तो उसके बाद जो है नौकरी लगने के बाद जो है कितने दिनों बाद शादी हुई आप?
1: 6 महीने के बाद ही।
0: नौकरी लगने के 6 महीने बाद आपने जेई नौकरी शुरू की?
1: जो नौकरी कांगड़ा में शुरू की, तो उस वक्त मैं योग लगा हुआ था, तब शादी हुई ना 6 महीने।
0: तो शादी का कैसे योग बना, कहाँ से शादी की आपने?
1: शादी के लिए ये था कि उस वक्त मुझे अच्छे अच्छे घरानों के रिश्ते आने लगे ना।
0: जी, क्योंकि तो नौकरी लग गए थे, सरकारी नौकरी।
1: हाँ, सरकारी नौकरी और इंजीनियर कोई कोई होता था उस वक्त।
0: जी जी जी,
1: आजकल तो जगह जगह इंजीनियर।
0: तो आपने कौन से सन में डिग्री की थी?
1: 71 में।
0: 71 में की थी, तो लड़ाई का दौर भी देखा आपने?
1: जब मैं इंटरव्यू देने गया था ना
0: जी,
1: तब वो फ्रेश न्यूज कह रहे मेरे ढाका इज फ्री कैपिटल ऑफ फ्री बांग्लादेश।
0: जी,
1: वो इंटरव्यू में सब यही जवाब दे,
0: पाकिस्तान के साथ चल रहा था।
1: हाँ, वो बांग्लादेश आजाद हुआ।
0: जी जी जी,
1: और वो ही अब आंखें डरा रहे हैं।
0: तो कोई डर का भाव रहता था कि रात को बिजली बंद करनी है, रोशनी नहीं करनी है, होता था कुछ?
1: वो तो जेई पीरियड में तो ये होता था कि भाई दिन में तो पेपर वर्क भी है साथ में, जैसे ही बिजली बंद हो तो वैसे दौड़ना पड़ेगा। पर ये है कि जब ठीक ठाक बिजली हो फिर भी पेट्रोलिंग कर लेते थे कि कहीं खराबी तो नहीं है कोई।
0: अच्छा।
1: या कटिंग वगैरह करा दी, क्योंकि ज्यादा तो वो ये बांस वगैरह यही तारों से टकराते हैं, टकराने से इंटरप्शन तभी आती है।
0: जी, यानी कि बिजली का प्रवाह जो है रुक जाता है,
1: रुक जाएगा ना।
0: तो उसमें जो करंट लगने के भी डर लगा रहा था कभी?
1: करंट लगने का नहीं, वो तो फिर हम तो तभी पहले परमिट लेते हैं, बंद करवा देते हैं ना।
0: अच्छा,
1: बरंडा से जो फीडर आया उसको बंद करा दें, या कांगड़ा से करा दिए
0: पीछे से फीडर को बंद,
1: पीछे से फीडर बंद करके
0: तभी होता।
1: चालू लाइन में तो नहीं किसी को चढ़ाते
0: नहीं, ऐसा होता था कि कई बार जो है किसी के घर के बिजली जो है बिजली का पानी से बिजली का कुछ हो गया, या पेड़ों से टकरा बिजली का करंट आ गया।
1: वो तो हमारा मतलब आई जी, तो हमारा 11 के भी लाइन बंद हो तभी जा करके हमारे, बाकी तो लाइन में नहीं देखेंगे ना।
0: जी जी जी जी,
1: जो भी है डोमेस्टिक घरों को तो वो ही देखेंगे।
0: जी, उसके बाद जो है जब शादी हुई आपके बच्चे कितने हुए फिर?
1: एक लड़का एक लड़की।
0: अच्छा, तो क्या क्या करते हैं आपके बच्चे?
1: ये बहू ये डॉक्टर है,
0: जी
1: BBM।
0: जी,
1: और लड़का कर्नल है।
0: अच्छा, इस वक्त कहाँ है वो?
1: वो सिक्किम,
0: त्रिपुरा में है, सिक्किम में है?
1: सिक्किम में,
0: सिक्किम में है। अच्छा, तो आते हैं वो?
1: हाँ, आने वाले हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो सेना में भेजा आपने कुछ?
1: नहीं,
0: बच्चे
1: उसका पर्सनल इंटरेस्ट था, मैं तो चाहता था इंजीनियर बने, पर वो कहता था कि मैं अपनी लियाकत से जाऊंगा, अगर लियाकत से नहीं गया तब नहीं जाऊंगा।
0: अच्छा,
1: हालांकि मैं डोनेशन पर भी भेजने को तैयार था।
0: अच्छा,
1: तो उसका ये BEd तो वो कर चुका हुआ था, तो ये वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने वैसे उसको डिस्करेज करने, उन्होंने जब मुझे पूछना अरे ये तुम्हारी तरह नहीं बन सकेगा, मैंने मेरी तरह कैसे बनेगा जब तक इंजीनियर, तो फिर इसने कि भी कुछ ऑफिसर बनना था, इसलिए इसने आर्मी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया।
0: अच्छा,
1: तो वो कंपटीशन उसने CDS एग्जाम पास कर लिया।
0: अच्छा,
1: तो पहले जब रिटन टेस्ट भी पास कर लिया, और बाकी जो 15 दिन वो ये हाई जंप लॉन्ग जंप जो भी दौड़ वगैरह करा था वो सारा फिजिकल कर लिया, पर फिर डॉक्टरों ने कुछ एक दो डिफेक्ट डाल करके उसको रह गया। फिर दोबारा टेस्ट किया हुआ तो बंगलौर, तो वो कहते कि पहले तो मैं सरकारी खर्च, अब तो पैसे खर्च दूंगा मैं, पर LTC पर ही तेरे को भेज देता हूँ, और बंगलौर में वो सिलेक्ट हो गया फिर।
0: अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो बिटिया क्या कर रही है आपकी?
1: प्रिंसिपल है यहाँ डिपो बाजार।
0: क्या नाम है?
1: ममता ठाकुर।
0: तो SDO के बाद जो है उसके बाद कोई आपने प्रमोशन ली? आपका
1: प्रमोशन XCN की प्रमोशन और SC की प्रमोशन मेरे उसी दफ्तर में, रेडियोलॉजी में 19 साल काटे हैं।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो ये ऐसी जगह थी कि वहाँ कोई भी आना पसंद नहीं करता था।
0: तो रेडियोलॉजी में क्यों, इतना दूर दराज का इलाका?
1: वो हुआ ये था कि जब दफ्तर ही बड़े खुल गए थे शिमला में।
0: अच्छा,
1: हमारा दफ्तर शिमला में ही था, जब कुंभकर्णी साहब थे वो शिमला में थे, तो उस वक्त शांता कुमार जी के से उन्होंने पर्सनल बहस भी की कि भाई बाकी तो यह हमारा दफ्तर यहाँ होना चाहिए। बोला नहीं, आपके अफसरों ने लिख के दिया कि रेडियोलॉजी भेजना ही। उसके बाद तो हमारा बोर्ड में योगदान 10 साल जो कैलाश महाजन जी हुए
0: जी
1: चेयरमैन रहे 10 साल, फिर तो वो चंबे के रहने वाले थे, तो फिर तो रेडियोलॉजी से। अब मेरे रिटायरमेंट होने से भाई मैं SC रिटायर हुआ ना।
0: जी, पूरा यानी कि आपने फिर XCN और SC जो है भाई आपने
1: SDO एक्स ने सिर्फ रूटीन में पार्ट टाइम के लिए, जैसे थोड़ी देर के लिए किसी ने वैसे यहाँ कांगड़ा में मेरे आज SDO ऑर्डर कर दिए, तो मेरा बेटा यहाँ पढ़ना पसंद नहीं करे, बुलाइए। तो टीचर के सामने बच्चे गालियाँ निकालते हैं, यहाँ मैं नहीं पढ़ूंगा। कब वहाँ डलौजी पब्लिक स्कूल अच्छा था ना
0: जी,
1: तो दोबारा फिर इसी उसकी वजह से मैं पेरेंट्स में ओनली सन था कि भाई पेरेंट्स की वजह से तो मैं यहाँ ठीक था। तो फिर वो मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि आप चले जाओ, कोई नहीं। और मैं ये था कि पूरे हिमाचल में मेरे टूर लगते थे, तो नाइट हाल्ट कर लेता था, 400 किलोमीटर के एक नाइट हाल्ट रास्ते में मिल जाता था।
0: अच्छा,
1: तो आते जाते घर ठहरता था, बस
0: बस इतना ही होता था।
1: इतना ही, पर काफी टाइम मिल जाता था आने जाने का
0: जी,
1: क्योंकि रास्ता यही था ना बस।
0: आपका जो दौर था उस वक्त जो है नौकरी के दौरान, जो है महिलाएं अक्सर जो है बीवियां जो है माता पिता के साथ रहती थी, काम होता था, तो आपका भी अकेले रहते थे?
1: नहीं, यही पीरियड जो था तब तो पेरेंट्स के साथ ही रहे, और जब SDO बन के नौकरी गया तब तो मिसेज को साथ ही रखना पड़ा।
0: अच्छा, भेज देते थे क्योंकि काम बहुत होता था घर में जो है
1: ना,
0: माता
1: घर में
0: पिता
1: ऐसा
0: भी
1: काम नहीं, ज्यादा नहीं रखा हुआ था।
0: अच्छा, तो कुल मिला के जो आपका जीवन जो है सही रूप में चल रहा था और अभी भी चल रहा है, और सेहत भी है आपकी ठीक है देख रहे हम। अभी उम्र कितनी है आपकी?
1: 80 पूरे कर लिए है मैंने जून महीने में।
0: अच्छा, तो अभी जो है बहुएं बेटे, बहुआ हैं आपकी, बेटे हैं बेटियां हैं?
1: बेटा ही भी एक है
0: जी
1: और बेटी भी एक ही है।
0: जी तो आपकी कुछ सेवा शुश्रूषा करते हैं, कुछ आपका बर्थडे मनाते हैं? क्योंकि आजकल जो है बच्चों का जो है एक केक काटना होता है, उस तरह की नई प्रथा से, तो इस तरह से कुछ चलता है?
1: यही है कि बर्थडे को तो मैं सेंटर पॉइंट होटल में पार्टी कर देते हैं सबको बुला करके।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं वृद्धाश्रम जाते हैं, आपने कभी वृद्धाश्रम जाने का
1: ना
0: इस
1: ना,
0: तरह?
1: वृद्ध आश्रम तो इतना टाइम ही नहीं मिला।
0: जी, तो कुल मिला के जो है आपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, अनेक प्रकार के लोगों से मिले, अनेक प्रकार की खाद्य पदार्थ हैं, खाना है खाया है, जैसे मद्रास में भी रहे, अलग अलग जगह पे रहे, ऐसे में जो है आपको एक चावल खाने का जो है हिमाचली को बड़ा शौक होता है, राजमा और चावल, तो उसमें जो है आपका पसंदीदा भोजन कौन सा था आपका?
1: ये
0: कुछ जो नॉन वेज भी खाते थे? जी
1: बचपन में वो आजकल तो पसंद है, वो बचपन में मुझे मक्की की रोटी पसंद नहीं थी, और दादी बीमार होनी तो उसके लिए फुलके बनाने, तो पर वैसे पूछ लेता कि आपने कितने फुलके खाने
0: जी
1: ताकि मक्की की रोटी कम करें।
0: जी होता है कि क्योंकि परहेज जो होता है, क्योंकि तस्वीर भी होती है गर्म तस्वीर किसी की। जी तो हरी सिंह जी, आपने हम संग जो है बहुत अच्छी बातें साझा की अपने जीवन के बारे में, क्या कुछ जो आपके जीवन में आपने सीखा, क्या कुछ काम किया, किस प्रकार किया, क्या कुछ आपको जो है परेशानी आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से प्रसारित किया गया। एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। रविंद्र जैन की धुन पर सजे हुए, हेमलता के गाए हुए अखियों के झरोखों से फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं।

किशोर कुमार, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की मिलीजुली आवाज़ों में अभी श्रोता सुन रहे थे बदलते रिश्ते फिल्म का गीत। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: इंस्पिरेशन बिल्ट इनटू एवरी अराइवल। दिस मे ड्राइव होम योर फेवरेट नेक्सा कार एंड अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटीज।
3: मीट द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, वेयर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मीट्स प्रीमियम कंफर्ट एंड सेफ्टी। नाउ एट एन इफेक्टिव प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹9.72 lakh।
2: यस, ₹9.72 lakh। ऑफर वैलिड टिल 31st मे। ओन दिस स्टाइल आइकन एट एन EMI ऑफ जस्ट ₹8.99 पर मंथ।
3: एक्सपीरियंस लग्जरी विद अ पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री व्यू कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले एंड 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड।
2: हरी, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। विजिट योर नियरेस्ट नेक्सा शोरूम। PNC अप्लाई।
4: नेक्सा।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रुस्तम फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, हेमलता और साथियों की आवाजें हैं।

लता मंगेशकर के गाए बरसात की एक रात फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति के गाए अग्नि पंख फिल्म के गीत के साथ।

पंकज उदास, साधना सरगम और साथियों का गाया हुआ ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। मोहरा फिल्म का ये गीत है, बिजू शाह का संगीत।

सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर सजा हुआ गीत पेश कर रहे हैं। बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म का ये गीत है। आवाजें हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की।

अंजाम फिल्म का गीत अभी सैनिक भाई सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था, आनंद मिलंद का संगीत था और गायक कलाकार थे अभिजीत। सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का आखिरी गीत पेश कर रहे हैं हम, हैं राही प्यार के। इस फिल्म का ये गीत है, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें हैं। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत है नदीम श्रवण का।

सैनिक भाइयों, इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल सभा।

सभी बच्चों को जय हिंद। वादे के मुताबिक आपकी रेडियो दीदी आ पहुंची है स्टूडियो में अपने सभी नन्हे मुन्ने बच्चों से एक प्यारी सी मीठी सी मुलाकात करने के लिए। तो सभी बच्चों को हमारी ओर से प्यारी सी मीठी सी नमस्ते। जी हाँ, और ढेर सारा लाड प्यार और दुलार हम आपको भेज रहे हैं। तो इस सारे प्यार को आपने संजो कर रखना है। दिल की गहराइयों से बहुत सारा शुक्रिया हमारे सभी श्रोताओं का जो एक बार फिर से अपने कीमती वक्त को निकाल कर जुड़ गए हैं इस छोटे से सफ़र में और बन गए हैं हमारे हम सफ़र। और जब हम सफ़र बहुत ही खूबसूरत होता है ना, तो सफ़र जी हाँ उससे भी सुहाना हो जाता है और सफ़र का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो दिन के एक बजे तक हमारे सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज रेडियो दीदी करेगी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से, अपने नन्हे दोस्तों से बहुत बहुत सारी बातें। तो बता दें, आज का यह अंक लेकर हाजिर है आप सभी की रेडियो दीदी प्रवीण, और हमारा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ नन्नी दोस्तों, कुछ कहना हम भूल गए। और देखिए ना, हमारे भी नन्ने मुन्ने बच्चे कैसे हैं, ये भी बिल्कुल याद नहीं दिलाते हैं कि अरे भुलक्कड़ दीदी, इतना बड़ा दिन है, क्या करते हो यार दीदी, आप सब कुछ भूल जाते हो। जी हाँ, याद हमें बिल्कुल आ गया है। तो सभी बच्चों को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी मदर्स डे। और हाँ बच्चों, माँ पर चंद पंक्तियाँ आप सभी नन्ने मुन्ने बच्चों के लिए। माँ कोई भाषा नहीं, माँ की कोई परिभाषा नहीं, माँ तो बस एहसास है जिसमें बसता हमारा पूरा संसार है। जिसमें बहती गंगा जमुना की निश्चल धारा, माँ सिर्फ माँ नहीं होती, वह तो घर की रौनक होती है, वह तो घर की जान होती है, और माँ में बसता है

हमारा सारा जहां। हाँ नन्हे दोस्तों, अगर सच में माँ की कोई परिभाषा पूछी जाए ना, तो उसे शब्दों में बयां करना सच में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माँ में पूरी दुनिया समाई है। ये जो माँ शब्द है ना, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो सोचो फिर इसे शब्दों में कैसे बांध सकते हैं। वह माँ जो निरंतर लगातार बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के अपनी पूरी दुनिया पूरी खुशियां सब कुछ निछावर कर देती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों की एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कुराहट देखने के लिए, उनकी खुशियां पाने के लिए अपना सब कुछ, अपने सपने सब कुछ निछावर कर देती है। और उस माँ को हमारा शत शत प्रणाम। तो हाँ नन्हे दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से कुछ कहना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपने आज से पहले अपनी मम्मा को कभी कुछ कहा नहीं है कोई ऐसे शब्द, तो आज बहुत ही खूबसूरत सा दिन है अपने दिल की भावनाओं को, अपने दिल के जज्बातों को अपनी माँ के सामने ज़रूर रखिएगा। जी हाँ, दिल भी हल्का होगा और आपके दिल में क्या है वो आपकी माँ ज़रूर जानेगी।

तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम अपने सभी श्रोताओं के लिए भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर। सुनिए इस गीत को, और ये गीत जी हाँ सभी की मम्मियों के लिए।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का और सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग और स्टूडियो में इस समय है बच्चों की रेडियो दीदी प्रवीण। जी हाँ नन्हे दोस्तों, आपसे एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। ये जो हमारा प्यारा सा दिल है ना, ये भी ना जाने क्या क्या चाहता है ना। पल भर में सारी जहाँ की खुशियाँ, तो दूसरे ही पल हमारा ये दिल उदासी से भर जाता है। ऐसा क्यों होता है बताओ? क्या दीदी के साथ ऐसा होता है या फिर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? आपको पता है कि कभी कभी ये दिल कहता है कि उड़ते हुए बादलों को छू लो, तो कभी चांद तारों को पाने की चाहत भी दिखाता है। ये दिल है दिल जनाब, इसका बहुत सारा ख्याल आपने रखना है, क्योंकि जब तक हमारे दिल में किसी चीज़ को पाने की हसरत है, हमारा दिल जब तक किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखता है ना, तब तक ये सोच के चलो कि हमारा लक्ष्य निर्धारित है। और जब दिल में कुछ नहीं होता है ना, तो कोई लक्ष्य भी नहीं होता है। इसलिए दिल को हमेशा आपने संभाल कर रखना है। ठीक ऐसे ही दीदी के दिल ने ये कहा, क्यों ना इस रविवार यानी आज बच्चों को अंतरिक्ष की सैर करवाई जाए। तो बताइए, क्या आप अपनी दीदी के साथ अंतरिक्ष की सैर करने के लिए तैयार है ना? भाई अकेले जाने से दीदी को डर लगता है, सीधी सी बात है। इसलिए दीदी ने ये सोचा, क्यों ना अपने नन्हे बच्चों की सारी फौज को लेकर चला जाए और अंतरिक्ष की सैर की जाए, है ना। बस फिर क्या था, दिल ने कहा और दिमाग ने उस पर भाई अपनी मोहर लगा दी कि चलो दीदी क्या सोच रही हो, इरादे आपके गलत नहीं है, करवाओ बच्चों को सैर और बच्चों के साथ साथ खुद भी सैर करो अंतरिक्ष की। वैसे बच्चों, जब हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हम सभी के दिमाग में क्या आता है, अंतरिक्ष कैसा है ना, ऐसा ही कुछ लगता है ना। हम सभी को ऐसा लगता है कि एक विशाल खाली जगह की छवि, हमारा दिमाग कुछ ऐसी पिक्चर बना लेता है। लेकिन बच्चों, वास्तव में अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ पर असंख्य तारे हैं, सौर मंडल के सभी ग्रह हैं, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्का वर्षा, बोने ग्रह, शूद्र ग्रह, ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अंतरिक्ष में हैं। और अंतरिक्ष इन सारी चीज़ों से भरा पड़ा है। और अगर आपको भी ये लगता है कि अंतरिक्ष यात्री आपको बनना है, दीदी भी ऐसा ही सोचती है, तभी तो आपको अंतरिक्ष की सैर आज करवा रही है। और अगर आपको अंतरिक्ष यात्री बनना है, तो भाई दीदी का ना हाथ पकड़ कर रखना, क्योंकि अगर दीदी गिर गई तो पटाख से जमीन पर गिर जाएगी, लग जाएगी, है ना। चलो बच्चों, ये तो हो गई मजाक की बात। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि अंतरिक्ष की सैर आपको करनी है, बड़े होकर आपको स्पेस में जाना है, तो उसके लिए आपको आज से, अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। और अगर आप अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई कान खोल के सुन लीजिए कि ये जो सफ़र होता है ना अंतरिक्ष का, ये बहुत ही रोमांचक भरा होता है। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जीवन में वास्तव में कई सामान्य और रोज़मर्रा के कार्य शामिल होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं। जी हाँ, जैसे हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, चीज़ों का सही तरीके से रख रखाव करते हैं, ठीक ऐसे ही वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। यानी स्टेशन का रख रखाव करना चालक दल की जिम्मेदारी होती है, इसके साथ साथ उपकरणों की जांच करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी भी ख़राब वस्तु वस्तु की मुरम्मत करना या उसे बदलना इसी में शामिल होता है। इसके अलावा नन्हे दोस्तों अंतरिक्ष में कई सारे वैज्ञानिक प्रयोग भी किए जाते हैं। तो भाई अब बताइए कि आप भी अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं और अगर अंतरिक्ष के प्रति आपका आकर्षण है तो आपके लिए इस क्षेत्र में जाना जी हाँ बनता है। और उसके लिए रेडियो दीदी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब सारा पढ़ो, खूब सारा लिखो और अंतरिक्ष में आप जाओ। और सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है नन्हे दोस्तों कि अगर आप ज़मीन की गहराई और आसमान की ऊंचाई को छूना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको हमेशा अपने बड़ों का साथ, उनका आशीर्वाद हमेशा अपने साथ बनाकर रखना है, क्योंकि उनके प्यार और उनके आशीर्वाद के बिना और उनकी अपनी मेहनत, अपनी लगन के बिना आप कहीं भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब तक माँ और पिताजी का साया आपके सर पर है, बड़ों का प्यार साथ उनका आशीर्वाद आपके सर पर है, आप हर एक चीज़ को पा सकते हैं, हर एक चीज़ को आप छू सकते हैं।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम में एक बार फिर से रेडियो दीदी प्रवीण अपने सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती है। जी हाँ, हम कर रहे हैं अंतरिक्ष की सैर और दीदी बना रही है अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को अंतरिक्ष यात्री। जी हाँ, हम दिल से यही चाहते हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जब बड़े हो जाए ना तो बहुत बड़े बड़े काम करें, छोटे छोटे काम ना करें। छोटे छोटे काम आपने पता है कब करने हैं? अब, जब आप बहुत छोटे हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो अच्छे काम करने हैं और बड़े काम करने हैं। बच्चों, आपको हम ये बता दें कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रतिदिन 2 घंटे का व्यायाम करना अनिवार्य होता है। जी हाँ, और अंतरिक्ष यात्री सच में 2 घंटे का व्यायाम हर रोज़ करते हैं। ये उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि सभी अंतरिक्ष यात्री स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें, क्योंकि बच्चों अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण चलने फिरने आदि के लिए मांसपेशियों का उपयोग ना होने से वे आसानी से कमज़ोर हो जाती हैं। और बच्चों, अंतरिक्ष के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए आप नासा स्पेस रिसोर्सेस पर भी जानकारी जो है वो उपलब्ध कर सकते हैं, और ये विशेष जानकारी वहाँ पर उपलब्ध रहती है। तो अगर आप अंतरिक्ष के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नासा स्पेस रिसोर्स पर जाकर बहुत सारी ढेर सारी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नन्हे दोस्तों को पहुंचाते हैं रोचक जानकारियां। जी हाँ, नन्हे दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेने से आपका दिमाग कुछ समय के लिए बंद हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, जब हम बहुत सारा सोचते हैं ना तो कुछ समय के लिए हमारा दिमाग सच में बंद हो जाता है, यानी हमें कुछ भी याद नहीं रहता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। इसलिए सोचना उतना ही है जितना ज़रूरी है। ज़्यादा सोचेंगे तो वो चिंता और तनाव अवसाद का कारण बन जाता है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जीभ होती है, और बच्चों चींटियां 12 घंटे की अवधि में लगभग 8 मिनट ही आराम करती हैं। नन्ही दोस्तों, टूथपेस्ट से पहले दांतों को राख से साफ किया जाता था, और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप अपनी दादी नानी को पूछ सकते हैं। जी हाँ, कि आज से पहले या टूथपेस्ट से पहले दांतों को कैसे साफ किया जाता था। और बच्चों, 1957 में सोवियत संघ ने लाइका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था, और तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है जो 80 टन के ग्रेनाइट टुकड़ों से बना हुआ है। तो ये थी थोड़ी सी रोचक जानकारियाँ जो रेडियो दीदी ने पहुँचाई अपने नन्हे मुन्ने बच्चों तक। और अब चलते चलते हम आपको एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत सुनवा रहे हैं।

तो एक बार फिर से हमारी ओर से हैप्पी मदर्स डे। आप सभी श्रोताओं को, हमारे सभी नन्हे बच्चों को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

तो जाने से पहले हम आपको बता देते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे जितेंद्र सिंह और तकनीकी सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहे सुरेंद्र कपूर। इसी के साथ अब अपनी रेडियो दीदी प्रवीण को दे कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। प्यारे बच्चों, जय हिंद।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार, वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: आंखों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई छठे, लखनऊ दसवें, बेंगलुरु चौथे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru this morning. He also inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality, and social transformation. He also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment, and inner well-being. Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
3: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital. Earlier, Prime Minister Modi emphasized that the BJP victory in West Bengal, Assam and Puducherry is a testament of public support for the national policy implemented by his government. He said that the election outcomes reflect the mood of the nation, indicating that the public is supporting national programs and policies of his government. Addressing BJP cadres in Bengaluru today, the Prime Minister underscored the need for a government that delivers, that provides good governance at speed, provides solutions, and takes the country forward.
2: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
3: In Tamil Nadu, the founder of Tamilaga Vetri Kargam or TVK, C. Joseph Vijay, was sworn in as the Chief Minister this morning. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Vijay at the swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Along with him, 9 ministers were also sworn in. Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Mr. Vijay created history as his party emerged as the single largest party on debut, and he became the first chief minister of the state since 1967, who does not come either from DMK or All India Anna DMK. Mr. Vijay, with the backing of Congress, CPI, CPIM, VCK, and

0: as well as the NDA Legislature Party. In the BJP Legislature Party meeting held in Guwahati this morning, a total of 8 BJP MLAs proposed the name of Dr. Sarma as the leader of the Legislature Party. In IPL cricket, the Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants in Chennai at 3:30 p.m. In another clash, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians in Raipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: और इस संगीत को सुनने का आनंद लेते रहिए, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने और सही जवाब भी आ गया है कि ये गाना रामपुर का लक्ष्मण का है, जिसमें रणधीर कपूर और रेखा दिखते हैं। और घड़ी के बाबत जो हमने पूछा था तो उसका जवाब सिर्फ यही आया है कि पिताजी के पापा ने सिखाई थी घड़ी देखना, सूर्य घड़ी थी वो। संदेश अब मुझसे खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, सूर्य वाली घड़ी थी और पहला परिचय घड़ी से मेरे पापा ने करवाया था। तो भाई आप भी अब बताइए ना कि घड़ी से पहला परिचय किसने कराया था। और अब बात जब हो रही है इबारत की, तो अगला शब्द जो बन रहा है, समय पर तो बात बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने की है और दुनिया की भी बात है, क्योंकि दुनिया जो है वो गोल तो है और कहीं ना कहीं हमारे रास्ते भी मिल जाते हैं। ये गीत भी हो सकता है, लेकिन कौन सा गीत आने वाला है ये सोचिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि समय हर पल बदलता रहता है, ज़िंदगी उसी के अनुसार चलती रहती है। ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनकार, तन्हाई, माँ की लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर में सुर मिला के चलते जाना है, यही है ज़िंदगी। और कुछ गानों का भी जिक्र किया है हमारे इन साथी ने। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की मूर्त माँ, सभी को मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, ऐसा हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं। परिवर्तनशीलता और उसकी अनिश्चितता और समय की परिवर्तनशीलता, उसकी अनिश्चितता और जीवन पर उसके गहरे प्रभाव का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक चित्रण है आज की इबारत। समय ऐसा संगीतकार है जो लगातार धुन बदलता रहता है। दुनिया का मेला इसी धुन पर बिगड़ता संवरता है। समय का गीत कभी सपनों की गूंज है तो कभी निराशा का वीराना। आशा और निराशा से इन्होंने मिलाया, बिल्कुल सही बात है। आशा और निराशा भी होती है जब कुछ मिलता है या जब कुछ खो जाता है। ये भी कहा है कि ये जीवन के द्वंद्वों, मिलन और जुदाई, बहार और खामोशी की धुन छेड़ता रहता है। ये माँ की लोरी जैसा ममतामयी भी हो सकता है और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। और भी कुछ बातें लिखी हैं, शब्द बताए हैं, समय हर पल सिलसिले, ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनक, तन्हाई, माँ, लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर हो सकते हैं। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय के साथ बदलते संगीत की बात कितनी सही है। वाह, बिल्कुल सही है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़कर आप बराबर अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसा लगता जा रहा है ये सफ़र। तो अब दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

बदली बदली सी इस दुनिया का ये जो राग है ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी, लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज़ आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है, ये संदेश पढ़ लेती हूँ, ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है। बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए टेक्स्ट को लेकर अगर आप उसके भाव पर जाएंगे तो आपको शायद उसी के हिसाब से, अगर आप प्लेलिस्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, उस टेक्स्ट में से आप जो बातें हो रही हैं उन बातों में हिस्सा लीजिए और कार्यक्रम में उस शब्द को चुनकर जो बहुत ही ख़ास शब्द दिख रहा है उसको चुनकर अपनी पसंद का गीत सुनिए। अगर आपकी पसंद इस प्लेलिस्ट से मिलती है जो कि गाने हमने चुने हैं आज के इस इबारत से। हाँ, घड़ी के बारे में एक और संदेश है, मेरे दादाजी ने मुझे सुइयों वाली घड़ी लाकर दी थी। सबसे पहले 1984 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर घड़ी मिली थी। क्या बात है, समय की और घड़ी की बात हो रही है। 1975 में नौकरी कर 250 रुपये पहली बार कमाए और 245 रुपये की GMT सोना घड़ी लेकर हाथ में बांध कर समय देखा जिसमें सेकेंड मिनट घड़ी घंटे के कांटे होते हैं। जी हाँ, पहले तो ऐसी ही घड़ी होती थी। एक और साथी बता रहे हैं कि मेरे को घड़ी देखना मेरे बाबूजी ने और बड़े भैया दोनों ने एक बार में सिखाया था। और ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद पूछा कि बता घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला 1:30 बजे हैं। तब बाबूजी ने समझाया कि अभी 1:30 बजे हैं। शुद्ध हिंदी में 1 और 2 के साथ जब आधा जोड़ा जाए तो 1.5 और 2.5 कहा जाता है। जी हाँ, ये 1:30 1:30 का चक्कर जो है ये कई बच्चों के साथ होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि पहले के ज़माने में चाबी वाली गोल अलार्म घड़ी घड़ी थी। सबसे पहले मेरे दादाजी ने उसे घड़ी में समय कैसे देखा जाता है ये सिखाया था। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि बचपन में मेरी माताजी ने मुझे मुंबई से घड़ी लेकर दी थी और पहचान कराई थी जिसमें सुइयां थी और चाबी रोज़ घुमाना होता था। पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी थी, ये भी एक साथी ने बताया है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे घड़ी की पहचान मेरे नाना जी के घर दीवार पर एक ब्लैक घड़ी लगी थी, वो टिक टिक करती थी और जब घंटा होता तो तेज़ आवाज़ में टन की आवाज़ होती, तब मेरे नाना जी ने समय देखना सिखाया था। क्या बात है, समय की कितनी सारी यादें ताज़ा हो गई। और बात आज माँ की भी हो रही है, घड़ी की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। और जो समय है वो जिस तरह सबसे बड़ा शिक्षक होता है उसी तरह माँ भी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ये गीत सुनकर बताइए किस फिल्म का।

भाई हमारे साथियों ने तुरंत ही कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गाना सुनकर ही समझ में आ गया है कि गीत गाता चल फिल्म का गाना है। बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए जिंदगी के इस

सुरीले सफ़र में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिक-टिक की आवाज़ सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नज़र उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई। घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली, उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी। वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज़ और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियाँ भी आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर संगीत से सजा संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन गीत स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टनटन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज़ पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब में से किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है? हो तो हमें बताइए और ज़रा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

वैसे एक श्रोता ने बताया है कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत।

बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज़्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में। अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज़ बारिश पर उस दिन स्कूल जाना ज़रूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में ख़राब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रास्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फ़ोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ। जी हाँ, घड़ी पर नज़र रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफ़र कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत, बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे, फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहती हैं कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मज़ा आता था, उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में, लेकिन एक संदेश और है। हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से। क्या बात। अपनी HMT के रिस्टवॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद किया हमारे एक श्रोता ने, जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश

0: आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी, दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और ना ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी। सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी HMT की, बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ। और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे तो मैंने बोल दिया 10 बजे इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे। और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज़्यादातर घड़ियां रोमन लिपि में ही आती थी जो हमारे समझ में नहीं आती थी। अलार्म घड़ी रहती थी। जब मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी मिली थी। बाद में सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय देखना भी सिखाता हूं क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूं, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना। बताइए स्वर किसका है।
1: हा हा हा

किया कोने को है आज फूलों का बुलबुल बिया।

सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिवहरी बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी, पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी, और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो खत्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने

एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन के ताला बनाने वाले पीटर हैनलिन ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी। क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बचकर उतने मिनट। और एक और संदेश में गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागड़ा नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ शायद छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूँ तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख भेजिए कृपया। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफ़र पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। इंसान जीना है, इस पल को जी ले क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा। क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा संदेश, अम्मा तो गोंद की तरह होती है जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है। भाई हाँ, सच में सारी ब्रह्मांड की माओं के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए ज़रा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज़ के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज़ है, अभी उस जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये गाना सुनिए।

फिल्म का नाम मेरे लाल, लता मंगेशकर की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है। वो किस्मत माले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे KL सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार, बताइए कब कब। और एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए, सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुरहल पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन की वो शरारतें याद हैं, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती तब अचानक हवा में तैरती चप्पल रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है। उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना, बताइए किस फिल्म का है और आवाज किन की है।

बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत, सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भला ही हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ बीजा बगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखती थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आँखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

मेम साहब, फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में माँ बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है माँ, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता, प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का काटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15। घड़ी मिनट दोनों काटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद कहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज़्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।

मित्रों, किसी भी बच्चे का संसार से पहला परिचय होता है उसकी माँ, जिसकी ममता एक बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। माँ और उसके बच्चे का नाता सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। एक बच्चा अपनी पहली सांस माँ की कोख में ही लेता है और तभी से उसके जीवन की डोर ममतामयी माँ से बंध जाती है। जाने कितने दर्द सहती है वो माँ जिसकी कोख में पलने वाला बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है, उसे देखते ही अपने सारे दर्द भूल जाती है माँ और चमकती आंखों से प्यार छलकाती, मुस्कुराती अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लेती है। छलक पड़ते हैं खुशी के आंसू उस माँ की आंखों से, जो स्वयं ममता का अथाह सागर है। उसकी कोख से जन्मा बच्चा उसकी जिंदगी को खुशियों और उल्लास से भर देता है।

ममता का अमृत रस बरसाता माँ का आंचल संपूर्ण जगत को स्वयं में समेटने की ताकत रखता है और माँ के आंचल की छत्र छाया में जीवन बिताने की कामना हर कोई करता है। बच्चे की खुशियाँ, जरूरतें, उसकी आशाओं और अरमानों को पूरा करने में अपना सारा जीवन बिता देती है माँ। बच्चे की गलतियाँ हों या भटकाव, बहुत प्यार से उसे वो राह दिखाती है जो बच्चे के जीवन में बेशकीमती और सुखदाई होती है। माँ अनमोल है, अतुलनीय है, जिसका हर एक बच्चा उसकी आँखों का वो तारा होता है, जिसकी एक मुस्कुराहट से उसकी सुबह होती है, जिसके लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। बच्चे के मुँह से निकला पहला शब्द होता है माँ, जिसे सुनकर दुनिया की हर माँ निहाल हो जाती है और अपने आंचल में समेट लेती है अपने जिगर के टुकड़े को।

माँ की ममता निस्वार्थ है। बच्चे के लिए सुख की वो छाया है माँ, जिसके तले बच्चा स्वयं को सदैव सुरक्षित महसूस करता है। हर बच्चे को माँ की ममता का वो आंचल नसीब हो, जिसकी छत्र छाया में उसका मासूम बचपन खिलखिला उठे और संगीत के सुरों की तरह रस बरसाता आगे और आगे बढ़ता ही जाए। ना उम्मीदी में भी उम्मीद का दिया जलाने वाली माँ और उसकी ममता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ममत्व का गहरा समंदर है माँ का आंचल, जिसका आशीर्वाद जटिल से जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की ताकत रखता।

इस जगत में हर बच्चे के साथ उसकी माँ का आंचल हो, ममता हो, दुलार हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: ஸ்ரீ விஜய்

0: के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दैमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी विन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
3: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना। आशा भोसले की आवाज़ में प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चों, आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम। तुम हो हमारे, हम है तुम्हारे, कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: बाप हमें मामा जी करना तुमको पड़ा है नीचे उतरला।
0: अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये तुमने क्या पूछा, जो तुमसे झुक कर मिलता है वो है सबसे

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी।

0: मामा जी नजदीक तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ना ना यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी, दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता। एक तू ही क्या, मुझको भी अब हो।

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन। अरे 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे, होशियार खबरदार बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला, बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला।

लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वहीं है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन

मोहम्मद रफ़ी का गाया, औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

दिल से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मुहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना ये गाना, राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर में।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: 59 असफल घोषित किए गए हैं। इसी तरह परीक्षा परिणाम 83.87% रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर माना जा रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा के अनुसार परीक्षा प्रणाली में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके चलते परिणाम में सुधार देखने को मिला है।
3: इस बार जो बोर्ड की पास परसेंटेज है वो है 83.87%, जो पिछले वर्षों के मुकाबले ग्रेजुअल इंक्रीज है। ये दर्शाता है कि बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से लगातार एफर्ट कर रहा है, जिसके रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। ये अचानक नहीं है। बोर्ड की जो कार्यशैली है, कार्यशाला लगाने, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के पेपर का स्टाइल CBSE के मुताबिक करने के लिए, साथ के साथ जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले, जैसे बच्चों को नीट में चाहिए होते हैं, JEE में चाहिए होते हैं, UPSC में चाहिए होते हैं, वैसे हमने पैटर्न भी चेंज करा। और कुछ उनके मस्तिष्क में था, मानसिक तौर पर तैयार थे कि हमारे हक को चुराया नहीं जाएगा, नकल पे रोक लगेगी, इसलिए वो बेटर परफॉर्म कर पाए।
2: इस बार 10वीं कक्षा की मेरिट सूची में 107 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। इनमें 83 छात्राएं और 24 छात्र शामिल हैं। कांगड़ा जिला के निजी स्कूल पहरा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। 7 और 8 मई को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में 42,562 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरे। अभी तक कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 7,396 नामांकन भरे गए हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 15 मई को की जाएगी और इसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायत चुनावों के लिए मतदान 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। प्रदेश के शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो रहा है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पालमपुर में नगर निगम चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। एक जनसभा में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से मिल रही सहायता को भी सही ढंग से खर्च नहीं कर पा रही है।
4: विधायक यहाँ वर्षों से कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन पालमपुर जैसा चल रहा है वैसा चल, लेकिन हट करके कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, बड़ी सोच के साथ करना चाहिए। वो स्थिति 15 वर्षों में आ नहीं सकी। हमारा विधायक ना तो यहाँ नहीं था, हमारी सरकार थी। हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो है हमारा कोर्ट होना चाहिए, हमने वो कोर्ट आपको दिया। पालमपुर में आकर के आप लोगों ने कहा कि BDO का ऑफिस यहाँ पर खुलना चाहिए, BDO का दफ्तर आपको पालमपुर में हमने खोला, लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद उसको भी डिनोटिफाई करके चले गई।
2: ऊना जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 3,79,459 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि ऊना जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले में 1,88,945 पुरुष जबकि 1,84,724 महिला मतदाता हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूल में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और स्मार्ट शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्की धूप के बीच बादल छाए हैं। राज्य में मई के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है और लोगों को सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 15 मई

0: तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। वाचक स्वर नविता चौहान।
0: भारत में वर्षा आधारित कृषि जो कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 60% है, देश की कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है और कुल खाद्य उत्पादन में लगभग 40% का योगदान देती है। इसकी अहम भूमिका को देखते हुए खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और साथ ही मजबूत वर्षा आधारित कृषि प्रणालियों का व्यवस्थित विकास बेहद जरूरी है। इसी के चलते सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की। इस मिशन को कृषि पर जलवायु में आ रहे बदलावों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और दीर्घकालिक खाद्य और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक पहल के रूप में परिकल्पित किया गया था। इसके बाद वर्ष 2018-19 से NMSA को हरित क्रांति कृषोन्नति योजना के व्यापक योजना के तहत एक उपमिशन के रूप में संचालित किया गया। वर्ष 2022-23 के बाद संस्थागत पुनर्गठन के नतीजतन इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दायरे में शामिल किया गया, जो टिकाऊ जलवायु अनुकूलित कृषि विकास के लिए एक समेकित दृष्टिकोण को दर्शाता है। NMSA के तहत जलवायु अनुकूल कृषि के लिए एकीकृत नीतिगत हस्तक्षेप राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के जरिए जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देता है। ये जल उपयोग दक्षता बढ़ाकर, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करके और जलवायु अनुकूल कृषि को सुदृढ़ बनाकर सतत कृषि विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देती है। इन प्रयासों को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन घटक द्वारा और भी बल मिलता है, जिसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा समर्थित किया जाता है, जो संतुलित पोषक तत्वों को बढ़ावा देता है और दीर्घकालिक मृदा उर्वरता को बनाए रखता है। वर्षा आधारित कृषि विकास मॉडलों के जरिए सतत कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये किसानों की आय और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे संबंधी गतिविधियों के साथ बहुफसली, चक्रीय, अंतरफसली और मिश्रित फसल प्रणालियों को एकीकृत करके एक समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण देश के शुष्क भूमि और वर्षा आधारित कृषि के व्यवस्थित उन्नयन और प्रबंधन पर ज्ञान प्रदान करने वाले एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान आधारित हस्तक्षेपों को सक्षम बनाकर और विभिन्न एजेंसियों के साथ कुशल समन्वय स्थापित करके वर्षा आधारित कृषि को बढ़ावा देना है। प्रति बूंद अधिक फसल पहल का मकसद स्टीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देकर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के कवरेज का विस्तार करने के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान भी की जाती है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, विशेष रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर पानी के कुशल उपयोग को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ड्रिप सिंचाई में पार्श्व पाइपों से जुड़े उत्सर्जकों के जरिए जड़ क्षेत्र में लक्षित जल का छिड़काव किया जाता है, जिससे नुकसान कम होता है और संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। इसके विपरीत स्प्रिंकलर सिंचाई पाइपों और नोजलों के नेटवर्क के जरिए दबाव के साथ पानी वितरित करती है, जिससे वर्षा का अनुकरण होता है और पूरे खेत में एक समान वितरण सुनिश्चित होता है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन स्थान और फसल विशिष्ट टिकाऊ मृदा प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देता है, जिसमें अवशेष प्रबंधन और जैविक खेती शामिल है। मृदा अपरदन और भूमि क्षरण को क्षम करने के उपायों के कार्यान्वयन पर जोर देता है, जिससे दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता सुनिश्चित होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में अनुसंधान प्रणालियों के जरिए कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। NICRA ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन उपाय क्षेत्रों में किसानों और हितधारकों की क्षमता विकसित करने में NMCA में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए स्थान विशिष्ट आशाजनक जलवायु अनुकूलित प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। ये पहल

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को, याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहर टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

मनचाहे गीत प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं आनंद बशखी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक P.S. कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको ये रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
2: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
3: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
2: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
3: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
2: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना, करा दोगे ना?
3: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
2: मेरी बात याद रखोगे ना?
3: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
4: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
5: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है, अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
4: नहीं, लखपति? अरे क्या कह रहा है,
5: ये जरा गंभीर मामला है। हाँ? देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
4: लगता है मारी तू दारू पीकर आया है, अब सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते के मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
5: बहुत गहरा संबंध है, वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
4: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
5: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ, उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था, मैं छिप कर खिड़की के पास हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
4: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
5: वही तो मैं सुन नहीं पाया, उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
4: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
5: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा, कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
4: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आओ कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही, लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: हैं? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भीड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। भगवान, शिव का मिया अम्बाल का लड़का मर गया।
0: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो, जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है, आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूँ बाबूजी, चाहता हूँ। ये कैसी मजबूरी है, शिव कामी अम्माल मुझ पर माँ के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए

0: माजी?
1: आओ कंदे स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना।

भजन आप सुन रहे थे आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। शाम के 5:30 हुए हैं और लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम युवा मंच, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वंदना रैना। दोस्तों, जिंदगी में बहुत से रिश्ते आते हैं, कुछ वक्त के साथ बदल जाते हैं और कुछ हालात के साथ दूर हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं बदलता, और वो है हमारा अपनी माँ के साथ रिश्ता। और आज का ये युवा मंच कार्यक्रम उसी शख्सियत को समर्पित है जिसने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, गिरकर संभलना सिखाया, और वो है हमारी माँ। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे।

जी दोस्तों, आज है मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस। लेकिन सच कहें तो माँ इस शब्द को और अपनी माँ को सम्मान देने के लिए कोई एक दिन काफ़ी नहीं है। माँ वो एहसास है जो हर दिन हर पल हमारे साथ रहता है। माँ हमारी पहली टीचर है, पहली दोस्त है, पहली डॉक्टर है और सच कहें तो हमारी जिंदगी की रियल सुपर हीरो है हमारी माँ। और हमारा भगवान भी है हमारी माँ, जो छोटे होने पर गिरने से पहले पकड़ लेती थी और बड़े हुए तो टूटने से पहले हमें संभाल लेती है।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Next.
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
3: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.
5: जी दोस्तों, 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच, जो कि आधारित है मेरी पसंद पर और साथ ही आधारित है आज के खास दिन पर, मदर्स डे पर। जी दोस्तों, आज का यूथ, अगर हम उनकी बात करें तो बहुत ही स्मार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया है, करियर की रेस है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी है जो कभी आउटडेटेड नहीं होता। जी हाँ, वो रिश्ता है हमारा हमारी माँ के साथ। और हमारी माँ जो है वो गूगल की तरह काम भी करती है। वो सच में जान जाती है कि कब हम नाराज़ होते हैं, कब हम झूठ बोलते हैं, कब हम सच बोलते हैं, कब हम खुश होते हैं और कब हमें हमारी माँ की ज़रूरत है। जी दोस्तों, याद है ना आपको आपका बचपन, जब थोड़ी सी चोट लगती थी तो हम डॉक्टर के पास नहीं बल्कि सीधे भागते थे अपनी माँ के पास, और सबसे पहला जो शब्द हमारे मुंह पर आता था वो भी था मम्मी। जी, क्योंकि हमें पता था कि दवा से पहले दुआ काम करेगी और माँ की गोद ही वो गोद है जहाँ पर हमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और हम सारे दुख तक भूल जाएंगे। जी दोस्तों, घर की इस भीड़ में अपना सा चेहरा जो बिना कहे समझ जाए, वो रिश्ता है सुनहरा, जिसके आंचल में सुकून मिले हर बार, उस मोहब्बत का नाम है माँ का प्यार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और दोस्तों, कार्यक्रम में चलते चलते बस इतना ही कहेंगे, माँ वो किताब है जिसमें मोहब्बत का हर सबक लिखा है, जिसने उसे पढ़ लिया उसने जिंदगी जीना सीख लिया, और जिस घर में माँ मुस्कुराती हैं उस घर में भगवान बसते हैं, माँ हैं तभी हम हैं। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। और आपको साथ में ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है जितेंद्र पाल सिंह, और तकनीकी सहयोग हमें मिला सुरेंद्र कपूर से। तो अपनी रेडियो दोस्त वंदना रैना को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।

युवा मंच कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। शाम 6:06 पर हम पेश करेंगे गजलें और कार्यक्रम मौजा गराइंदियां सुनिएगा शाम 6:30 पर। कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा शाम 7:10 पर और रात्रि 8 का समय है मिले जुले गीतों के कार्यक्रम सबरस का। रात्रि 8:30 पर हम प्रसारित करेंगे देशभक्ति गीत। एक ही कलाकार इस कार्यक्रम में रात 9:15 पर सुनिएगा निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्मों से कुछ गीत। रात 9:30 पर आनंद उठाइए फिल्म संगीत का और रात 10 रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। रात 8:45 पर समाचार संध्या और 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी और प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6 और 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से। और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनेंगे आप कल सुबह 6:05 पर और 6:40 का समय है श्री रामचरित मानस कान का। मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुप्रभात आपके लिए हम लेकर आएंगे कल प्रातः 7:10 पर और 7:40 का समय रहेगा लोकगीतों के कार्यक्रम शुभ प्याग का। फिल्म संगीत सुनिएगा कल प्रातः 8:30 पर और प्रातः 9 हम आपको सुनवाएंगे गीतांजलि जो कि फिल्मी गीतों पर आधारित रहेगा। तो श्रोताओं ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 हुए हैं। थोड़ी ही देर में यानी कि शाम 6 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: सरमन की।
1: ओ लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 93,176 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिनमें से 78,150 उत्तीर्ण हुए हैं। 8,433 विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट आई है, जबकि 6,559 असफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम 83.87% रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
4: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की मेरिट सूची में एक बार फिर छात्राओं का दबदबा देखने को मिला है। मेरिट सूची में कुल 107 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है, जिनमें 83 छात्राएं जबकि 24 छात्र शामिल हैं। कांगड़ा जिले के निजी स्कूल पहारा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा प्रणाली में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके चलते परिणाम में सुधार देखने को मिला है।
5: इस बार जो बोर्ड की पास परसेंटेज है वो है 83.87%, जो पिछले वर्षों के मुकाबले ग्रेजुअल इंक्रीज है। ये दर्शाता है कि बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से लगातार एफर्ट कर रहा है, जिसके रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। ये अचानक नहीं है। बोर्ड की जो कार्यशैली है, कार्यशाला लगाने, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के पेपर का स्टाइल सीबीएसई के मुताबिक करने के लिए, साथ के साथ जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले, जैसे बच्चों को नीट में चाहिए होते हैं, जेई में चाहिए होते हैं, यूपीएससी में चाहिए होते हैं, वैसे हमने पैटर्न भी चेंज करा। और कुछ उनके मस्तिष्क में था, मानसिक तौर पर तैयार थे कि हमारे हक को चुराया नहीं जाएगा, नकल पे रोक लगेगी, इसलिए वो पैटर्न परफॉर्म कर पाए।
4: स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेश भर में 2,384 केंद्र बनाए थे। पहली बार परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग भी की गई। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी सत्र से परीक्षा केंद्रों में ऑडियो वीडियो कैमरों के माध्यम से निगरानी रखने की भी योजना है। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10वीं की परीक्षा में सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। मेधावी विद्यार्थियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये परिणाम उनकी कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति समर्पण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने इस परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को निराश न होने और नए संकल्प व कड़ी मेहनत के साथ दोबारा तैयारी करने के लिए प्रेरित भी किया। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनता में अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया है और केवल झूठे आश्वासन दिए हैं। पालमपुर में आज कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा पालमपुर नगर निगम के लिए स्पष्ट विजन लेकर आई है और इसे आदर्श नगर निगम बनाया जाएगा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पालमपुर को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर बेसहारा पशुओं, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पालमपुर में आज चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पालमपुर शहर का विकास ठप पड़ा है और केंद्र द्वारा स्वीकृत सीवरेज योजना में भी बड़ा घोटाला किया गया है।
6: विधायक यहाँ वर्षों से कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन पालमपुर जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, लेकिन हट करके कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए।

0: नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: का स्वागत है। इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: तेरी वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। हम आकाश

0: चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
0: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: आरबीआई कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। हम आकर

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
3: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
2: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई। मई धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
3: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। TNC अप्लाई।
4: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
5: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
5: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
4: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
1: Nexa.
6: जी श्रोताओ, गजलें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथियों अज टियाले पर ने मंजूर होगी प्यारू तो प्यारू भाई जी राम राम।
1: भाई राम राम बड़का चाचू जी कने कार्यक्रम मौजा ग्राएं दी सुना कर दे सारे स्रोतियां जो कने किसान कने बागवान भाइयों जो कने भैन जो संजय दे वेले दी राम राम कने और सब कुशल मंगल है ना सारा काम।
0: बिल्कुल बिल्कुल कने दिखा प्यारू भाई अज बड़े दिन बाद तुहां कने मुलाकात हुआ कर दी है।
1: बिल्कुल
0: ता मैं ता ए समझदा कि भी दिखा कि तुहां तो अपने जिहड़ी जौ दी फसल है बटोली बटाली के मतलब समिटी समाटी के पुजी गए मतलब
1: बिल्कुल बीच बीच जी इस बरखा भी नहीं कम करना दे दी कने इस कुछ एक जी कणक गेहूं की जी फसल है भी थोड़ी बटोली ले कुछ क्षेत्र चली बटोलने हो है
0: जी जी जी
1: कने जौ की भी जी इस कुछ क्षेत्र च बीनी लिए कुछ ही हली जे इस कुछ क्षेत्र च बीनने जो बढ़ने जो भी है ना जी।
0: बिल्कुल कने दिखा प्यारू भाई कि जी अहाँ जे पहाड़ी क्षेत्र हैं उत्थों अगर हाँ जी किसान साथी कणका की फसल लगाता है
1: बिल्कुल
0: पकने थोड़ा टाइम लगता तो क्या इस वेले पकी गई हो कि हले तक टाइम लगना है।
1: बिल्कुल पकने कगार पर होंगी और जी बरखा हो जाती ना तो बिच जो ऐसे पकने थोड़ा टाइम ले लेंदी क्योंकि ठंडे क्षेत्र होंगे ना उपलक्ष क्षेत्र जरा ऐसा
0: बिल्कुल
1: इस वजह ने जरा ऐसा कने उपर जी गहाई की प्रक्रिया होंगी कणका की
0: जी जी
1: उस भी संजो जरा ऐसा सीढ़ी नुमा खेत होंगे दूर क्षेत्र संजो कई बार लेके जाना पाती है तो यह जी प्रक्रिया थोड़ी आस्ते चलती है जी
0: जी जी। और खास तौर पर जी देखा कि असा दे जड़े जी घासणियां होंदियां ने
1: बिल्कुल
0: जी कि मतलब जितू घा वगैरह असा दे पशु ताएं मतलब उगदा है और इस बेल ये जड़ा बेला होंदा है कि उन्हें घासणियों च अहां बाड़बंदी कर दें जी अपना अपना मतलब तरीका बाड़बंदी करने का
1: बिल्कुल
0: ता इस वेले से काम भी जोरा शोरा पर चले आया।
1: बिल्कुल बाड़बंदी वाला जिखो हूँ जरा ऐसे अहां अपनी घासणियां जी ऐसे बाड़बंदी करी नहीं क्योंकि पशुधन जरा ऐसे उस विच नहीं पाना है क्योंकि गां जड़ा मौसम होंदा उस सर्दियों के मौसम वास्ते गां हरा चारा की व्यवस्था जी इन्हें घासणी थी यहाँ करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्योंकि गां जड़ा ऐसा बढ़िया उगगा उस सुखाई बनाई के रख गया हाँ तां गां वास्ते जड़ा है क्योंकि कई क्षेत्र में बर्फ पौंदी है तो जिस उस भंडारित करके रखना पौंदा है तो सह सारे जड़े ऐसे अहां पहले तैयारियां करना पौंदी है।
0: बिल्कुल और इसके कन्ने कन्ने जी अहां गेहूं की फसल या फिर जौ की फसल समेट बटोलने के बाद फिर यहाँ गां मक्की फसल की तैयारियां भी करते हैं।
1: बिल्कुल
0: है ना और इस दे कन्ने जियां साड़ी राजमा वगैरह होएगी होर जड़ी बेलदार सब्जियां होएगी इन्हां दी तैयारियां भी करते हैं ना।
1: बिल्कुल कने कई तेरी पनीरियां जी मिर्चा दी पनीर जड़ी ऐसे तैयार है
0: जी जी
1: जड़ी और पनीरियां हां तैयार कीतियां ने कुछ अगेती बिजाई वाले जड़ी बेलदार सब्जियां सब लगाई दी ने कने कुछ जड़े से पिछेती बिजाई जड़ी अहां फसलां कने बीजदे जी मक्की दी फसल सुकी अहां बीजदे ना राजमा होई गए फलियां होई गईयां तो तिस ने क्या होंगे कि सै मौसमी सब्जी बिजाई जाती है तो अहम जो तिस की बिजाई का भी पूरा ध्यान रखना है उस जो जड़ा ऐसा कलू बीजना है बीज जड़ा ऐसा बिल्कुल बढ़िया किस्म का अहम लगा कुछ परंपरागत बीज अहम रखे होंगे
0: संजोए
1: होंगे तेना सारे जो संभाल के रखी करी जड़ा अहम कम कार करते हैं ताकि कुछ परंपरागत जो बीज हैं सह भी जीवित रहन कने सोगी जो ऐसा कुछ एक उन्नत किस्म जी जी और करते तेना जो भी अहम संजोई के रखना हाँ जी।
0: बिल्कुल कने देखा कि संजो डॉक्टर भी सलाह देंगे है ना
1: बिल्कुल
0: टाइमे टाइमे पर डॉक्टर भी सलाह देंगे कि भाई देखा इक्की फसलों पर संजो के भी निर्भर नहीं रहना चाहिए है ना। अगर अहां जी कि जी आने वाली साड़ी फसल है जी मक्की की फसल है तो मक्की की फसल कने अहां जी बेलदार और भी सब्जियां लगाते हैं तो उसते भी संजो एक अतिरिक्त जी आमदनी के भी मिल सकती है।
1: बिल्कुल
0: और रही बीज की गल तो देखा कि बीज तो संजो उपचार करके ही लगाना चाहिए और उसे भी डॉक्टर की सलाह कने ही लगाना चाहिए।
1: बिल्कुल बीज जरा ऐसा कुछ अहम जी मक्की हो धान हो फसल हो बीजनियां इस विच सानू जड़ा इन सारियां गल्लां ध्यान रखना जड़ा तुहां दस करदे न कने कुछ एक जियां फलदार फलीदार जड़ी अहां लगांदे न दाले
0: वगैरह
1: इस विच लगांदे न ताकि जड़ा अहां दी मिट्टी दी उर्वरक शक्ति उसका जड़ा ऐसा अनुमान जड़ा उस तरीके ने बनी रहे है।
0: बिल्कुल बिल्कुल और दिखा कि साढ़े तो जियाँ कि पहाड़ी क्षेत्र की अहम गल करा करते हैं तो हले तिकर भी जियाँ पशुआ पालने का जरा प्रचलन के भी जोरा शोरा पर है और मते सारे जड़े किसान कहने भी उन्होंने आमदनी का जरा एक जरिया है कि दुध हो गया या फिर दुध के जोड़े पदार्थ बनाते हैं खोआ हो गया घी हो गया तो यह भी एक आमदनी का जरा जरिया तो दिखा कि खाद तो बिल्कुल असा जे किसान साथी कहने भी बिल्कुल अपने माला बच्छू देसी जो पाले उन्होंने ही अपने खेत खिलाने
1: पाते बिल्कुल जैविक खाद जी उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसने क्या होंगे कि अहम ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਪਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਜੋ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪਸ਼ੂਧਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗੋਬਰ ਗੋਂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਵਿਕ ਆਹਾਂ ਫਸਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਲਾਈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਜੋ ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਆਹਾਂ ਕੱਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਖੀਰੇ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਹਾਂ ਸੰਜੋਈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਉਰਵਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਗਲਾਈ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਆਹਾਂ ਇਹ ਗਲਾਈ ਸਕਦੇ ਨੇ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਨਾ 'ਚ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾ ਬੱਚੂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਰਨ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਦਿਆ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ
1: ਜੀ

0: Innovation built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: मई धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
4: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। टीएनसी अप्लाई।
5: किसान साथियों, लोकगीत और संदेश के बाद फिर यहाँ चलना जानकारी की तरफ।
6: बिल्कुल,
5: तो दिखा प्यारू भाई कि आजकल जी है कि गर्मी का मौसम है, है ना?
6: बिल्कुल, गर्मी का मौसम कने देखो अहाँ जड़ी ऐसे छाया कने इसी तोपते रहते कने ठंडा ठंडा पानी से सारी अहाँ जड़े ऐसे अजकल जी संजा पे आगा ज़्यादा काम हों कने दिन अहाँ थोड़ा आराम करना पौता है जी।
5: बिल्कुल बिल्कुल, तो दिखा कि इन गर्मी के मौसम च जियां कि साड़ा ए टियाला है ना,
6: बिल्कुल
5: असा टियाले पर देखा कि जड़ा गड़ा के भी पानी दा प्यागा ही भरी के रखे हुंदा है, और इसके कने एक गिलास भी रखे हुंदा है।
6: बिल्कुल,
5: तो देखा कि भी जियां आंदे जांदे जेडे भी जियां टियाले को हुंदे है ना, तो टियाले पर देखा कि बसां करदे करदे ना, कई है बहुत जा चुके हुंदा, कई है अपना खेतर खेतर खलियाना जो जाते हैं, आते जाते देखा कि जलू प्यास लगती है तो असं पानी कहने भी पी सकते हैं।
6: बिल्कुल, छलू प्यारू वाले दिखो जड़े आते ना सभी तां ते जाते कने चलो पानी का घुट लाई जाते ठंडा ठंडा गड़े का पानी है। कने दिखो ये जी अहां दी संस्कृति अहां दे परंपरा जी है, इस चो गलांदे ना फ्रिज का पानी पी के कई बार गले लगी जाता ना।
5: बिल्कुल,
6: बढ़िया गाड़े का पानी तो हाँ शुद्ध कमां दे टाइम में, क्योंकि अहां जलू कम करते तो शरीर गर्माया होंदा हाँ, तो उस हिसाब ने जड़ा ऐसा पसीना आता तो गला वगैरह बही आता, तो इससे अहां जरूर गाड़े का पानी का प्रयोग करना है। कने बढ़िया और जैविक फसल कने उगाओ अहां अपने जड़े ने फसलों का
5: बिल्कुल
6: अनाज का प्रयोग करना है, कने स्वस्थ रहना है।
5: बिल्कुल, कने देखा कि अहाँ जी अपने ग्रां च भी दिखी लिया कि जी थोड़े ग्रां च या मेरे ग्रां च या अस अपने जेडे रुलदू भाई ने उन्होंने ग्रां च भी दिखी लिया कि जिथू भी टियाला है मतलब इन्होंने गर्मी के दिनों पानी का घड़ा के भी रखोया रखोया हों।
6: बिल्कुल,
5: तो यह देखा कि हाले भी साड़ी जी ग्रां की परंपरा के भी कायम है, और ये परंपरा के भी साड़े बुजुर्गे बनाई हो। बुजुर्ग बोलते हैं कि दिखा कि बोलिया भी एक बड़ा पुण्य का जोड़ा काम के भी हों कि आंदा जाता जी भी मतलब कोई प्यासा तो असें पानी पी के मतलब उसी राहत मिलती है, और बसोई बसोई के फिर उसी एक मतलब फिर इसे काम करने लायक।

0: एलेक्सा शोरूम, पीएनसी अप्लाई। एलेक्सा
1: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस एससीएनजी सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000 और टोटल बेनिफिट्स अप टू 80,000। तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी एससीएनजी, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू। पीएनसी अप्लाई।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कन्नै कार्यक्रम मौजा ग्राएं दे इत्थों संपन्न हो करदा। कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिहा सुरेंद्र कपूर, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह। हुण अपने ट्रायल दस्से बड़का जाचू
1: कन्नै प्यारू राम जी दी अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

मौजां कराई दिया। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 7 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलगवेत्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. The event held at the Hyderabad International Convention Centre was attended by Telangana Governor Shiv Pratap Shukla, Chief Minister A. Revanth Reddy, Union Minister G. Kishan Reddy and other senior leaders. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is a need of the hour. He said imported petroleum products should be used only as required, which would help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सके।
2: मिस्टर मोदी said that India's emerged as one of the leading countries in solar power generation.
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
2: Among the major projects unveiled include PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. Built at an estimated cost of around 1,700 crore rupees, it is the country's first fully operational PM Mitra Park and is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Union Home Minister Amit Shah today reviewed the country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of the central government agencies, reviewed early warning systems, resource deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives, and scientific advancements in forecasting. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with 6 BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, 2 ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandiben Patel administered the oath of office in secrecy at a ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. With the latest expansion, the strength of the Council of Ministers in the 403-member Uttar Pradesh Assembly has reached 60, the maximum permitted strength. Vice Admiral Sanjay Vatsayan has been appointed as the next Flag Officer Commanding-in-Chief of the Western Naval Command headquartered in Mumbai. He will take charge of one of Indian Navy's most strategically important commands, responsible for safeguarding India's Western Maritime Front and key sea lanes in the Arabian Sea. He is currently serving as the Vice Chief of the Naval Staff. In Pakistan, 15 security personnel were killed and several injured in a suicide attack at a police post in restive Khyber Pakhtunkhwa province. Police said the attack took place yesterday when security personnel opened fire on an explosive laden vehicle approaching the police post, triggering a massive blast. After the explosion, a large group of gunmen launched an attack on the police post, triggering heavy exchange of fire. The powerful explosion completely destroyed the police post, with several security personnel being reportedly buried under the rubble. In IPL cricket, Lucknow Super Giants have set a target of 204 runs for Chennai Super Kings at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai. In reply, Chennai Super Kings won 165 for 3 in 15 overs when reports last came in. Earlier put into bat, Lucknow posted 203 runs for the loss of 8 wickets in the allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान बाणी सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम किसान साथियों मिंजे सो के नज प्यारू भाई ता प्यारू भाई जी राम राम
1: भाई राम राम बड़का चाचू जी कने कार्यक्रम किसान वाणी सुना करते सारे स्रोतियां जो कने किसान कने बागवान भाइयों जो कने पैणा जो संजय दे वेले दी राम राम कने अपने खेतीबाड़ी वाले कम्मा कार ते थोड़ी ते निजात पाई करी हुण जड़ा ऐसे घर वाले पासे जड़ा ऐसे किसान बागवान भाई ओ करदे होणे क्योंकि अजकल थोड़ा दिन थोड़े लंबे होंदे हां जी
0: बिल्कुल बिल्कुल तो देखा प्यारू भाई की असदा अगर किसान साथी खेती बाड़ी के कन्ने कन्ने पशु पालन और मुर्गी पालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्या भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल
0: देखा कि भाई वर्तमान समय च मुर्गी पालन एक लाभदायक व्यवसाय के रूप च क्या भी जोरा कन्ने विकसित क्या भी हुआ करता है।
1: बिल्कुल
0: कन्ने ग्रां दे लेई करी शहर तक लोग कहन भी रोजगार और आय बढ़ाने ताई मुर्गी पालन का काम कहन भी अपना करते हैं।
1: बिल्कुल
0: मुर्गियां दे अंडे और मांस की प्राप्ति होंदी है जिन्हां दी बाजारा च हमेशा के भी मांग बनी रहती है।
1: बिल्कुल कने मुर्गियां जो असा बड़े विज्ञानिक तरीके ने कने कई अहां दे किसान बागवान भाई जड़ा ऐसे परंपरागत जड़ी मुर्गियां दी नस्लां ने तिन्हां जो भी पालदे ने तिसने क्या होंदा कि तिन्हां जो मांस अंडा वगैरह जी जड़ी प्राप्ति होंदी तिसने जड़ा ऐसे अतिरिक्त काम करके तिन्हां जो अतिरिक्त आमदनी जड़ी ऐसे होंदी है। कने अपनी खेतीबाड़ी च जालू तिन्हां जो आराम हुंदा जालू फसलां वाही इंदे विच विराम हुंदा निराई गुड़ाई ते तां दे व्यवसाय जड़ा ऐसे अपनाई करी जियां छल्लू पैरू अपनाई पाली लैंदे
0: दी
1: मुर्गी पालन जो

0: अंडा कने चिकन प्रोटीन विटामिन कने खनिज के अच्छे स्रोत जड़े ऐसे होंगे न बच्चे कने रोगी वास्ते या वृद्धा ताई जड़ा ऐसे अंडा जड़ा अत्यंत पौष्टिक जड़ा ऐसे मन्ने जाता है जी।
1: बिल्कुल, कने किसान खेती के कने कने मुर्गी पालन करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इस दे उन्हां दी आर्थिक स्थिति के भी मजबूत होनी है। कने मुर्गिया की बीट खेतरा ताई उत्तम खाद का जड़ा कार्य के भी कर दी है।
0: देखो
1: इस
0: इस
1: दे भूमि की उर्वरता के भी बढ़ दी है।
0: बिल्कुल गलांदे ना जे आम तो आम कन्नै गुठली दे भी दाम जड़ा ऐसे हाँ इस ते ले सकते न, चाहे इस ते उत्पाद की गल है चाहे इस ते खाद जड़ी हाँ अपने खेतर विच पांदे न तिस दी गल है तो हाँ जरूर इस ते जड़ा ऐसे लाभ ले सकते न।
1: बिल्कुल, कने किसान साथियों जिहड़ी मुर्गियां दी नस्लां नूं उहनां दी गल कीती जाए तां मुर्गे दी कई नस्लें कन भी हुंदियां हन। कुछ अंडा उत्पादन ताईं प्रसिद्ध हन, कुछ मांस उत्पादन ताईं। कने भारत च वाइट लैगहार्न, रोड आदर लैंड रेड, कने ग्राम प्रिया और कड़कनाथ ये जिहड़ी नस्लें लोकप्रिय हन। इस दे कहि कि जिहड़ी कड़कनाथ नस्ल है अपने काले मांस और उसकी गुण के कारण के भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
0: बिल्कुल
1: मुर्गी पालन जो सफल बनाने ताई कुछ खास गल्ला दा जड़ा ध्यान के भी रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल जड़ा ऐसा है मुर्गी फार्म दही जगह बनाना चाहिदा जित्थू जड़ा ऐसा है स्वच्छ वातावरण होए कने पर्याप्त हवा कने प्रकाश उपलब्ध होए कने जगह सुखी कने सुरक्षित होना चाहिए है जी।
1: जी जी मुर्गियां जो पौष्टिक और संतुलित भोजन देना के भी बड़ा जरूरी है। कने उन्हां दे भोजन च अनाज दाल खनिज और विटामिन होना चाहिए। स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: मुर्गियां दे रहने की जिहड़ी जगह है साफ रखना चाहिए है। कने गंदगी दे जिहड़े अगर गंदगी फैलांदे तां रोग बढ़ने का जिहड़ा खतरा के भी बने रहिंदा है।
0: बिल्कुल मुर्गियां जो समय समय पर जड़ा ऐसा है टीके लगवाना चाहिए न, बीमार मुर्गियां जो अलग रखना चाहिए ताकि इसका संक्रमण जड़ा ऐसा और ही मुर्गियां च नहीं फैली सके हाँ जी।
1: बिल्कुल जी, कने अजकल मशीनें कने आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके मुर्गी पालन ज़्यादा आसान और लाभदायक भी हो गया है।
0: बिल्कुल
1: तापमान नियंत्रण, स्वचालित भोजन व्यवस्था और दवाइयों के उपयोग के उत्पादन के भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल इसते लाभ की गल की जाए तो अंडे कने मांस की बिक्री की अच्छी इसते बिक्री करने अच्छी आमदनी जी इसे होंगी है। ग्रामीण क्षेत्र गरीबी कने बेरोजगारी इसने घटती है कने महिलाओं जो घर बैठे ही घर द्वारा भी जो ऐसे रोजगार मिली जाता कने देश की जी कुपोषण की समस्या उस तो अहम जरा ऐसे इसने दूर कर सकते हैं इसने सहायता मिलती है।
1: बिल्कुल, कने विदेश च अंडे और चिकन का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित के भी की जा सकती है।
0: बिल्कुल
1: तो असल मते सारे जड़े किसान साथी कहन भी मुर्गी पालन का काम भी करते हैं अपनी खेतीबाड़ी के कने कने। और अगर असा कोई भी नया काम करते किसान साथी तो प्रशिक्षण लेकर ही करते हैं तो दिखा किसे काम के भी साढ़े ताई एक आसान बनी जाता है। और जी जी अहाँ अपने काम जो करते हैं तो अपने आप सो पता लगता जाता है कि कुछ सो ज़्यादा मेहनत करनी है और कुछ कमी के भी रह गई है।
0: बिल्कुल कने कुछ बेचने न कुछ इसकी ज़्यादा मांग ऐसा है सारा समय समय पर सो जारी ऐसा जानकारी मिलती जाती जी जी तुस उसका उत्पादन करना शुरू करी देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कने उसने जी अहाँ आर्थिक भी सुदृढ़ कने जो बेला टाइम होंगे उसका भी सदुपयोग हो जाता है जी।
1: जी जी तो किसान साथी हाँ ट्यालेपुर शामिल करना एक प्यारा दे लोकगीत तो सुनते ने लोकगीत।

0: किसान साथी आशा आशा करने कि ये प्यारा दे लोक गीत तुसां जो पसंद आया होना और इस लोक गीत दे बाद हुण असां चलना अगली जानकारी की तरफ तो सुनते ने जानकारी
1: जी बिल्कुल
2: तो कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता की कड़ी विच आहां करने गद्दी भाई जुड़ा करदे न इन्हां करने गलबात। राम राम जी।
3: राम राम जी।
2: जी अपना नाम दसा पहले ता।
3: मेरा नाम साणू है जी।
2: साणू जी कुतों तुहां दे घर?
3: साडे घर जी चुरा है सनवाल।
2: चंबे दे कितनी दूर है ये चुरा?
3: ये 100 किलोमीटर है जी।
2: ता भेड्डां बकरियां पालदे है ना?
3: हां जी।
2: किन्ना के साल होई ये भेड्डां बकरियां पालदे?
3: ये होई है जी कोई 25 साल।
2: अच्छा 25 साल तो हाँ यानी के जंगलां विच ही गुजारी हड़े है ना?
3: हाँ जी हाँ जी।
2: तो इस वेले जी तो हाँ आजकल ये तो हाँ निचले क्षेत्रां

0: आए हो ना
1: हाँ जी,
0: तो जियां तो हाँ किन्ना के टाइम कटना इन्हां इलाकियां बिच जियां
1: इन्हें
0: गर्मी।
1: इलाकों में जी असी टाइम कटना विसाखी तुकर। हाँ जी, विसाखी बिसू अखाई के असी जाना उपरे की जी।
0: अच्छा सानू जी हांजो ये दसा कि जियां कितनी के भेडा बकरियां तो हवाल हाँ।
1: इस टाइम है जी हमारे पास 500 बकरी भेड़ है, 300 इंदौरा में गई है जी, 200 यहाँ पर है जी, लंगाना करी बोलते हैं जी, इस इलाके का नाम लंगाना है।
0: दिखा किसान साथियों भी टपरिया जत्थू ये डेरा ना इतू का कुछ नज़ारा ही जरा सा अलग है। मैं तो जो जरा सा बोली की जरा सा तो दसी सकता छिलमोड़ ने जरा तो हाँ बने ऐसी के बोल दे
1: इसी ओड़ा बना बोलते है जी,
0: अपू बनाया तो हाँ
1: आपू बनाया है
0: हाँ
1: जी।
0: तो जी तो दसिया 500 भेडा बकरियां ने
1: हाँ जी,
0: ता कल्ले चगांदे ने हाँ।
1: 3 बंदे हैं जी।
0: जियां तो हाँ ना हाँ गल करते ना जियां जल तो हथु ते चले हे चुरा ते इत्थी हो
1: हाँ जी,
0: ता जियां इन्हां इलाकें बिच पुजणे हो किन्ने के दिन लगी जांदे।
1: इत्थों पुजने जो जी कोई 15 दिन लगी जाते हैं। हाँ जी,
0: जी जियां 500 दस्या तो हाँ इस भेडा कितनी है बकरियां कितनियां ने।
1: भेडा जी कोई 60 है, तो बाकी बकरियां हैं 400 400 बकरियां हैं।
0: अच्छा जियां भेडा की गल करते हैं तो भेडा की जियां ऊन वगैरह भी निकालते
1: हाँ जी,
0: साले दी कितनी बारी हो जाती
1: 3 बारी कतर दें जी।
0: फिर ऊना का क्या करना है सारा बिकी जाती है ऊन ये कुछ जाएगी बिकती।
1: ये शाहपुर बिकी जाती है जी, पर अपने घरे से आई जाते हैं लेने, बाहर से भी ले जाते हैं जी।
0: अच्छा जियां ऊन तो हाँ कतरी ले ही है
1: हाँ जी,
0: इसके बाद क्या करना है सर धोनी है पहले।
1: नहीं तो होंगे जी, ये उदे कति लेंदे ना चांडी चूंटी के, तो चूंटी के फिर ये पहले चूंटनी पौंदी है, फिर ये कतनी पैंदी है, फिर ये उनसानी पैंदी है, ता फिर जी खड्डी वा कोई बुना बुनार दिखना है, कने बुनानी है, फिर
0: बड़ी मेहनत वाला काम है ना।
1: बड़ा मेहनत था वा कम है जी।
0: अच्छा तो जियां बकरियां की गल करते हैं ना इस टाइम सूई है बकरियां कुछ
1: हाँ जी, सूई दी है।
0: दूध निकाल लेंदे होने ना
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ज्यादातर तो दूध बकरियां पींदे होने।
1: बकरियां दा जी।
0: हाँ तो देखा भाई जियां बोलते भी है ना कि बकरी जड़ी से 22 जड़ी बूटियां खाती जंगले बच्चे
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: कने इसका दुध 22 बीमारियां जरा सा कटदा
1: कटदा है जी।
0: है ना।
1: हाँ जी,
0: अच्छा तो देखा बकरी का दुध बड़ा यहाँ बोलते ना कि दवाई का काम करता है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: अच्छा जियां तुहां दस्सिया कि विसाखी के बाद तुहां हौला हौला जिहड़ा सा ठंडे इलाकें चढ़ी जाना ना
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो जियां आने तुहांजो 15-20 दिन लगते जाने भी 15-20 दिन ही लगने
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: यानी
1: फिर
0: कि।
1: नहीं तो आस्ते आस्ते चली भी रहेंदे, बाता टाइम कटदे कटदे कटदे चली रहेंदे।
0: अच्छा साणू जी इसके बाद तुहां दे सुनने वाले ये दसा कई बारी जियां इतना माल तुहां रखे आ जंगलों बिच जियां रहना है कोई जियां कई बारी क्या होंदा कि रोग राग भी लगी जांदे बकरियें भेड़ां दा आपू कर लैंदे इयां टीका वगैरह लगाना हो तां।
1: हाँ जी, माड़ा मोटा कर लेंदे, पर फिर डिस्पेंसरी बिच भी जाना पैंदा है जी।
0: अच्छा जी
1: हाँ जी,
0: बकरियां बीमार हो जाए तो पता लगी जाता बुखार है ने
1: हाँ जी, हाँ जी, लगी जाता है पूरा पता जी। हाँ जी,
0: तो दवाइयां वगैरह करना होनी है
1: दवाई, हाँ जी, टेरामाइसिन टीका करने ही होंदा है जी।
0: जी आपियों कई बार सर्दी जुकाम लगी आ तो अपनी दवाई भी रखी होनी है।
1: अपनी भी माड़ी मोटी रखी होंगी जी, उतनी तो नहीं होंगी रखी दी, पर माड़ी मोटी रखी दी होंगी है जी।
0: हाँ देखा बड़ा एक जिसे बोलते ना कठिन एक जड़ा सा जीवन है ना।
1: बिल्कुल जी, बहुत कठिन है, पर चलो
0: हाँ
1: क्या करना है जी, मजबूरी है ना, मजबूरी छड़ी हमारा काम है जी,
0: हाँ जी
1: करना पड़ता है जी।
0: अच्छा बाकी और दसा अपने जी अपने इलाके बिच उतो तो खेतीबाड़ी भी करते होने
1: हाँ जी, घरे की है तो खेती बाड़ी भी करते हैं जी।
0: क्या क्या करते उतो।
1: वो तो जी कुकड़ी बाते हैं, फिर कने कणक
0: अच्छा
1: जाओ, कणक
0: इस टाइम क्या लगे तो हाँ दे उतो
1: है जी, तो कने जाओ
0: बाकी राजमा वगैरह नहीं बीज दे।
1: राजमा जी, विसाखी का बाद बाद राजमा हुए, कुकड़ी हुई विसाखी के बाद। अच्छा जी, तो जेड़े ए मटर है, तो मटरों का सीजन चलता है जी,
0: हाँ जी
1: ये भादरों महीने चलता है जी।
0: साणु जी जियां तुहां जिक्र कीता ना कि चंबे तुहां उत्थों चुरा जिहड़ा सा अपने इलाके बिच जियां फसलां वगैरह बीजदे उत्थों तां जियां खेत जियां सीढ़ी नुमा होंदे जियां बड़ी बड़ियां बीड़ां होंदियां कने उच्चे उच्चे है ना
1: हाँ जी, बड़िया बड़िया बीड़ा होंदी है जी।
0: बैलां ने बांधे होने ना
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: दो दांद रखे होंदे इक
1: दो
0: बाकी तुहां दे घर कदे होंदे उत्थों लकड़ी दे होंदे।
1: पहले जी लकड़ियां दे कोठे होंदे थे, कने अबे जरा लेंटर लगी पिए पाना, कने बंगले लगी पिए बनाना।
0: हाँ
1: हाँ
0: जियां
1: जी,
0: होला होला जमाना बदलोवा करता था ना।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: अच्छा साणु जी गलबात होवा करदी भेड़ बकरी पालन दी
1: हाँ जी,
0: सरकार द्वारा तुहानू कुछ ऐसी रियायत मिलती जियां कुछ समान वगैरह हाँ सुनिया कि मिलता जेड़े भेड़ पालक होंदे बकरी पालदे
1: पहले मिलता था जी, अबे नहीं मिलता है कुछ भी, पहले
0: पहला क्या
1: मिलता
0: मिलता
1: था।
0: हा।
1: पहले जी बूट मिली जाते थे, वर्दी मिली जाती थी जी, टार्चा मिली जाती थी, पूरी पर्सनालिटी मिलती थी जी।
0: पैसे ना कि मुफ्त मिल।

0: मुफ्त मिलता था जी।
1: अच्छा जी, ये तो हाँ टेंट लाया भी अपना लिया होना ना?
0: ये तो अपना लिया है जी, पर पहले मिली जाता था, टेंट भी मिली जाता था, कने झोलू भी मिली जाता था, हुण नहीं मिलता है कुछ भी जी।
1: अच्छा जी, मैं सुनिया कि जलू तो हाँ इतों तो जलू तो हाँ हटना ना, तो एक उपर धारकंडी साइड कुछ एक तिथु एक बने होंगे जिथु भेडा कना इन्हें वगैरह नहाते हैं ना, सह क्या चीज होंगी सह?
0: से जी असी बोलते हूं ना कि ना बिचराड़ू,
1: अच्छा
0: अपनी बोली बिच बिचराड़ू दस दे ना कि,
1: हाँ जी,
0: पर जेड़े इतनी दे लोग है वो चिचड़ बोलते वो पेई जाते ना उन्हें कि,
1: हाँ जी,
0: कने उदे बिच दुआई पाते डाकदार टैंक बनाए दे होंगे उन्हें बिच नहाई लिए तो से चिचड़ खत्म हो जाते।
1: अच्छा सही, यानी कि सरकार बनाए होने ना?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: कि पैसे लेंदे है नुआने दे?
0: नहीं जी नहीं लेंदे।
1: अच्छा जान दी बारी है ना,
0: हाँ जी हाँ जी
1: तो इसके बाद जो उपचार हो जाना ना,
0: हाँ जी,
1: तो सर फुहारा होंगे कि तला होंगे नुआने वाला?
0: मैं तो जी कभी नुआई भी नहीं, मेरी थोड़ी तो भेडा होंगी है, पर लोग नुआंदे गलां दे टैंक होंदा।
1: अच्छा टैंके च फेंकी देनी है
0: हाँ
1: कहते ना,
0: जी हाँ
1: परले
0: जी
1: बाहर निकली जाना ना।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: अच्छा उइया अगर नुआनी होंगे तो हाँ कि नुआंदे ने, जियाँ ऊन गर्म होंगी इन्हें बड़ी गर्मी होंगी भेडें जलू धुप्पा पाउंदियाँ तो?
0: फिर नवाई लेंदे जी ना कि कुथे जहाँ तक डिब्बर दिखनी पैंदी है,
1: हाँ
0: जहाँ तक कुथे ऊंची जगह दा फुहारा हुआ लग गया था उथे
1: अच्छा,
0: जाई के नवानी पैंदी है।
1: सानू जी जियाँ जंगलों बिच रहना, कल्ले रहना, कुथी सड़कां च चलना इतना जड़ा सह तो हाँ थां थां जड़ा सह घूमना, कुथी जड़ा सह कुथी डर वगैरह तो नहीं लगता कुथी?
0: अब नहीं लगता जी, पहले शुरू शुरू बिच लगता था, कने अब नहीं लगता कोई डर भी।
1: अच्छा जी, तुम
0: हाँ
1: दस्या कि
0: जी
1: 25-30 साल चार दे हुई
0: हाँ
1: है ना,
0: जी हाँ जी हाँ जी,
1: बाकी और तो नहीं खतरा? चल तो हाँ चंबे दे थी होना या जाना रस्ते बिच कुछ ऐसा कुछ जिया कोई चोर पे जन्दे भेडा हो?
0: पहले पहनते थे जी, कने अब ऐसे भी बेचारे जरा मुखी गिए दे, क्या पता बंद
1: हाँ
0: हो गई है दिन से चोर भी अभी।
1: अच्छा
0: हाँ जी
1: अच्छा अच्छा चलो दिखा भाई, गरीब जेड़े से किसान होंगे जियाँ कुनी बकरियां पालियां भेडा पालियां, तो चलो कुछ यो दे शरारती तत्व तो कोई शरारत करते हैं तो बेचारे की पूरी साले की कमाई जड़ी से मिट्टी हो जाती है ना।
0: मिट्टी हो जाती है
1: हाँ
0: जी,
1: तिन्हां दे पल्ले जेड़ा से कुछ भी नहीं पौंदा।
0: जाड़े बिच खरड़ोई के कपड़ा ओढ़ नहीं रहिंदा जी कोई भी ऊपर,
1: हाँ
0: तो फिर
1: जी तुहां दस्या 7 महीने घरे ते आए हुई है, तो जाना कल्लू घर है हुण?
0: हुण विसाखी के बाद जाना है जी।
1: अच्छा जियाँ पुआल रखे होंगे भेडा चारने वास्ते है ना,
0: हाँ जी
1: जियाँ कुछ दा माता माल है या कोई किसी नौकर रखी जिस यहाँ बोलिए कि एक नौकरी नौकरी पर बंदा रखी लिया ना,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तीन ये क्या हिसाब किताब देंदे?
0: तिना की जी साले दी 10 भी दें दे, 12 भी दें दे।
1: अच्छा बकरियाँ सह मालक देनी है कि तिनी आपू तालनी है कौन दे लैनी
0: ना
1: है?
0: ना मालके ने देनी है जी,
1: अच्छा तीन मालक दे तन कर दे कि छोटी छोटी दस दई तीन कि हिसाब ही देंदे है?
0: ना ना हिसाबीए दें दे जी। हाँ
1: अच्छा
0: जी
1: हाँ, बाकी नहीं है कपड़े हो ये या रोटियां राटियां तीन ही?
0: तिना दिया हुंदिया, रोटियां भी ते कपड़े भी ते सब कुछ तिना दा हुंदा है जी।
1: अच्छा हाँ,
0: हाँ
1: उन्हें तो
0: जी
1: दिखा भी यहाँ बोला देना कि साल लिया 10 भेडा बकरियां या कुछ भी है, पर
0: जी
1: साल
0: जी
1: भी
0: जी
1: दिखा 365 दिन कढ़ना भी कोई आसान काम नहीं है ना,
0: बिल्कुल जी बिल्कुल जी
1: चलो
0: बिल्कुल जी।
1: बरखा पौनियाँ या धुप्पा पौनियाँ
0: हाँ जी
1: बना बिच किले रहना है ना।
0: तो कोई कोई नहीं भी देंदा, फिर कोई कोई बेईमान भी होंदा,
1: अच्छा
0: कोई कोई ठगी भी जांदा, सारे कोई तो दुनिया भी नहीं है ना।
1: हाँ, या इं बोली तारा कि इबे थोड़ा मुझे नुकसान हो गया माल घट है कहना तू अगले साल ले लिया ना।
0: नतिया तो कोई नहीं बोलता, पर आखी दस ही के कोई कोई फिर दबका भी मारी देंदा है ना।
1: अच्छा भाई तू हाँ चली गया हूँ, मैं
0: हाँ
1: तो हाँ नहीं रखने होना ना,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो इं भी दिखा दुख तो आंजो ने नहीं ऐसा कभी होया?
0: ना जी ना साढ़े कने तो
1: अच्छा
0: नहीं हुआ, पर कई आंदी सुनी लेंदे ना तो जी फिर दुख लगी जांदा दिले बिच।
1: बाकी राशन पानी कितना कितना लेके चलते तो हाँ सोगी थोड़ा थोड़ा इतना चकोई भी आ गया ना?
0: हाँ जी थोड़ा थोड़ा लेंदेन जी,
1: अच्छा
0: अब इस टाइम तो जी हर जगह तो मिली जांदा है, जिथे जिथे जाना उतना ही मिली जांदा है जी।
1: अच्छा बाकी जी चलो तो हाँ माल बेचना है
0: हाँ जी
1: तो कुछ हिसाब है, साले च बेच दे या 6 महीने बाद कि
0: चलिए रहती है जी, आई चलाई चलिए रहती है।
1: जब जरूरत पेगी
0: हाँ
1: ना?
0: जी हाँ जी हाँ जी,
1: अच्छा
0: 12 महीने
1: कई बार क्या होंगे कि कोई जी बीमारी शुमारी लगी जाती तो सभी माल बेचना पी जाता ना, तो तुहां जो कदिया लगता कि जी जल तुह निचलिया इलाके चले आए जो गर्म इलाकों बिच इतों की जड़ी जी जी बनस्पति है भेडा बकरियों वास्ते ये ठीक होंगी कि जी उपर चंबे भरमौर दी है सह?
0: ए जी, रित रितपुर है ना रित, अबे इतना ही दी रित है, तो अबे हमारा दिल इतना ही लगी है गया था जी,
1: हाँ
0: तो
1: नहीं
0: जिस टाइम असी फिर विसाखी जे लगी पौनी है जी, तो फिर साड़ा दिल ऊपर जाई रहिंदा, तो माले दा भी ऊपर जाई रहिंदा,
1: हाँ
0: फिर
1: नहीं नहीं घा
0: माल नहीं
1: पतराए की गल
0: खड़ना।
1: करा करदा मैं
0: हाँ जी
1: नहीं, यहाँ सुनिया कि जड़ा उपर भरमौर चंबे का जड़ा जड़ा जड़ी बूटियां ने घा पतरा है ताकतवर होता,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: हाँ तो इस चकने इस फर्क होता कुछ?
0: बड़ा फर्क है जी,
1: अच्छा
0: बड़ा फर्क।
1: तो सानू जी जी दिखा हाँ दिख

0: कि आजकल ना तान जड़े है ना जिसे बोलते
1: हाँ जी
0: बड़े कटते जा दे,
1: हाँ जी, बड़े कटते जा रहे
0: क्योंकि
1: जी।
0: गांव वाले जड़े युवा साथी है ना इसी कम में करने से थोड़ी शर्म महसूस कर दे, कहीं जड़े बेचारे बुजुर्ग हे थे ना हिम्मत रखी जो, पर सभी जिया होड़ा होड़ा गांव कुसी का साथ नहीं मिल रहा तो सभी इसी कम में जो छड़ा कर देना ना। तो हाँ उन्होंने लोगों क्या बोलना चाहेंगे कि जिन्हें अपने धन धन माल है भी कुछ तरीके कहना काम करना करना अपने माँ प्यो का साथ देना।
1: ए जी माल चारने वाले जेड़े हैं ये बहुत इया तो अपना माल बहुत अच्छी चीज है जी,
0: हाँ जी
1: इसमें कोई वो नहीं है जी,
0: हाँ जी
1: कमाई है इसमें भी बहुत कमाई है जी,
0: हाँ जी
1: पर कोई करे तो।
0: अच्छा
1: हाँ जी, ते जैसे एक फौजी की ड्यूटी है
0: हाँ जी
1: वैसी गद्दी की भी ड्यूटी है जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: नहीं
0: हाँ
1: गद्दी को छुट्टी मिलती है
0: हाँ जी
1: नहीं जी फौजी को छुट्टी मिलती है।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी, वैसे
0: हाँ
1: पैसा बहुत है जी, पर नहाने धोने के लिए भी गद्दी को टाइम नहीं मिलता है, ये
0: हाँ
1: कठिनाई है जी।
0: अच्छा
1: जब इन नीचनू क्षेत्रों में आते हैं जी, जिया थले आंदे हैं ना जी असि, तिया इस इलाके बिच फिर जरा डाई बनने की दिक्कत पई जांदी, कने कपड़े फटी जांदे, नहाने
0: हाँ
1: धोने की टाइम नहीं मिलता,
0: हाँ
1: से जरा जी दिक्कत। बाकी इसमें भी बहुत अच्छी कमाई है जी, बुरी कमाई नहीं है,
0: अच्छा अच्छा हाँ देखा भाई अपना कम है
1: खूने परसीने की अपनी कमाई है जी।
0: कुसी का रोब नहीं है
1: नहीं जी
0: ना, जल दिलकता तो छड़ी दिया
1: बिल्कुल जी
0: बनी पाइया ना,
1: बिल्कुल,
0: तो यानी कि तो हाँ दाती ना यो क्या संदेश है भाई कैसा कि कुछ तरीके करना काम करना भाई।
1: से जैसे कि जी अवे जे असी जी ले ले दिए, अवे जी असी चारा देन जी,
0: हाँ
1: तिया होर भी कोई चारे लेन ना, तो
0: हाँ जी
1: इस चीज भी जी घाटा नहीं है जी,
0: अपना कम है ना ना
1: अपना कम है, नहीं कुसे दी गुलामी है, नहीं कोई कुसे दा लेना है, नहीं कोई देना है जी,
0: हाँ कना अगर तुहा वाला अपनी विरासत है तुहा
1: विरासत
0: दे
1: है जी।
0: बुजुर्ग अगर माल सेड़िया
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: तीन जोड़ा सा सहयोग जोड़ा सा करा
1: बिल्कुल
0: है
1: जी
0: ना जी। साणु जी तुहा अपने भेड़ बकरी पालन दे अनुभव अहा कन्ने साझा किते, अपना कीमती समय तुहा अहा जो दिता तुहा दा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
2: किसान साथियों, असा आशा करने कि इस जानकारी दे तुसां जरूर फायदा रहना है, और खास तौर पर जेड़े कि असा दे भेड़ा बकरी पालन दा काम कर देना, उन्होंने
0: जी
2: वास्ते ये जानकारी मैं तो बंदा बड़ी बांकी थी।
3: बिल्कुल, कने इसने जो प्रेरणा मिलती है कि कोई व्यवसाय नहीं है तो इस कम में जो भी अपनाई लिया बड़ा बढ़िया व्यवसाय है, तो वहाँ काम कार करीने अच्छी आमदनी कने अपने आप जो हष्ट पुष्ट स्वस्थ कने प्रकृति ने भी जोड़ी सकते हैं जी।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर ते हाँ शामिल करना एक प्यारा दे लोकगीत, तो सुन दे ने लोकगीत।
3: जी

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्नै कार्यक्रम किसान बाणी इत्थों संपन्न हो करदा। कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह। हुण अपने ट्रायल दे सस्से बड़का जाचू
1: कन्नै प्यार राम जी दी अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

कार्यक्रम किसान वाणी श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 7:42 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।
3: बड़ी बहू,
4: ये तुम्हारी ना।
3: इतनी भी क्या जल्दी थी?
4: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
3: और ये
5: मेरी बुढ़िया के नाम।
6: पर दादी, आपके नाम?
7: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: चुप चुप बोलो, क्या
7: आरबीआई कहता है?
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम, मेरिट सूची में बेटियों का दबदबा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन, 26, 28 व 30 मई को तीन चरणों में होगा मतदान। और प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार, 15 मई तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 93,176 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिनमें से 78,150 उत्तीर्ण हुए हैं। 8,433 विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट आई है, जबकि 6,559 असफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम 83.87% रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
10: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की मेरिट सूची में एक बार फिर छात्राओं का दबदबा देखने को मिला है। मेरिट सूची में कुल 107 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है, जिनमें 83 छात्राएं और 24 छात्र शामिल हैं। कांगड़ा जिले के निजी स्कूल पहाड़ा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। बोर्ड के अध्यक्ष राजेश शर्मा के अनुसार परीक्षा प्रणाली में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके चलते परिणाम में सुधार देखने को मिला है।
11: इस बार जो बोर्ड की पास परसेंटेज है वो है 83.87%, जो पिछले वर्षों के मुकाबले ग्रेजुअल इंक्रीज है। ये दर्शाता है कि बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से लगातार एफर्ट कर रहा है, जिसके रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। ये अचानक नहीं है। बोर्ड की जो कार्यशैली है, कार्यशाला लगाने, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के पेपर का स्टाइल सीबीएसई के मुताबिक करने के लिए, साथ के साथ जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले, जैसे बच्चों को नीट में चाहिए होते हैं, जेई में चाहिए होते हैं, यूपीएससी में चाहिए होते हैं, वैसे हमने पैटर्न भी चेंज करा। और कुछ उनके मस्तिष्क में था, मानसिक तौर पर तैयार थे कि हमारे हक को चुराया नहीं जाएगा, नकल पे रोक लगेगी, इसलिए वो बेटर परफॉर्म कर पाए।
10: स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेश भर में 2,384 केंद्र बनाए थे। पहली बार परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग भी की गई। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी सत्र से परीक्षा केंद्रों में ऑडियो वीडियो कैमरों के माध्यम से निगरानी रखने की भी योजना है। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा।
9: इस बीच प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल करने वाले कांगड़ा जिले की छात्रा अनमोल ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और अध्यापकों को दिया है। अनमोल ने बताया कि उनका सपना भविष्य में अध्यापिका बनना है।
12: नाम अनमोल है और आज 10th बोर्ड का रिजल्ट निकला है। मैंने फर्स्ट रैंक हासिल की है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं रोज 5 से 6 घंटे पढ़ने बैठती थी और इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, मेरे सभी टीचर्स और स्पेशली हमारे स्कूल के एमडी मैम, प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर को जाता है।
9: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दसवीं की परीक्षा में सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। मेधावी विद्यार्थियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये परिणाम उनकी कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति समर्पण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने इस परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को निराश न होने और नए संकल्प व कड़ी मेहनत के साथ दोबारा तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनता में अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया है और केवल झूठे आश्वासन दिए हैं। पालमपुर में आज कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा पालमपुर नगर निगम के लिए स्पष्ट विजन लेकर आई है और इसे आदर्श नगर निगम बनाया जाएगा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पालमपुर को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी व गवर्नेंस विभाग को ई गवर्नेंस की दिशा में किए गए नवाचारों और नागरिक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विभाग के सचिव आशीष सिंघमार और निदेशक निपुण जिंदल ने शिमला में मुख्यमंत्री को ये पुरस्कार भेंट किए। मुख्यमंत्री ने लोगों को पारदर्शी, त्वरित और सुरक्षित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तकनीक और नवाचार का उपयोग कर लोगों को प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद, कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने बेसहारा पशुओं, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पालमपुर में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पालमपुर शहर का विकास ठप है और केंद्र द्वारा स्वीकृत सीवरेज योजना में भी बड़ा घोटाला किया गया है।
13: विधायक यहाँ वर्षों से कांग्रेस पार्टी के, लेकिन पालमपुर जैसा चल रहा है वैसा चल, लेकिन हट करके कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, बड़ी सोच के साथ करना चाहिए। वो स्थिति 15 वर्षों में आ नहीं सकी। हमारा विधायक ना तो यहाँ नहीं था, हमारी सरकार थी। हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो है हमारा कोर्ट होना चाहिए, हमने वो कोर्ट आपको दिया। पालमपुर में आकर के आप लोगों ने कहा कि BDO का ऑफिस यहाँ पर खुलना चाहिए, BDO का दफ्तर आपको पालमपुर में हमने खोला, लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद उसको भी डीनोटिफाई करके चले गई।
9: जयराम ठाकुर ने धर्मशाला के दाड़ी में भी चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार केवल बदले की भावना से काम कर रही है और जनहित की योजनाओं को रोक रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने का आह्वान किया। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। 7 और 8 मई को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में 42,562 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरे। अभी तक कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 7,396 नामांकन भरे गए हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 15 मई को की जाएगी और इसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायत चुनावों के लिए मतदान 26, 28 व 30 मई को 3 चरणों में करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। ऊना जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में 3,79,459 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त

0: युक्त जतिन लाल ने बताया कि ऊना जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले में 188,945 पुरुष जबकि 184,724 महिला मतदाता है। भाजपा ने सोलन नगर निगम चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 4 कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि पार्टी संगठन विचारधारा और अनुशासन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं की करेगी। पार्टी ने उम्मीद जताई कि सोलन की जनता विकास, पारदर्शिता व मजबूत नेतृत्व के पक्ष में मतदान करेगी और भाजपा को भारी जन समर्थन प्राप्त होगा। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे। राज्य में मई महीने के दूसरे सप्ताह में भी ठंड बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 15 मई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अनुमान है। विभाग के अनुसार मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कल 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो अलर्ट, जबकि 12 और 13 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज व अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश साइंस मास्टर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में पुरानी पेंशन योजना को बहाल रखेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। मेरिट सूची में बेटियों का दबदबा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। 26, 28 व 30 मई को 3 चरणों में होगा मतदान। और प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार। 15 मई तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि का अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
2: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ FM शिमला पर भी रिले किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी शिमला है, लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। रात्रि के 8 बजे हैं और हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस लेकर। और कार्यक्रम में सबसे पहले आपका मनोरंजन करेंगे इस पंजाबी गीत के साथ, सुखविंदर सिंह और साथियों का गाया हुआ।

पाता है, ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: खर्जा पहला साता लैला
1: मर जानी पौंदी भंगड़ा अंग्रेजी भी।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओ, आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र, और इस समय आप सुन रहे हैं मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस।

श्रोता अरिजीत सिंह और शिल्पा राव के गाए इस गीत के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं भक्ति रस की ओर। लीजिए सुनिए ओस मामीर को।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। रात्रि के 8:45 होने को हैं थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 9 न्यूज एट 9 रिले की जाएगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबिल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि

0: भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
5: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है. इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है. मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है. सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें.
4: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that Centre will continue to work with greater speed to realize your dreams.
5: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है. साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है. जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है. ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है.
4: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated

जी श्रोताओ, 17 अगस्त 1956 को जन्मे राजकुमार संतोषी को घायल, दामिनी, अंदाज, अपना अपना और घातक जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है और उन्होंने अपने करियर में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों की निर्देशन किया था और इसके साथ ही उन्होंने पटकथा भी लिखी है और उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत की 1990 में फिल्म घायल से, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था।

बॉक्स ऑफिस पर राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित हिट फिल्म बरसात भी रही है, जो साल 1995 में आई थी और जिसने बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना की पहली फिल्म के रूप में फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई थी और इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार भी मिला था और उन्होंने दो सफलताओं का फिल्म का निर्देशन भी किया, जिसमें थी बायोपिक द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और एक्शन थ्रिलर खाकी, और दोनों ही फिल्मों में उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामांकन मिला था।

एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 9:30 हुए हैं, हाजिर हैं हम फिल्म संगीत लेकर और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अनपढ़ फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: Senior broadcaster RJ Simran looks back to some exciting times.
1: अच्छा, रेनबो के पहले रेडियो का मतलब था सोबर, फॉर्मल. एंड देन बाय अर्ली 1993 केम एफएम रेनबो, जैसे कि राज कपूर की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में रणबीर कपूर की कलरफुल एंट्री हो गई हो. वी मेड अ ग्रैंड डेब्यू एज रेडियो जॉकीज, बिकमिंग द क्रेजी पैशनेट पाइनियर्स ऑफ दैट एरा. We were not just hosting shows. We were inventing a language.

0: In the national program of features, you just heard a feature titled Of Memories and Milestones. Thank you for joining us on this journey through 90 years of sound, stories and milestones. Script, Bushida Banerjee. Narrator, Rini Khanna. Additional voicing, Manoj Mainkar. Produced by Nitish Arora for the Central English Features Unit. This broadcast came to you from Akashvani, Delhi.
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह विशेष रूपक जो आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया गया। रात्रि के 10 बज चुके हैं, अब रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी।
2: टम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
3: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. We bring you a Veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
2: Vidwan D. Srinivas, Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D. L. Tulsi ke margdarshan mein Veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
3: विद्वान डी श्रीनिवास, ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना, वाज बोर्न इनटू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वाज ए चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
2: Aaj raat ke prasaran mein विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
3: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
3: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivan in the rag Sarasangi set to Khanda Chapu Taal.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by श्री यशवंत हम्पीहोली and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।

0: इसके साथ ही आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
3: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
4: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।